आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है भोर सुहानी। ज्ञान, संस्कार और अच्छे कर्म जीवन की सबसे उज्जवल ज्योति है। यह प्रकाश हमें हर अंधेरे से बाहर निकाल कर सही राह दिखाता है।

हवा की तरह हमेशा आगे बढ़ते रहिए। परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने उत्साह और उम्मीद को कभी मत रुकने दीजिए। इसी विचार के साथ मैं आपसे ले रही हूं अनुमति। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 और 35 सेकेंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आइए आपको जानकारी दें, आज आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर कौन से कार्यक्रम सुन सकते हैं। छह बजकर दस मिनट का समय रहेगा प्रोग्राम अर्पण का। छह बजकर चौवालीस मिनट पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान।

9:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी। 10:30 का समय रहेगा प्रोग्राम दिल का मेलबॉक्स का। 11:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम तस्वीर।

दोपहर 12:10 का समय रहेगा प्रोग्राम घर आंगन का। 1:10 पर आप सुनेंगे कलाकार बेमिसाल।

शाम 5:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम गाते गुनगुनाते। 7:25 का समय होगा प्रोग्राम सांझ ढले का।

10:30 का समय होगा प्रोग्राम हार श्रृंगार का। 11:40 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और इस पर ईमानदारी से व्यापक चर्चा होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल फिलीपींस के मनीला में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की बातचीत में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सेया अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरीन ग्रिडियानो से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 19 तारीख से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाउकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। इस कोब्जे में आकाशवाणी संवाददाता सुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाउकोवा ने कहा

0: कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू हुई। रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जन जागरूकता के क्षेत्र में आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाई है। आज भी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी की सेवाएं जारी हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहैन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। उधर चीन के चांगझो में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुडा को हराया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. President of North Macedonia, Gordana Silonovska Davkova, has said that it is a matter of pride that a woman is the president of world's largest democracy, India. Talking to Akashvani correspondent in Skopje, North Macedonia, Ms. Davkova said earlier she was impressed by India's long history and also spirituality. She said after meeting President Murmu, she was very much impressed. She said after meeting President Draupadi Murmu, she strongly felt that only women can change the world.
2: What is the most important? You have to be proud indeed of your nation. You have to be proud of your history. But also India has a woman as the president. That is really something special, knowledgeable, with deep feelings, emotional intelligence.
1: Senior BJP leader, Union Minister JP Nadda, has said that the NEET paper leak issue raised by the students should not be politicized and it is not appropriate to take political advantage from this matter. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said it is a matter of investigation and requires in-depth discussion. He said this is a serious problem which deserves a thorough and sincere discussion.
3: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
1: The Union Minister said that NDA government, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, has taken up this matter very seriously. He reiterated the government's stand that it is ready for a discussion on NEET issue in Parliament and opposition should decide the duration of the debate. Mr. Nadda said Parliament is the most appropriate forum where in-depth discussion on the matter can take place. External Affairs Minister Dr. S. Jayshankar met his Canadian counterpart Anita Anand on the sidelines of Quad Foreign Ministers meeting in Manila, Philippines yesterday. In a social media post, Dr. Jayshankar said that India-Canada cooperation has been steadily growing. He said that

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और इसी के साथ वक्त हो गया है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण का और आज अर्पण में आपके साथ हूँ मैं सुरति सुप्रभात। आइए प्यारी प्यारी सी सुबह को भक्तिमय बनाएं प्यारे प्यारे से भजनों के साथ। जय श्री राम।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण सुन रहे हैं आप मेरे यानी सुरति के साथ। और हर रोज की तरह आज भी ये प्यारी सी सुबह अपने साथ ढेर सारी उम्मीदें लेकर आई है। किसी ने खूब कहा है कि सफल होने वाला व्यक्ति जो है हमेशा सकारात्मक और प्रसन्न रहता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि जो सकारात्मक और प्रसन्न रहता है वही व्यक्ति सफल जरूर होता है।

जब वाणी में मिठास आने लगे, मन में निर्मल विचार आने लगे, चेहरे पर मुस्कान आने लगे और जीवन में सादगी आने लगे, तो यकीन मानिए एक अद्भुत यात्रा आरंभ हो चुकी है, इसका एहसास आपको होने लगेगा।

मन के विचार ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। पॉजिटिव विचार हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं और नेगेटिव विचार पीछे खींचने में। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए।

खुशी एक महक की तरह होती है, जब तक हम स्वयं नहीं महकेंगे दूसरों को कैसे महका सकते हैं। इसीलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करिए।

प्रस्तुत है रामचरितमानस के बालकांड का ये अंतिम प्रकरण, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए श्री राम के यश की कथा कही है।

0: आप सभी सुन रहे थे श्री रामचरितमानस और अब से कुछ ही देर में सुन पाएंगे संस्कृत में समाचार। उसके बाद ठीक 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 7:10 पर प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात मेरे यानी सुरती के साथ। लेकिन अब वक्त हो गया है संस्कृत में समाचारों का, तो आइए सुनते हैं एफएम गोल्ड पर समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रतिपादितवान् यत् विकसित भारत निर्माणस्य स्वप्नं जनान्दोलनस्य रूपं धारयेत्, राष्ट्रस्य युवजनाश्च अस्य संकल्पस्य आधारशिलाः भवेयुः। सर्वेषां परिष्काराणां केन्द्रे नागरिकाणां कल्याणमेव भवितव्यमिति तेनोक्तम्। प्रधानमन्त्री नवदिल्ल्यां विकसित भारत लक्ष्याणां सिद्ध्यै ग्राम विकासस्य, कृषेः, समाजकल्याणस्य तथा सम्बद्ध क्षेत्राणां प्रगति समीक्षार्थम् आयोजितस्य उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् एतद्वक्तव्यं प्रदत्तवान्। अस्मिन्नुपवेशने मन्त्रिमण्डल सचिवः, प्रमुखमन्त्रालयानां सचिवाः तथा प्रधानमन्त्रिणः कार्यालयस्य वरिष्ठाधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्। प्रशासनेन संसदि नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे सार्थक चर्चायै स्वसज्जता पुनरुक्ता। लोकसभायां संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् राष्ट्रस्य यूनां भविष्यं मनसि निधाय संसदीय नियमानुसारं सर्वेषां पक्षाणां सहभागेन अस्मिन् विषये सार्थक चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति। ह्यः तृतीयदिनमपि संसदि विपक्षेण नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं छात्राणां विरोध प्रदर्शनानि चोद्धृत्य पुनः पुनः व्यवधानं कृतम्। अनन्तरं लोकसभा राज्यसभा च आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठ नेता, केन्द्रीय मन्त्री च जेपी नड्डा अवदत् यत् छात्रैः उत्थापितं नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं राजनीति विषयः न कर्तव्यः। अस्मात् प्रकरणात् राजनैतिक लाभस्य प्राप्त्यै प्रयत्नः अपि न समीचीनः। असौ ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् अवदत् यत् एतत् अन्वेषणस्य विषयः अस्ति, अथ अस्मिन् विषये गंभीर विमर्शस्य च आवश्यकता वर्तते। असौ एतदपि अवदत् यत् एषा गंभीरा समस्या अस्ति, यस्याः विषये सम्यक् निष्कपटश्च विमर्शः अपेक्षितः।
2: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फिलीपींस देशस्य मनीला नगरे आयोजितस्य क्वाड देशानां विदेश मंत्रणां उपवेशनस्य अंतराले कनाडा देशस्य विदेश मंत्रिणा अनीता आनंद

0: इत्यनया सह मेलनम् अकरोत्। असौ सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे अवदत् यत् भारत कनाडा देशयोः मध्ये सहकार्यं निरन्तरं सुदृढं भवति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् उभय देशयोः प्रधानमन्त्रिभ्यां निर्धारित लक्ष्याणां सिद्धि विषये वार्ता जाता। उत्तर मेसिडोनिया देशस्य राष्ट्रपति पदासीना गोर्दाना सल्जानोस्का दावकोवा इत्येषा अवदत् यत् विश्वस्य बृहत्तम लोकतन्त्रस्य भारतस्य राष्ट्रपतिहि एका महिला अस्ति इति गौरवस्य विषयः अस्ति। सा एतदपि अवदत् यत् राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह मेलनानन्तरं सा अतिप्रभाविता जाता तथा महिलाः विश्वे परिवर्तनम् आनेतुं समर्थाः सन्ति इति तया एतदपि अनुभूतम्। अद्य राष्ट्रिय प्रसारण दिवसः आचर्यते। अस्मिन्नेव दिवसे 27-99-शततमे वर्षे इण्डियन् ब्रॉडकास्टिंग कम्पनी इत्यस्य संस्थानस्य अन्तर्गते बॉम्बे केन्द्रात् देशस्य प्रथमं रेडियो प्रसारणं जातम्। 37-99-शततमे वर्षे जून मासस्य 8 दिने इण्डियन् स्टेट् ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इत्यस्य नाम परिवर्त्य ऑल इंडिया रेडियो इति नाम स्थापितम्। अयम् दिवसः भारतस्य विकासे शिक्षा प्रसारे तथा सांस्कृतिक रिक्थस्य संरक्षणे प्रसारणस्य महत्वपूर्णां भूमिकां प्रकाशयति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इनसे न केवल सरकार के कामकाज में सुधार होना चाहिए बल्कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भी प्रगति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित इस बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया, जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये गंभीर समस्या है जिस पर ईमानदारी से बातचीत होना जरूरी है।
2: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
1: श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसर डैन, सीनेट अध्यक्ष मिर्सोआ अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरेन ग्रिंडियानू से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा और उत्तरी मैसेडोनिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति

नई नई सुबह, नया नया सवेरा, सूरज की किरण और हवा का बसेरा, खुले आसमान में सूरज का चेहरा, मुबारक हो आपको ये हसीन सवेरा। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। वक्त हो गया है गोल्ड सुप्रभात का और आज गोल्ड सुप्रभात में आपके साथ हूं मैं सुरति। और इस प्यारी सुबह में एक प्यारे से गाने के साथ करते हैं प्यारी सी शुरुआत। यकीन मानिए, जब भी किसी अपने का आगमन होता है, किसी ऐसे के आने का एहसास होता है जिसे देख कर हमारे चेहरे की मुस्कान बढ़ जाती है, तो बस दिल से यही बात निकलती है जो आप इस गाने में सुनेंगे।

0: नमस्कार, मैं हेमा मालिनी आप सभी को अनेकानेक बधाइयाँ शुभकामनाएं देती हूँ। जब हम छोटे थे तो आकाशवाणी ही हमारी जानकारियों और एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन का जरिया था, लेकिन आज भी मुझे आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना उतना ही पसंद है, चाहे वो कार में बैठते ही रास्ते में थकान मिटाना हो या घर में सारे दिन धीमे धीमे बजने वाले गीत, सभी सुकून देते हैं। आकाशवाणी से जुड़ाव अब तो जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। धन्यवाद।
1: पल दो पल
2: कौन
3: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। सन 1927 में इसी दिन देश का पहला रेडियो प्रसारण प्रसारित हुआ था। सन 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। और ऐसे में आकाशवाणी ने जो है तमाम तरह की दूरियों

0: दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जांच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
7: FM गोल्ड पर आप सभी सुन रहे हैं अपना मन पसंद प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात, मेरे यानी सुरति के साथ। चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के मौसम की। मौसम विभाग का कहना है कि आज आंधी तूफान की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मौसम चाहे जैसा भी हो, FM गोल्ड पर गाने प्यारे प्यारे होते हैं, है ना।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न

0: और इसी के साथ गोर सुप्रभात में फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ वक्त हो गया है अब समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आज सवेरे का। उसके बाद आप सुनेंगे ठीक 8 बजे हिंदी में समाचार, ठीक 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार और 8:30 पर उर्दू में समाचार। 8:45 पर सुनना न भूलिएगा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। लेकिन अभी वक्त हो गया है समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आज सवेरे का। इसी के साथ मुझे यानी सुरति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य के साथ आकाशवाणी ने आजादी की लड़ाई से लेकर आज के डिजिटल युग तक हर भारतीय के दिल में अपनी जगह बनाई है। आज भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, शिक्षा, आपदा प्रबंधन और मनोरंजन के लिए रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना हुआ है। रेडियो केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि आपदा के समय में देश का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है। और श्रोताओं, इस समय भी आप इसी भरोसेमंद साथी से जुड़े हुए हैं। मैं हूं जया भारती और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुबह की ताजगी से भरा आपका अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे। मेरे साथ है मेरे सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
1: वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जया, एंड अ वेरी हैप्पी ब्रॉडकास्टिंग डे टू यू एंड मी एंड ऑल आवर लवली लिसनर्स हू आर लिसनिंग इन टू अस एट दिस ब्यूटिफुल थर्सडे मॉर्निंग। सो जया, थैंक्स टू रेडियो, यू एंड मी, वी आर चिट चैटिंग एंड ऑल्सो एंटरटेनिंग आवर लिसनर्स, राइट?
0: बिल्कुल सुभद्रा, और ये श्रोताओं को शायद यह बात अचंभित कर रही होगी कि आज सवेरे में हम अचानक रेडियो के इतिहास के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो श्रोताओं, हम बताना चाहेंगे कि आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू हुई। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि रेडियो ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर पूरे देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और न केवल मनोरंजन बल्कि आपदा में भी एक भरोसेमंद साथी के रूप में उभरा है। क्योंकि जब भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण बिजली गुल हो जाती है, मोबाइल नेटवर्क ठप हो जाते हैं और इंटरनेट बंद हो जाता है, तब केवल रेडियो तरंगे यानी कि रेडियो वेव्स ही काम करती है। बैटरी से चलने वाला एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लाखों लोगों की जान बचा सकता है। आपको याद होगा कि वर्ष 1999 में जब उड़ीसा का विनाशकारी महाचक्रवात आया था, तब राज्य का पूरा संचार ढांचा ही तबाह हो गया था। टेलीफोन लाइट कट चुकी थी, बिजली गुल थी और ऐसे समय में ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी मशाल बना था। इसी तरह 2004 की सुनामी ने भारत के तटीय इलाकों और विशेष रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी तबाही मचाई थी। मुख्य भूमि से इन द्वीपों का संपर्क पूरी तरह टूट गया था, तब भी आकाशवाणी ने तुरंत अपनी सेवाओं को आपदा प्रबंधन मोड पर ला दिया। रेडियो के माध्यम से लापता लोगों के नाम प्रसारित किए गए, जिससे बिछड़े परिवारों को मिलाने में मदद मिली। राहत शिविरों की सटीक जानकारी और डॉक्टरों की सलाह को 24 घंटे प्रसारित किया गया। 2013 में केदारनाथ और उत्तराखंड की बाढ़ भी रेडियो लोगों के लिए सहारा बना। और आकाशवाणी देहरादून और स्थानीय कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों ने सेना और एनडीआरएफ के साथ मिलकर रेडियो में फंसे हुए लोगों के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर, मौसम के पूर्वानुमान और सुरक्षित रास्तों की जानकारी प्रसारित की। इसी तरह साल 2014 में कश्मीर बाढ़ भी आपको याद होगी, जब आपदा में आकाशवाणी कश्मीर की लाइफलाइन बना।

0: दिसंबर का महीना था, झेलम नदी उफान पर थी और देखते ही देखते पूरा श्रीनगर शहर पानी में डूब गया था। मोबाइल टावर गिर चुके थे, बिजली गुल थी और इंटरनेट का नामो निशान नहीं था। यहां तक कि आकाशवाणी श्रीनगर का मुख्य स्टूडियो भी पानी में समा चुका था, लेकिन रेडियो की आवाज नहीं थमी। वाकई जब सब कुछ फेल हो जाता है तब सिर्फ रेडियो काम आता है और इसके कई उदाहरण हैं, जब आपदा में आकाशवाणी लोगों के लिए सहारा बना।
1: Well, Jaya, you summed it all up. We use radio not just for entertainment, news and the weather, but several important issues are taken care of in a methodical way. Now, we have a report on National Broadcasting Day.
2: This day highlights the pivotal role broadcasting has played in India's development, educational outreach and cultural preservation. From the freedom movement to nation building, radio has played a vital role in disseminating information, promoting literacy, creating health awareness and sharing agricultural knowledge, particularly in rural India. In 1956, the name Akashvani was adopted for the national broadcaster. The Vivid Bharati service was launched in 1957 with popular film music as its main component. For generations, Akashvani has been serving to inform, educate and entertain the masses, truly living up to its motto, Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai. National Broadcasting Day celebrates not just technological progress but also radio's enduring power to inform, educate, entertain and unite a diverse nation. With Priya Mondal, this is Dilnashi Arzu, Akashvani News, Delhi.
0: और अब समय है देश और दुनिया के सुर्खियों का। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुधारों से न केवल सरकार के कामकाज में सुधार होना चाहिए बल्कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भी प्रगति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।
1: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar met his Canadian counterpart Anita Anand on the sidelines of Quad Foreign Ministers meeting in Manila, Philippines yesterday. In a social media post, Dr. Jayashankar said that India-Canada cooperation has been steadily growing. He said that the conversation focused on achieving the goals for the relationship set by the prime ministers of both the nations. The External Affairs Minister also met with his New Zealand counterpart, Winston Peters, and shared perspectives on the Indo-Pacific security situation. They also discussed enhancing maritime cooperation between India and New Zealand.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगे। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री ईली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सेया अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरीन ग्रिंडियानो से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 19 तारीख से मोल्दोवा और उत्तरी मैसेडोनिया की राजकीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू की इन तीन देशों की राजकीय यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ जुड़ाव बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
1: High Commissioner of India to Kenya, Dr. Adarsh Sweka, handed over the first tranche of 4.5 tons of medical supplies for strengthening Kenya's preparedness for prevention of Ebola public health emergency to Cabinet Secretary for Health, Aidan Duale, in Nairobi yesterday. The medical assistance comprises PPE kits, sample transportation kits, infrared thermometers, face shields, heavy-duty protective boots, and other infection prevention material. India has provided over 45 tons of medical assistance to Africa Centers for Disease Control and Prevention, Africa CDC, in recent months for enhancing its Ebola preparedness and response efforts across impacted areas in Africa.
0: और अब जानकारी देते हैं संसद की कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मानसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब खेल समाचारों के साथ है चिराग झा।
3: सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
0: और अब समय है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA द्वारा कल DDA कर्मजीवी आवास योजना 2026 का शुभारंभ किया गया। प्राधिकरण ने बताया कि इस आवास योजना के अंतर्गत नरेला के पॉकेट 11 में स्थित 1200 से अधिक रहने योग्य फ्लैटों पर 25% की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। प्राधिकरण ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य कामकाजी पेशेवरों के लिए घर का स्वामित्व अधिक किफायती और सुलभ बनाना है। दिल्ली से एक और खबर है हमारे पास कि दिल्ली सरकार ने बताया है कि सिंगल विंडो प्रणाली पर उपलब्ध 84 सरकारी सेवाओं में आवेदन के निपटारे का समय कम कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पर कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों को और कारोबार से जुड़े लोगों को सरकारी सेवाएं पहले से ज्यादा तेज, आसान और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है।
1: Getting to Chennai news now, friends. The state government has renamed the school breakfast scheme as Perunthalaivar Kamraj Breakfast Scheme. The scheme was brought in by the earlier government. The TVK government, led by Chief Minister Joseph Vijay, has changed many names. The breakfast scheme will be extended to students up to class 8 on 17th of September, which is Periyar's birth anniversary. We have another news from Chennai. A 25-year-old passenger was arrested for carrying almost 4 kilogram of hydroponic ganja valued at rupees 4 crore from his check-in baggage. He had arrived from Kuala Lumpur, Malaysia to Chennai early Monday morning. The passenger was caught as he had not responded rightly. The 4 packets were tightly wrapped in black polyfilm concealed among his clothes. He was arrested, remanded to judicial custody.
0: Aur ab baat karte hain Mumbai Metro ki. महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं के लिए बच्चों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए विशेष योग्यता पुरस्कार और छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कक्षा 10 में 90% से अधिक या कक्षा 12 में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले पात्र छात्रों को 20,000 या 50,000 रुपए के एकमुश्त योग्यता पुरस्कार देने के लिए विचार किया जाएगा। राज्य की योग्यता सूची में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र भी पात्र होंगे। कक्षा 10 या कक्षा 12 की परीक्षाओं में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले पूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं के बच्चों के को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। आवेदन 15 सितंबर तक संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में जमा किए जा सकते हैं।
1: Bengaluru News Now, Deputy Chief Minister Dr. G. Parameswaran has directed officials to ensure there is no shortage of drinking water or fodder in drought-affected areas, warning that negligence causing hardship to the public will not be tolerated. Reviewing the drought situation in Chikballapur, he said Karnataka was facing one of its worst droughts in nearly 150 years, with crop sowing falling below 40% due to deficient rainfall. He instructed officials to drill boreholes wherever required, provide electricity connections without delay, expedite the distribution of 35,000 pending title deeds, and take measures to prevent water contamination.
0: अब बात करते हैं जॉय सिटी कोलकाता की। कोलकाता में यात्रियों की सुविधा और संपर्क को बेहतर बनाने के लिए कोलकाता मेट्रो ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन दोनों पर अपनी सेवा

0: का विस्तार कर रही है। एक आधिकारिक सूचना के अनुसार अगले सोमवार यानी कि 27 जुलाई से शनिवार तक प्रायोगिक सेवाएं शुरू होंगी। ब्लू लाइन पर पहली ट्रेन का समय वर्तमान के समय से सुबह 6:50 की जगह सुबह के 6 बजे और ग्रीन लाइन पर सुबह 6:39 की जगह पर 6 बजे से कर दिया जाएगा। दोनों लाइनों पर आखिरी ट्रेन रात 10:30 रवाना होगी, जो ब्लू लाइन पर दोपहर दिन के 9:44 और ग्रीन लाइन पर 10:05 से विस्तारित है। इसके अतिरिक्त सोमवार से शुक्रवार तक ब्लू लाइन पर दैनिक ट्रेन सेवाओं की संख्या 260 से बढ़ाकर 272 और ग्रीन लाइन पर 228 से बढ़ाकर 236 कर दी जाएगी। शनिवार को ब्लू लाइन पर सेवाओं की संख्या 246 से बढ़ाकर 258 और ग्रीन लाइन पर 204 से बढ़ाकर 212 कर दी जाएगी।
1: And Hyderabad News Now, a delegation from the Sports Authority of India inspected key sporting facilities across Mirchal, Malkajgiri, Karimnagar and Hanumkonda district yesterday as part of preparations for the upcoming 8th Khelo India Youth Games 2026 in Telangana. Led by SAI Executive Director Amar Jyoti, alongside Assistant Directors Madhu Harsha, Gopal Kandpal and Mohit, the team conducted thorough assessments at several prominent locations. To ensure international standards for the national event, the delegation instructed local authorities to immediately undertake necessary repairs and upgrade existing infrastructure where required. And Jaya, we have one important announcement for our listeners. Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has informed that 16 metro stations will be closed from 7:30 a.m. till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Ramakrishna Ashram Marg, Barakhamba Road, Supreme Court, Seva Tirth, Janpath, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprastha, Khan Market, Jorbagh and Shivaji Stadium. However, DMRC noted that the interchange facility will remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat.
0: और अब समय है ये जानने का कि आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में आज बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उधर मुंबई में आसमान साफ रहने की संभावना है। शहर का न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इसके अलावा कोलकाता में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि आज का न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: Chennai is likely to witness a partly cloudy sky, possibility of moderate rain or thunderstorm. The temperatures are expected to range between a minimum of 27 and maximum 37 degrees Celsius. Bengaluru will experience generally cloudy sky with light rain. Minimum temperatures expected to be 21 degrees, while the maximum may reach 28 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky with light rain or drizzle. Temperatures are expected to range from 23 to 32 degrees.
0: और अब आइए जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में आज के दिन कौन सी तारीखें दर्ज है।
1: 1904, this day, the Great Indian Peninsula Railway started first-class restaurant cars on its mail trains. 1920, this day, British East Africa is renamed Kenya and becomes a British Crown Colony.
0: आज के दिन 1981 में भारत के पहले भूस्थिर उपग्रह यानी कि एप्पल ने आज ही के दिन अंतरिक्ष में आधिकारिक रूप से काम करना शुरू किया था।
1: And 1993, Indian National Satellite, INSAT-2B, second satellite in the INSAT-2 series, was launched. And 2014, the 2014 Commonwealth Games in Glasgow, Scotland begin. And in 2015, NASA announces the discovery of the planet Kepler-452b by the Kepler probe. It is believed to be the most Earth-like planet to have been discovered.
0: और इसके कुछ दिनों बाद यानी कि 2019 में भारत ने अपने महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान 2 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था।
1: एंड अगेन 2020 समर ओलंपिक्स बिगिन एट टोक्यो।
0: और अब बात करते हैं कुछ प्रमुख हस्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो आज की तारीख सिहाई से नहीं बल्कि देश के महानतम सपूत के लहू से लिखा गया है। आज देश के सबसे निडर, निर्भीक और अदम्य

0: साहसी क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद की जयंती है। वही आजाद जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की चोले हिला दी और जो जीते जी कभी फिरंगियों के हाथ नहीं आए। भारत माँ के इस वीर सपूत का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। श्रोताओं, आजाद जी सिर्फ एक नाम नहीं थे, वे ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक खौफ थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जीते जी कभी भी फिरंगियों की पुलिस उन्हें छू भी नहीं पाएगी और उन्होंने अपनी इस प्रतिज्ञा को अपनी आखिरी सांस तक निभाया। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब वो दुश्मनों से घिर गए तो उन्होंने अकेले ही पूरी पुलिस फोर्स का सामना किया और जब उनके पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने की जगह खुद को गोली मार ली और भारत माँ की गोद में हमेशा के लिए सो गए। उनकी वो लाइन आज भी हवाओं में गूंजती है कि दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। उनका दम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान आज भी देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा देता है।
1: And friends, we are going to another freedom fighter. Tributes to a freedom fighter, a dedicated medical doctor. Lakshmi Sehgal was the captain of the world's first women's modern military regiment, born Lakshmi Swaminathan in Madras, now it's called Chennai, to a progressive, politically active family. She earned her MBBS degree from Madras Medical College in 1938. After a brief period practicing medicine, she moved to Singapore in 1940, where she treated impoverished Indian laborers and provided medical aid to prisoners of war. This was the time she met Subhash Chandra Bose and joined forces with his Indian Independence League and the Indian National Army, INA, and was appointed by Bose as the commander of the newly formed Rani of Jhansi Regiment, becoming universally known as Captain Lakshmi, and toiled hard for the betterment of the country. She earned a Padma Vibhushan in the year 1998, and in the year 2012, she left this world on this day at the age of 97.
0: और आज ही के दिन जहां हम एक तरफ चंद्रशेखर आजाद जी को याद कर रहे हैं और भी फ्रीडम फाइटर को याद कर रहे हैं, तो आज ही के दिन साल 1856 में भारत माँ के एक और महान सपूत का जन्म हुआ था जिन्होंने देश के कोने कोने में स्वराज की अलख जगाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। श्रोताओं, तिलक जी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो एक दूरदर्शी समाज सुधारक, वकील और पत्रकार भी थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए मराठा और केसरी जैसे अखबारों की शुरुआत की। उनके तीखे लेखों से ब्रिटिश सरकार इस कदर डर गई थी कि उन्हें कई बार जेल में डाला गया, लेकिन जेल की चार दीवारें भी उनके हौसलों को कम

आज का दिन एक ऐसी महान आत्मा को भी नमन करने का है जिसने अपना पूरा जीवन मानवता, शांति और गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया। आज सिस्टर मैरी निर्मला जोशी की जयंती है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा के निधन के बाद मिशनरीज ऑफ चैरिटी की कमान संभालने के लिए चुना गया था। सिस्टर निर्मला जोशी का जन्म आज ही के दिन साल 1934 में झारखंड की राजधानी रांची के एक नेपाली हिंदू परिवार में हुआ था। बचपन में उनका नाम कुसुम था। पढ़ाई लिखाई में बेहद होनहार कुसुम ने राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री ली और कानून की पढ़ाई भी की, लेकिन कानून की अदालतों से ज्यादा उन्हें समाज के सबसे गरीब और बेसहारा लोगों की सेवा करने में अपना सुकून नजर आया। सिस्टर निर्मला की इसी निस्वार्थ और मूक सेवा के लिए भारत सरकार ने साल 2009 में उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत किया।

0: आज आधुनिक भारतीय चित्रकला के उस्ताद सैयद हैदर रजा यानी SH रजा साहब की पुण्यतिथि है। रजा साहब एक ऐसे जादुई चित्रकार थे जिन्होंने कैनवास पर सिर्फ रंगों को नहीं बिखेरा बल्कि भारतीय दर्शन, आध्यात्म और ब्रह्मांड के रहस्यों को उकेरा है। भारत सरकार ने कला जगत में उनके इस अद्वितीय योगदान के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत किया था। फ्रांस सरकार ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान लेजियन ऑफ ऑनर से नवाजा था।
1: एंड फ्रेंड्स, बर्थडे ऑफ अ म्यूजिक कंपोजर प्रोडिजी, द गॉड ऑफ इंडियन वायलिन। वी आर टॉकिंग अबाउट डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, हु एक्सेल्ड इन इंडियन ट्रेडिशनल कर्नाटक म्यूजिक बट ऑल्सो अ पायनियर ऑफ फ्यूजन इन इंडिया। He studied to become a physician, but then his love for music overpowered the medical profession, so he became a global icon. From the California Institute of Arts, he earned a master's degree in Western classical music. This overseas study expanded his mastery of both Indian Carnatic and Western classical traditions. In the year 1973, and from there on, he made several historical collaborations and creations of albums with a number of international musicians. Dr. Subramanian is the only musician who has performed, recorded Carnatic classical music, Western classical music, both orchestral and non-orchestral, and also composed for and conducted major orchestras.
0: आज का दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास के एक ऐसे फनकार को भी याद करने का है जिन्होंने रोते हुए लोगों को हंसना सिखाया।

0: आज ओरिजिनल भाईजान और किंग ऑफ कॉमेडी महमूद अली साहब की पुण्यतिथि है। फिल्मों की बात करें तो उन्होंने 300 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया है। सुनते हैं पड़ोसन का ये सदाबहार गीत।
1: या कच्चा तुरा।

0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो आज सवेरे के आज के अंक में बस इतना ही।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
5: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
4: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप

0: करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मन्नलूर और पिल्पाइकम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गॉर्डोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
1: What is the most important?
2: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
1: With deep feelings, emotional intelligence.
0: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
3: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और ये दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज़ादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
4: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोऊ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
5: पीओजेके में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, सरकार के हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूं। अमर उजाला ने बताया है, जंतर मंतर पर फिर पथराव, 2 एसीपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज सिटीजन वेलफेयर मस्ट रिमेन एट हार्ट ऑफ रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स शुड बी डिजाइंड अराउंड पीपल्स नीड्स। यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा सेज गवर्नमेंट रेडी टू डिस्कस नीट पेपर लीक इश्यू इन पार्लियामेंट एंड फॉर्मुलेट इफेक्टिव पॉलिसी टू इंश्योर परमानेंट सोल्यूशन टू द इश्यू। India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Center approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today. And 23rd Commonwealth Games to begin in Glasgow, Scotland today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that welfare of citizens must remain at the heart of all reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. He said reforms should not only improve the functioning of the government but also accelerate India's journey towards becoming a developed nation. We have a report.
8: Prime Minister Modi made these remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors in advancing the vision of Viksit Bharat. The meeting held at the Prime Minister's residence focused on strengthening governance, improving inter-ministerial coordination and accelerating the implementation of reforms aimed at enhancing citizens' welfare. Highlighting the rapidly evolving governance landscape, Mr. Modi stressed the need to modernize governance processes in line with changing times. Calling for greater convergence among ministries, he said the vision of Viksit Bharat should become a Jan Andolan with the country's youth forming the foundation of this national mission. Addressing the issue of drug abuse among young people, Prime Minister stressed the need for an institutional mechanism that promotes coordination across departments and integrates youth-centric initiatives to tackle the challenge more effectively. On sports, Mr. Modi advocated an integrated development strategy to position India as a global sporting destination. Prime Minister also highlighted the transformative potential of the PM Kusum scheme in strengthening the agriculture sector through wider adoption by farmers. He further emphasized the need for a global mapping of skill requirements to align India's workforce with emerging international opportunities and future employment demands. With Bhanu and Suparna, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
7: Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that government is ready to discuss the neat paper leak issue in Parliament and formulate an effective policy to ensure a permanent solution to the issue. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said, instead of indulging in blame games and constantly shifting the goalposts, the opposition should participate in a meaningful parliamentary discussion on the serious issue of paper leaks. He said paper leaks are a national concern and not an issue confined to any one government or political party, yet the opposition continues to politicize the matter. He said this is a serious problem which deserves a thorough and sincere discussion. Mr. Nadda said Parliament is the most appropriate forum where in-depth discussion on the matter can take place.
9: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्वड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड, जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।

0: woman as the president, that is really something special, knowledgeable, with deep feelings, emotional intelligence.
1: National Broadcasting Day is being observed today. On this day in 1927, the first ever radio broadcast in the country went on air from the Bombay station under the Indian Broadcasting Company. On the 8th of June 1936, the Indian State Broadcasting Service became All India Radio. The day commemorates nearly a century of broadcasting's contribution to informing, educating, entertaining and uniting the nation. Details on this from our correspondent.
2: This day highlights the pivotal role broadcasting has played in India's development, educational outreach and cultural preservation. From the freedom movement to nation building, radio has played a vital role in disseminating information, promoting literacy, creating health awareness and sharing agricultural knowledge, particularly in rural India. In 1956, the name Akashvani was adopted for the national broadcaster. The Vivid Bharati service was launched in 1957 with popular film music as its main component. For generations, Akashvani has been serving to inform, educate and entertain the masses, truly living up to its motto, Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai. National Broadcasting Day celebrates not just technological progress but also radio's enduring power to inform, educate, entertain and unite a diverse nation. With Priya Mondal, this is Dilnashi Yarzu, Akashvani News, Delhi.
1: A voluntary shutdown and wheel jam strike continue in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK. The Joint Awami Action Committee, JAAC, has urged people of the POJK to participate in the protests today with full strength to demand implementation of their demands and pray for those who were killed by Pakistani authorities during the movement. In a social media post, JAAC has termed today as a day of utmost importance. The JAAC leaders slammed the Pakistani authorities, describing the rulers as killers of the innocent people who have been murdered in retaliation for demanding their rights. On to sports. The 23rd Commonwealth Games, CWG, will begin today in Glasgow, Scotland. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. Olympic medalists Neeraj Chopra, Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain are set to represent India at the CWG 2026. Indian contingent comprises 125 members, including para-athletes. India won 61 medals at the last Commonwealth Games. However, this year's Commonwealth Games presents a different challenge with fewer medal events and a significantly smaller sporting program. In China Open Badminton, India's PV Sindhu, Ayush Shetty and Lakshya Sen have entered singles pre-quarterfinals in Shangzhou. Double Olympic medalist PV Sindhu advanced to the women's singles second round after defeating fellow Indian player Unnati Hooda by 21-14, 9-21, 21-10 in a round of 32 clash. In the men's singles, Ayush Shetty defeated number 11 Alvi Farhan of Indonesia to reach the round of 16. In another round of 32 match, Lakshya Sen defeated Japanese player Yushi Tanaka 22-20, 15-21, 21-14. And now for a look at today's newspapers. It's over to Subhadra Ramachandran.
3: Thank you, Sarabjit. On the margins of ASEAN engagements, Jaishankar conveys to Lavrov India's concern over safety of Indian seafarers, notes a statesman. The Financial Express informs, cross-holding cap set to ease. Airline doors may open for Adani GMR. 100% tariff on generic drug imports into US from 2028. Trump prescribes new pill. India's side effects unlikely, states the Economic Times. And finally, the Financial Express on its editorial page under the caption, Oil on the Boil Again, writes, Brent spot prices have gone well past $90 a barrel with the war clouds over West Asia. The prospect for costlier oil is bad news for countries like India that imports 88% of its energy requirements, which would widen its trade deficit and push up inflation. And with that, it's back to you, Sarabjit.
1: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says citizen welfare must remain at heart of reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. Union Minister JP Nadda says government ready to discuss NEET paper leak issue in Parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Centre approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
4: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद तमाम इस्लाहात का बुनियादी मकसद होना चाहिए और अवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत के इकदामात तरतीब दिए जाने चाहिए। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हुकूमत नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है और इस मसले का मुस्तकिल हल यकीनी बनाने के लिए मौसर पॉलिसी तैयार करेगी। भारत साल 2033 तक 5 छोटे एटमी बिजली घरों को फाल बनाने का मंसूबा रखता है। मरकजी हुकूमत ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए मालियत के 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया के 2 रोजा दौरे पर रहेंगी और मर्दों के क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 बैन अलाक्वामी T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज शाम हरारे में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद हर इस्लाह का बुनियादी मकसद होना चाहिए और हुकूमत के इकदामात अवाम की जरूरियात को मद्देनजर रख कर तैयार किए जाने चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि इस्लाहात को न सिर्फ हुकूमत के कामकाज को बेहतर बनाना चाहिए बल्कि भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के सफर को भी तेज करना चाहिए। पेश है एक रिपोर्ट।
5: वजीर आजम मोदी ने ये बात सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए कही, जिसमें देही तरक्की, ज़राअत, समाजी बहबूद और दिगर मुतालिका शोबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ये मीटिंग वजीर आजम की रिहायशगाह पर मुनाकिद हुई, जिसमें हुक्मरानी को मजीद मुअस्सर और मजबूत बनाने, मुख्तलिफ वजारतों के दरमियान तालमेल को बेहतर बनाने, अवामी फलाह के लिए इस्लाहात पर तेजी से अमल दरामद करने पर जोर दिया गया। तेजी से बदलते हुए हुक्मरानी के मंजरनामे को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने बदलते हुए वक्त के मुताबिक हुकूमत के निजाम को जदीद बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आजम ने कहा कि विकसित भारत का विजन एक जन आंदोलन बनना चाहिए, जिसमें मुल्क के नौजवान इस कौमी मिशन की बुनियाद हों। उन्होंने नौजवानों में मुनशियात के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर ताउन और नौजवानों पर मरकूज प्रोजेक्टों को मरबूत करने के लिए एक इदारा जाती निज़ाम कायम करने की जरूरत है, ताकि इस चैलेंज से ज्यादा मौसर अंदाज में निपटा जा सके। इसके अलावा खेलों के शोबे में भी वजीर आजम मोदी ने जामे और मरबूत तरक्की पर जोर दिया। वजीर आजम ने कहा कि एक जामे हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए, ताकि भारत को खेलों के आलमी मरकज के तौर पर कायम किया जा सके। उन्होंने पीएम कुसुम स्कीम की जरिए शोबे की कायापलट की सलाहियत को भी उजागर किया और कहा कि अगर ज्यादा से ज्यादा किसान इस स्कीम को अपनाएं तो इससे ज़राअत को नुमाया फायदा पहुंच सकता है। वजीर आजम ने इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया भर में दरकार महारतों का जामे जायजा लिया जाए, ताकि भारत की अफरादी कुव्वत को आलमी सतह पर उभरने वाले रोजगार के मौके और मुस्तकबिल की मुलाजमतों की जरूरियात के मुताबिक तैयार किया जा सके। नई दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्बार।
4: सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि तलबा की जानिब से उठाए गए नीट पेपर लीक मामले को सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए और इस मामले से सियासी फायदा उठाना मुनासिब नहीं है। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि ये जांच का मौजू है जिस पर तफसीली बातचीत की जरूरत है। जनाब नड्डा ने कहा कि पेपर लीक एक संगीन मसला है जिस पर संजीदगी से गौर खोज जरूरी है।
6: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्वड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
4: मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में एनडीए हुकूमत ने इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लिया है। उन्होंने हुकूमत के इस मौकिफ को दोहराया कि पार्लियामेंट में नीट के मामले पर बहस के लिए वो तैयार है और अपोजिशन बहस के दौरान ही इसका फैसला कर सकती है। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि पार्लियामेंट ही वो सबसे मुनासिब मौजू फोरम है जहां इस मामले पर तफसीली और जाम बहस की जा सकती है। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि अपोजिशन पेपर लीक जैसे संगीन मामले पर बामानी पार्लियामानी बातचीत की बजाय इल्ज़ाम तराशी का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कौमी तशवीश का मामला है जो किसी एक हुकूमत या सियासी पार्टी तक महदूद नहीं है, लेकिन फिर भी अपोजिशन इस मामले को सियासी रंग देने में लगी हुई है।
6: मैं पूछना चाहूंगा विपक्ष के नेता राहुल गांधी से कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा, क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, आपका उद्देश्य एजुकेशन की क्वालिटी में बढ़ोतरी हो, स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले, इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है।
4: जनाब नड्डा ने कांग्रेस और अपोजिशन की हुक्मरानी वाली रियासतों में मुख्तलिफ इम्तिहानात के पेपर लीक के मामले भी उठाए। उन्होंने कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर जानिबदारी बरतने का इल्ज़ाम लगाते हुए सवाल पूछा कि वो इन वाकयात पर बात क्यों नहीं करते। जनाब नड्डा ने जनाब गांधी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इस मामले से सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, जो कि अफसोसनाक है। जनाब नड्डा ने कहा कि जनाब गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई प्रेजेंटेशन में 150 इम्तिहानी पर्चों के लीक होने से मुतालिक बात की। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि ये जांच का मौजू है और हुकूमत बिलाशुबा इसकी जांच करेगी और मुल्क और अवाम के सामने सच्चाई को पेश करेगी। हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बामानी मुबाहसे के लिए तैयारी की बात दोहराई है। लोकसभा में कल इस बारे में इजहार ख्याल करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि हुकूमत मुल्क के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए पार्लियामानी जवाबित के तहत इस मामले के सभी पहलुओं पर बामानी मुबाहसे के लिए तैयार है। जनाब रिजिजू का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब नीट पेपर लीक मामले तलबा के मुजाहरों समेत मुख्तलिफ मौजूदात पर पार्लियामेंट की कार्रवाई अपोजिशन के हंगामा आरई की वजह से कल लगातार तीसरे दिन भी रखनांदाजी का शिकार रही। इस दौरान राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मरकजी वजीर तालीम के इस्तीफे के बगैर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक ने कहा है कि अगर हुकूमत ये यकीन दहानी कराए कि नीट पर्चा लीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले नौजवानों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। मरकजी वजरा जे पी नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे गए खत में जनाब वांगचुक ने दोनों वजीरों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मंगल की रात अस्पताल में उनकी अयादत की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल मरकज और दिल्ली पुलिस से उन दरख्वास्तों पर जवाब तलब किया है जिनमें पार्लियामेंट की जानिब मार्च करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ जरूरत से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया था। अदालत ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो पुलिस कार्रवाई से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड महफूज रखें जिनमें सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल हैं। अदालत ने मुतालिका हुक्काम को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। मामले की अगली समाअत 11 सितंबर को होगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने इत्तला दी है कि कौमी राजधानी में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अगले हुक्मनामे तक सुबह 7:30 बजे से 16 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। DMRC ने कहा है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। एटमी तवानाई के महकमे के ममलकती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हुकूमत साल 2033 तक स्वदेशी बनावट के कम से कम 5 छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियाई रिएक्टर्स को फाल करने का इरादा रखती है। पेश है एक रिपोर्ट।
7: लोकसभा में अपने तहरीरी जवाब में डॉक्टर सिंह ने बताया कि पार्लियामेंट ने शांति कानून 2025 को नाफिज करते हुए प्राइवेट शराकतदारों के लिए न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे के दरवाजे खोल दिए हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 220 मेगावाट का एक भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, 55 मेगावाट का एक रिएक्टर और एक हाई टेंपरेचर गैस कूल्ड रिएक्टर डेवलप कर रहा है। जो हाइड्रोजन पैदा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने न्यूक्लियाई तवानाई मिशन के तहत ऐलान करदा साल 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लियाई बिजली सलाहियत हासिल करने के मकसद से रोड मैप वजह किया है। वजीर मौसूफ ने बताया कि रोड मैप के मुताबिक 8.78 गीगावाट की मौजूदा न्यूक्लियाई बिजली की सलाहियत के साल 2000

0: 31 32 तक 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। ये हौसलियाबी उन प्रोजेक्टों के जरिए हासिल की जा सकती है जो फिलहाल नफाज के मुख्तलिफ मरहलों में हैं। नई दिल्ली से कमोदी पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: मरकज ने तमिलनाडु में मजमुई तौर पर 1012 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से 2 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मिक्स्ड EMC को मंजूरी दी है। इस कदम का मकसद रियासत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग माहौलियाती निज़ाम को मुस्तहकम करना और इस सेक्टर में भारत को खुद इन्हेसारी की सिमत में आगे बढ़ाना है। ये ऐलान कल लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने दी। दोनों मिक्स को मनालुर और पिलापक्कम में फरोग दिया जाएगा। मनालुर EMC 474.3 एकड़ रकबे पर फैला होगा और इस प्रोजेक्ट पर 587.47 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि पिलापक्कम EMC की तामीर 379.3 एकड़ में 424.55 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से 2 रोज़ा रोमानिया दौरे पर रहेंगी। इस दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू रोमानिया के सदर निको सरदान, उबूरी वजीर आजम इली बोलोयान, सीनेट के सदर मिर्सिया अब्दुरिडियान और चेंबर ऑफ डिप्यूटीज़ के सदर सोरिन ग्रिंडेन्यू से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा सदर जमहूरिया का रोमानिया भारत पार्लियामानी फ्रेंडशिप ग्रुप के अराकीन से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। सदर जमहूरिया फिलवक्त शुमाली मकदूनिया के तारीखी दौरे पर हैं। ये मकाम न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती बल्कि गोनागों तारीख और आलमी अहमियत की हामिल लेक और हिट के लिए जाना जाता है। इससे पहले शुमाली मकदूनिया की सदर गोर्डाना दावकोवा ने कहा कि यह फख्र की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत की सदर एक खातून है। स्कोपिये में आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मोहतरमा दावकोवा ने कहा कि वह भारत की तवील तारीख और रूहानियत से काफी मुतासिर हैं। आज नशरियात का कौमी दिन मनाया जा रहा है। साल 1927 में आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से रेडियो नशरियात का आगाज हुआ था। 8 जून 1936 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम तब्दील करके इसे ऑल इंडिया रेडियो AIR रख दिया गया। ये दिन भारत की तरक्की, तालीम के फरोग और सकाफती विरसे के तहफ्फुज़ में नशरियात के अहम किरदार को उजागर करता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ये दिन भारत की तरक्की, तालीमी आगाही और सकाफती विरसे के तहफ्फुज़ में नशरियात के अहम रोल को उजागर करता है। आज़ादी की तहरीक से लेकर मुल्क की तामीर तक रेडियो ने मालूमात की तरसील, खानदगी के फरोग, सेहत से मुतालिक आगाही पैदा करने और खासतौर पर देही इलाकों में ज़रिए मालूमात पहुंचाने में नहायत अहम किरदार अदा किया। कई नस्लों से आकाशवाणी अपने नस्ब उलैन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ऐन मुताबिक अवाम की को मालूमात, तालीम और तफरी फराहम करता आ रहा है। नई दिल्ली से दिल नशी आरजू की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: मर्दों के क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
0: शुक्रिया समीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने वजीर खारजा एस जयशंकर के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि सरहदी इलाकों में अमन इस्तेहकाम भारत और चीन के दरमियान मामूल के ताल्लुकात की पहली शर्त। अखबार इनकलाब की सुर्खी है खातून अरकान पार्लियामेंट पर काबिल एतराज तबसरे की पादाश में रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी इजलास की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल। मुल्क में तैयार आबदोश शिकन जंगी जहाज INS मालवन बहरिया के बेड़े में शामिल, इस खबर को भी अखबारात ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार की एक और सुर्खी है अपोजिशन की हंगामा राय की वजह से लोकसभा में मुसलसल तीसरे दिन वक्फ़ सवाल नहीं हो सका। अखबार इनकलाब लिखता है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दहशतगर्दाना हमले में हेड कांस्टेबल की मौत। अखबारात की बैन अलाक्वामी खबरें इस तरह हैं ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान, ईरान के जौहरी तनसीबात के करीब अमरीका का हमला।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद तमाम इस्लाहात का बुनियादी मकसद होना चाहिए और आवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत के इक़दामात तरतीब दिए जाने चाहिए। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हुकूमत नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है और इस मसले का मुस्तकिल हल यकीनी बनाने के लिए मौसर पॉलिसी तैयार करेगी। भारत साल 2033 तक 5 छोटे एटमी बिजली घरों को फाल बनाने का मंसूबा रखता है। मरकजी हुकूमत ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए मालियत के 2 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग

क्लस्टर्स की मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया के दो रोजा दौरे पर रहेंगी। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 बैन अलावामी T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज शाम हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।

0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस.
1: वी ब्रिंग यू अ टॉक ऑन एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस बाय एना एप्रिया, एसोसिएट लीगल, सेंटर फॉर WTO स्टडीज, IIFT. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: ज्यूरिसप्रूडेंस की बात करते हैं तो इंडिया में कोई भी ज्यूरिसप्रूडेंस हो, वेदर एनवायरमेंटल और अदरवाइज, द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी सब्जेक्ट के बारे में क्या बोलता है पहले हम ये देखते हैं, एंड देन वी सी, वी लुक एट द लॉज विच आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. बट एक पिक्यूलियर बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि इसमें बहुत एक स्कूल ऑफ थॉट है जिनका मानना है कि एनवायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन एनवायरमेंटली ब्लाइंड था इन द वेरी बिगिनिंग व्हेन इन 1950s इट वाज अडॉप्टेड, बिकॉज द टर्म एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, ये सारे टर्म्स नहीं थे उसमें. बट अदर स्कूल ऑफ थॉट ऑन द अदर हैंड, विच आई ऑल्सो अग्री विथ, सेज दैट साइलेंस ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डज नॉट मीन कि कोई इंटेंट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का. लेटर ऑन वील सी कैसे आर्टिकल 21, जो कि हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहा है, उसको ही यूज करके हमारी ह्यूमन राइट्स एंड राइट टू डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 को यूज करके एनवायरमेंटल राइट्स आगे इवॉल्व हुए हैं. और ये मेन प्रोविजन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के एनवायरमेंट के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 48A में और फंडामेंटल ड्यूटी जो सिटीजन्स की होती है वो 51AG में मेंशनड है. ऑल्दो ये दोनों ही राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो कि पार्ट 3 में होते हैं, लेकिन इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन डेवलपिंग एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस. क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की पहले आर्टिकल में ये लिखा है कि directive principles are fundamental to the governance of a nation. So although it is not a fundamental right, it is also a fundamental concern of the Indian government as well as the Indian constitution. And few more provisions जो कि usually छूट जाता है लोगों के notice से, क्योंकि 48A and 51AG are the most important ones. But if you look at the provisions relating to local government, which is municipal corporations, उसमें भी explicitly functions में उनके mentioned होता है. If you look at part 9A of the constitution, which talks about municipal corporation, local government generally, कि you have to make a draft development plan for ecological conservation and environmental protection. तो जो डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज हैं उनके रिस्पेक्ट में स्पेसिफिकली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का मेंशन है. तो ये ऑलरेडी हमारे भले ही वो मॉडर्न लेजिस्लेटिव सेंस में हमारे ज्यूरिसप्रूडेंस में नहीं रहा हो, वो 1972 के बाद आए हो, बट इंट्रिंसिकली इंडियन ज्यूरिसप्रूडेंस ऑलवेज हैड एन इम्पॉर्टेंट, इट ऑलवेज हैड गिवन इम्पॉर्टेंस टू एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन. सो इफ यू कैन सी 1972 में कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद 1974 में वाटर एक्ट आया, 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1981 में एयर कंजर्वेशन, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एंड फाइनली 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, विच इज मोर ऑफ एन अम्ब्रेला एक्ट जिसमें सारा एनवायरमेंट की सारी चीजें कवर होती हैं. बट दैट केम आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी स्पेसिफिकली. सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड जो होते हैं जो वाटर और एयर एक्ट के अंडर काम करते हैं, एंड EIA नोटिफिकेशन जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर से ही एमिनेट करता है. एंड देन टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, देन अगेन आफ्टर स्टॉकहोम इंडिया हैज बिकम अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज कन्वेंशंस, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNFCCC, पेरिस अग्रीमेंट, इन विच मेनी बिग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर एग्जिटिंग एंड एंटरिंग इट अगेन एंड अगेन, बट इंडिया हैज बीन कमिटेड टू इट्स प्रिंसिपल्स अंडर पेरिस अग्रीमेंट. देन कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, साइट्स एंड बेसल कन्वेंशन, जो वेटलैंड्स की बात करता है, तो ऑल्सो

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Jurisprudence.
2: सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरी जर्नी में है कुछ अगर तो वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड टेकिंग अप पिटिशंस बाय पर्संस हु वर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लीगल कॉन्सेप्ट विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई। उसमें ये बोला जाता है कि जो इंसान अफेक्टेड है वो ही कोर्ट में जा सकता है। बट बाई मीन्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया। तो इवन इफ एनी पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड इवन वेन दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट स्टेक इन द आउटकम इवन दे कैन गो टू कोर्ट। तो पहला एस्पेक्ट तो ये था। दूसरा कोर्ट ने ये करा कि लेटर्स और टेलीग्राम्स के फॉर्म में भी जो लेटर लिखा जाता था, बहुत सारे ओपन लेटर्स आते हैं न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कि ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे लेटर्स कभी कभी जाते थे जिसमें एक स्पेसिफिक लीगल प्रॉब्लम स्पेशली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बताई हुई होती थी। कोर्ट ने उसको रिट पिटिशन के फॉर्म में खुद ही कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो इवन ए पर्सन हु इज नॉट एबल टू हायर अ लॉयर और उसको पूरी कोर्ट की वो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज नहीं पता है, उनकी बातें भी कोर्ट तक पहुंचने लग गई। थर्ड वाज सुओ मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट लेने से, नाउ एनजीटी आल्सो टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जिसमें अगर कोर्ट या किसी जज ने या कोर्ट की रजिस्ट्री ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट सॉरी न्यूज़पेपर्स में कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की एक्टिविटी हो रही है विच इज नॉट मे बी कोर्ट के सामने अभी तक नहीं आई है, तो कोर्ट ने वो खुद से ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके उस पर काम करना शुरू कर दिया। चौथी एक इम्पॉर्टेंट चीज ये हुई कि एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स, जिसमें ए वर्सेस बी का फॉर्मेट रहता है कोर्ट में, उसको हटाकर कोर्ट ने बोला कि एनवायरमेंटल मैटर्स में, क्योंकि तो कोर्ट मेड एक्सपर्ट लेवल कमिटीज और उनको बोला कि आप टाइम लीजिए साइंटिफिक इवैल्यूएशन करके हमें फाइंडिंग्स बताइए, बेस्ड ऑन दोज फाइंडिंग्स देन कोर्ट गेव वेरी रीजंट रिस्पॉन्सेज। अदर देन दिस मॉनिटरी कंपेंसेशन इक्विटेबल रेमेडीज भी कोर्ट देने लग गई एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। अब जो दो मेन आर्टिकल की बात होती है राइट्स चैप्टर में, वन इज आर्टिकल 19 एंड वन इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 बहुत मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि इट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट उसमें कोर्ट ने रीड किया हुआ है राइट टू नो। तो इसमें राइट टू नो कोर्ट ने कैसे इंप्लीमेंट किया कि उसमें कोर्ट ने अथॉरिटीज को कंपेल किया कि आप जो सैनिटेशन प्लान्स हैं अपने या बिल्डिंग बनाने की जो परमिशन स्लिप्स हैं वो सारे कुछ प्रोड्यूस करना, एंड द सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज प्लान्स। तो उस तरह से कोर्ट ने इसको इंप्लीमेंट किया। एंड आर्टिकल 21 में आई विल बी अ लिटिल ब्रीफ। आर्टिकल 21 में देर वेर फ्यू केसेज, जैसे स्टार्टिंग में कोर्ट ने आर्टिकल 21 का नाम नहीं लिया लेकिन बात की कि देर इज अ राइट टू लिव इन एन हेल्दी इन्वायरमेंट, वो दून वैली का केस था स्पेसिफिकली स्पीकिंग, रूरल इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में मसूरी में माइनिंग हो रही थी तो उसको रोक करके कोर्ट ने बोला कि देर इज अ राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, बट उसमें आर्टिकल 21

0: मेंशन नहीं किया, बट इवेंचुअली आगे चल के दो तीन केसेस के बाद इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था जिसमें कोर्ट ने बोला कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट, होलसम एनवायरनमेंट विथ फ्री क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर इज द राइट अंडर आर्टिकल 21. सो नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर कोई राइट आपका फंडामेंटल राइट बन जाता है तो एट द सेम टाइम यू गेट रेमेडी अंडर आर्टिकल 32. तो उसमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. अगर कोई चीज आपकी फंडामेंटल राइट है तो बारिंग ऑल कोर्ट्स यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट. एंड यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ एमसी मेहता, ही वॉज अ बिग टाइम एनवायरमेंटलिस्ट एंड लिटिगेटर. तो इनके नाम पे बहुत सारे केसेस हैं. जो लॉ स्कूल में जाते हैं वो तो काफी ज्यादा इनका नाम सुनते हैं, जनरली भी एनवायरमेंट सर्कल्स में ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स. तो वंस यू गेट अ राइट, वॉट एम सी मेहता डिड इज ही फाइल्ड पिटिशंस इन कोर्ट यूजिंग आर्टिकल 32, जिससे उनको एक्चुअल रेमेडी मिले. क्योंकि जब एक वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी, सो नाउ द कोर्ट हैज एस्टेब्लिश्ड अ राइट अंडर आर्टिकल 21, सो देर इज अ रेमेडी एज वेल इन्वॉल्व. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ टू केसेस, गंगा पोल्यूशन केस एज एंड द ओलियम गैस लीक केस. So just to take one example, in the MC Mehta versus Union of India case, MC Mehta went to court and it said that ये tanneries से जो पानी, जो chemical factories और tanneries से जो waste निकल के पानी में जा रहा है, which is polluting the Ganga River, eventually the court had to order to shut down these tanneries. So this now right has taken in the form of a remedy as well. Indian Council for Enviro Legal Action, इसमें court ने पहली बार एक हाई लेवल पे एनवायरमेंटल रिमीडिएशन के लिए कॉस्ट पे करने के लिए बोला केमिकल फैक्ट्रीज को. एंड द टीएन गोदावर्मन केस, लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, इसमें कोर्ट ने कंटिन्यूइंग मैंडमस इशू किया, जिसमें कोर्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन का ये ओरिजिनली केस था और अभी तक इस पे ऑर्डर्स और हियरिंग्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट में. सो दीज वेर द मोस्ट फर्टाइल ईयर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें राइट्स और रेमेडीज काफी ज्यादा इवॉल्व किए गए.
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: आर्थिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: You had been listening to a talk on environmental jurisprudence by

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं, बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डॉन, अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोरोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दावकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कोपिये में आकाशवाणी संवाददाता शुभश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दावकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं। अमरीका और सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे खाड़ी देश सऊदी अरब को नागरिक परमाणु कार्यक्रम विकसित करने की अनुमति मिल जाएगी। अमरीकी ऊर्जा विभाग के अनुसार इस समझौते को शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौता बताया गया है जिससे सऊदी अरब के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में अमरीकी कंपनियों को व्यापक पहुँच मिलेगी। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927

0: 100.5 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है म्यूजिकल दिल लगी और मैं हूँ आपके साथ नीतू। आज है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, जो केवल रेडियो या प्रसारण तकनीक का उत्सव नहीं है बल्कि उन अनगिनत आवाजों को सम्मान देने का अवसर है जिन्होंने समय, दूरी और सीमाओं को पार कर लोगों को जोड़ा है। एक माइक्रोफोन के पीछे बैठी आवाज जब लाखों दिलों तक पहुंचती है तो वो सिर्फ सूचना नहीं देती, वो भावनाएं, स्मृतियां और भरोसा भी पहुंचाती है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आइए सुनते हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी और आकाशवाणी के पूर्व केंद्रीय निदेशक और एडीजी श्री लक्ष्मेंद्र चोपड़ा से नीलम मलकानिया की बातचीत।
1: नमस्कार, मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे अतिथि हैं लक्ष्मेंद्र चोपड़ा जी। आप आकाशवाणी दिल्ली के स्टेशन डायरेक्टर रहे हैं और विभिन्न केंद्रों पर महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारियां आपने संभाली हैं। लक्ष्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो।
2: धन्यवाद नीलम जी, धन्यवाद।
1: तो मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि आकाशवाणी की प्रथम स्मृति आपके मन में क्या है?
2: देखिये, जहां तक आकाशवाणी का प्रश्न है, अगर स्मृति की बात करें तो मेरे ख्याल में मैं 5वीं या 6वीं क्लास में पढ़ता था, तब मेरे घर में पहली बार रेडियो खरीदा गया था। तब मैंने पहली बार रेडियो क्या होता है, कैसा होता है, वो सुनना शुरू किया और अनुराग रेडियो के प्रति विकसित हुआ। लेकिन मूल रूप से जो रेडियो से मेरा जुड़ाव शुरू हुआ, एक वार्ताकार के रूप में कहना चाहिए, और पहली बार आकाशवाणी भोपाल में, तब युववाणी नाम भी नहीं था
1: जी,
2: नई उमंग नई तरंग इस ढंग से कोई नाम था, क्योंकि तब क्या था, युववाणी की शुरुआत तो हो गई थी लेकिन युववाणी युवाओं के लिए कार्यक्रम था, लेकिन हर केंद्र का अपना अलग अलग नाम था। तो जहां तक मुझे याद पड़ता, नई उमंग नई तरंग नाम से आकाशवाणी भोपाल से वो कार्यक्रम प्रसारित होता था। और पहली बार मेरी जो वार्ता कहिए या जो विचार कहिए, वो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति एक श्रद्धांजलि के रूप में
1: जी
2: प्रसारित हुए थे। जनवरी वर्ष 1969 में ये मेरा पहला जुड़ाव शुरू हुआ और उसके बाद आकाशवाणी भोपाल के एक वार्ताकार के रूप में, और एक वार्ताकार के रूप में ही नहीं बल्कि ऑडियंस रिसर्च यूनिट में एक सर्वेयर के रूप में भी
1: जी
2: मेरे को आकाशवाणी से जुड़ने का सौभाग्य मिला। वर्ष 1976 में जब आकाशवाणी का विकास हुआ अलग अलग केंद्रों में, तब एज ए ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव मैंने ज्वाइन किया और मेरी जो ज्वाइनिंग हुई वो आकाशवाणी रायपुर में सबसे पहली बार ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव के रूप में हुई। फिर 1982 में यूपीएससी से प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के रूप में, 1990 में यूपीएससी से स्टेशन डायरेक्टर के रूप में मेरी ज्वाइनिंग हुई और मैं जबलपुर, जलंधर, भोपाल, इंदौर और जो अभी आपने आकाशवाणी दिल्ली की चर्चा की
1: जी,
2: तो मुझे जहां तक याद पड़ता वर्ष 2002, 2003, 2004 मेरे को सौभाग्य मिला आकाशवाणी दिल्ली में काम करने का और यहां आकर मैंने बहुत कुछ सीखा।
1: तो हम कहते हैं कि जो मजबूत नींव होती है उस नींव को मजबूत करने में आकाशवाणी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
2: जी बिल्कुल।
1: मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा कि आपकी शुरुआत ट्रैक्स के रूप में हुई
2: जी, हाँ जी, हाँ जी।
1: और

0: ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव कार्यक्रम तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये बताएं कि आपके समय में कार्यक्रम तैयार करना कितना चुनौतीपूर्ण होता था, क्योंकि तकनीक में लगातार सुधार हुआ है, बेहतर चीजें आज हमारे पास हैं, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी मेहनत पर। तो कैसे आप कार्यक्रम तैयार करते
1: हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। 1976 में जब मैंने ज्वाइन किया था
0: जी,
1: तब से लेके आज तक हम जो तकनीकी विकास की वो देखते हैं, देखिए सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उस जमाने में हम लोग चाहे किसी भी पोस्ट में थे, हम सभी कार्यक्रम निर्माता थे और हम सभी को इस बात का अवसर मिला था कि हम कार्यक्रमों का निर्माण करें, और कार्यक्रमों के निर्माण के लिए हम लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां भी समझनी पड़ती थी, अनुशासन बहुत पक्का। मैं आपको एक और अपने श्रोताओं को भी बात बताना चाहूंगा, ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि जिस साल मेरा आकाशवाणी में ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव में सिलेक्शन हुआ था, उसी साल मेरा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी चयन हुआ था। तो मैंने तय ये किया कि आकाशवाणी एक सामाजिक सांस्कृतिक सेवा करने का विभाग है और बेहतर हो कि मैं आकाशवाणी में ही कंटिन्यू करूं।
0: मैं अब ये जानना चाहूंगी लक्ष्मेंद्र जी, आप बदलता हुआ वक्त देख रहे हैं, आपने जब ज्वाइन किया था आकाशवाणी, आपके अंडर जिस तरह के काम हुए जिनमें आप भी शामिल रहे, और आज जिस तरह के कार्यक्रम हम प्रसारित कर रहे हैं, तो स्वरूप काफी बदला है। भावना भले ही वही हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, ऐसे में सोशल मीडिया का भी एक प्रभाव हम कई बार देखते हैं। आप इस प्रभाव को मीडिया पर किस तरह से देखते हैं और आकाशवाणी पर कैसे देखते हैं?
1: सोशल मीडिया को लेकर मैं कुछ निराश हूं जी, क्योंकि सोशल मीडिया के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सोशल मीडिया की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, और धीरे धीरे सोशल मीडिया आम जनता का विश्वास खोता जा रहा है
0: जी,
1: क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी जानकारियां आती हैं जो सिर्फ इसलिए आती कि लाइक हमें मिलती रहे, और वो कितनी सही है कितनी गलत है, सिर्फ आकाशवाणी नहीं कहूंगा मैं, जनसंचार माध्यम या मीडिया में हमारे पुरखों ने जो काम किए वो और अधिक महत्वपूर्ण काम किए गए। मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया में हर काम गलत हो रहा, सोशल मीडिया में कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता को बहुत अच्छा जागरूक कर रहे हैं। अब मैं देखिए यहाँ आपसे एक स्कूप की चर्चा करना चाहता हूँ जो कि सीधा सीधा आकाशवाणी से जुड़ा है, और जो मैंने पहले बात यहाँ कही थी कि हमसे ज्यादा अच्छा काम हमारे पुरखों ने किया। बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि गोवा मुक्ति आंदोलन में ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये एक जानकारी ऐसी है कि जो हमारे श्रोताओं तक पहुंचना चाहिए। आकाशवाणी के जो कर्मचारी थे उन्होंने भी गोवा मुक्ति आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, वॉइस ऑफ फ्रीडम के नाम से 1955 से 1961 तक, और जब 1961 में भारत सरकार ने आजाद कराया गोवा को
0: जी,
1: तब उसके बाद वो रेडियो स्टेशन बंद हुआ। तो इस तरह की जानकारियां बहुत जरूरी हैं कि सोशल मीडिया इस पर रिसर्च करे
0: जी,
1: और सही सही जानकारियां अपने श्रोताओं तक पहुंचाए।
0: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आज हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं और मनोरंजन के तो अथाह हमारे पास सागर है, लेकिन ऐसे में अभी भी लोग कहते हैं कि आकाशवाणी जो है उसकी अपनी जो जगह है वो बहुत सुरक्षित है, बहुत मजबूत है। आप क्या मानते हैं, जितने हमारे पास विकल्प हैं उनमें आकाशवाणी का अपना स्थान क्या है आज के दौर में?
1: अब आकाशवाणी के साथ एक चीज और हुई, हमने शुरुआत की शॉर्ट वेव से
0: जी,
1: मीडियम वेव से। मेरे को अच्छे से याद है जब हम लोग ओबी पे जाते थे तो बड़े बड़े सिर के ऊपर टेप रिकॉर्डर रख के, तब हेल्पर भी होते थे, एक हेल्पर नाम की पोस्ट होती थी जिनका काम वो टेप रिकॉर्डर सिर पे रख के ले जाने का था। अब आज का युग ऐसा आ गया है कि आप कार में चलते समय भी रेडियो सुन सकते हैं
0: जी,
1: आप घर में बैठ के भी सुन सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे भी आकाशवाणी को सुन सकते हैं
0: जी।
1: अब जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले हम ये पहचाने कि हमारे श्रोता कौन है। समाज बदल रहा है और समाज में नए नए वर्ग आ रहे हैं, तो नए नए श्रोता भी आ रहे हैं, और नए श्रोताओं की तलाश करना आकाशवाणी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात
0: जी।
1: देखिए अगर मैं कभी आकाशवाणी के इतिहास पर बातचीत करूं या सोचूं तो मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण आकाशवाणी के इतिहास में थे वो स्टॉक कैरेक्टर्स थे, और वो स्टॉक कैरेक्टर्स क्या थे, श्रोताओं को अपने में शामिल कर लेते थे। इसी प्रकार अब क्या हुआ है, जैसे महानगरों

0: एक युग में हम लोगों ने लोक संगीत, लोकनाट्य, शास्त्रीय संगीत, इन सबको बचाने के लिए जीतोड़ प्रयास किया और उनको बचा के भी रखा। मुझे इस बात का गर्व, इस बात को कहने का कि हमारे रेडियो के, आकाशवाणी का जो ऑडिशन, इसको आज तक कुछ चैलेंज नहीं कर सकता। हमारे आकाशवाणी में हमने ये बना के रखी है मान्यता अपनी कि आकाशवाणी से अगर वो अप्रूव्ड वॉइस है, अप्रूव्ड आर्टिस्ट है, तो निश्चित रूप से वो कुछ होगा उस। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आकाशवाणी जैसे जैसे अपना बढ़ेगा आकाशवाणी, उसको हमेशा नए नए श्रोताओं की तलाश करती रहने पड़ेगी
1: जी।
0: और श्रोताओं की आवश्यकताओं को पहचानना होगा, समझना होगा और नए ढंग के कार्यक्रम जोड़ते रहना
1: जी। मैं अब आपसे ये पूछना चाहूंगी कि चलते चलते आकाशवाणी के जो आज के श्रोता हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: मेरा तो सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन को जीवन जैसे जियो।
1: लक्ष्मेंद्र जी, आज आप हमारे स्टूडियो आए, आपने समय दिया, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी और आकाशवाणी के पूर्व केंद्रीय निदेशक और एडीजी श्री लक्ष्मेंद्र चोपड़ा से नीलम मलकानिया की बातचीत।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, इस शायर की गजल, ड्रीम गर्ल।
5: नमस्कार, मैं हेमा मालिनी आप सभी को अनेकानेक बधाइयां शुभकामनाएं देती हूं। जब हम छोटे थे तो आकाशवाणी ही हमारी जानकारियों और एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन का जरिया था, लेकिन आज भी मुझे आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना उतना ही पसंद है, चाहे वो कार में बैठते ही रास्ते में थकान मिटाना हो या घर में सारे दिन धीमे धीमे बजने वाले गीत सभी सुकून देते हैं। आकाशवाणी से जुड़ाव अब तो जीवन का एक हिस्सा बन चुका है।

ये है म्यूजिकल दिल लगी, मैं हूं नीतू आपके साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। गर्मी ने इस बार कुछ ज्यादा ही कहर बरपा दिया है ना, ये हम सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन से हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है और शायद उसी का असर है जो दिख रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आसमान में सफेद बादल तेजी से घट रहे हैं जिससे धरती पर तापमान बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सफेद बादल सूरज की तेज किरणों को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देते थे जिससे पृथ्वी का तापमान सामान्य बना रहता था। लेकिन अब इनके घटने से तापमान बढ़ने का जो खतरा है वो और भी गहरा हो गया है और तापमान बढ़ने का असर हमारी नींद पर भी पड़ा है। गर्मी के कारण हर साल लोग अपनी 56 घंटे की नींद गंवा रहे हैं। वैसे नींद के आने जाने का ना कोई एक मौसम से बहुत ज़्यादा उतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मौसम भी एक कारण है पर नींद गंवाने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उन कारणों पर ध्यान दीजिए और अपनी नींद को ठीक कीजिए। फिलहाल गानों को इन्जॉय कीजिए।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर यह है म्यूजिकल दिल लगी और मैं हूं आपके साथ नीतू। आज जयंती है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की। उनके शब्दों ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई चेतना दी थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की आकांक्षा बन गया था। उन्होंने अपने विचारों, लेखनी और नेतृत्व से जन जागरण की अद्वितीय लौ जगाई। आज ही जयंती है चंद्रशेखर आजाद की, जो 15-16 साल की उम्र से स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। उन्होंने ही स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी युवाओं के उस दल का संगठन और नेतृत्व किया था जिसमें भगत सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल जैसे लोग शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद ने प्रण किया था कि वो कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे और हर बार वो पुलिस के हाथों से बच निकलते रहे। लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब वो अपने एक साथी से मिलने पहुंचे तो पुलिस को वहां उनके आने की खबर लग गई और उस दौरान पुलिस से हुई मुठभेड़ में जब उन्हें लगा कि उनका पकड़ा जाना निश्चित है तो उन्होंने खुद मौत को गले लगा लिया। इस तरह वो हमेशा आज़ाद रहे, जैसा कि वो कहते थे। जहाँ वो शहीद हुए थे उस पार्क को अब आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये और यहाँ आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी, अब जिसमें अब बारी है अगले गाने की।

0: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से एलपीजी कनेक्शन प्रदान कर धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने और महिलाओं के जीवन को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया गया है। ये योजना स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
4: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई

0: का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये है म्यूजिकल दिल लगी आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर, आप हैं नीतू के साथ। हम सब स्मार्टफोन की लत से जो है पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास करना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा प्रयास किया दक्षिण कोरिया के शहर सियोल के नागरिकों ने। उन्हें डिजिटल दुनिया और स्क्रीन से दूर रखने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है कि शहर के जो पार्क हैं और सार्वजनिक स्थल हैं, वहाँ पर खुली हवा वाले रीडिंग रूम में बदला गया है उन्हें। और इन रीडिंग रूम में रंग बिरंगी किताबों की अलमारियाँ हैं, आरामदायक बीन बैग्स हैं, लाउंजर हैं और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये जो जगह है ना, यहाँ पर ये जो भी लोग आते हैं, यानी कि वहाँ के स्थानीय लोग या फिर जो पर्यटक हैं, उन सब के लिए पूरी तरह मुफ्त है। वहाँ ना लोग सिर्फ किताबें पढ़ सकते हैं बल्कि शांति से आराम भी कर सकते हैं। और इस तरह आप अपनी किताबों को, जो आपके लिए अजनबी बन चुकी हैं, उनसे थोड़ी जान पहचान बढ़ा सकते हैं।

किसी को कोई बहुत बड़ा दुख हो जाए, शोक हो, सदमा हो, तो वो कारण बनता है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहा जाता है उसे। वहीं ये एक नई चीज़ सुनने में आई है कि जब शादी, जन्मदिन, पुनर्मिलन या किसी बड़े जश्न जैसी कोई बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खुशी अगर मिल जाए तो उसकी वजह से भी दिल जो है वो बीमार हो सकता है। इसे कहते हैं हैप्पी हार्ट सिंड्रोम। तो ज़्यादा खुशी भी खुद पर हावी ना होने दें। हालांकि मेरा अपना मानना ये है कि जैसे भी आपके साथ एक्सपीरियंस होते हैं उन्हें पूरी तरह से जी लेना चाहिए, चाहे वो दुख हो चाहे वो खुशी हो। लेकिन अगर उससे आपकी सेहत पे असर पड़ता है, जैसा कि वैज्ञानिक कह रहे हैं, तो फिर अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल बहुत ज़रूरी हो जाता है। और दिल की सेहत को तो

रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ जनपद, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। परमाणु ऊर्जा विभाग ने राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम

भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग बताया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी अधिकारियों के अत्याचारों के खिलाफ आज व्यापक विरोध प्रदर्शन। भारत ने जन स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए केन्या को 4.5 टन चिकित्सा सामग्री भेजी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लगातार 12वीं रात हमले किए। दोनों पक्ष नागरिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बना रहे हैं और 23वें राष्ट्रमंडल खेल

0: बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर आदर्श स्वाइका ने कल नैरोबी में स्वास्थ्य मंत्री एडन डवेल को इबोला की रोकथाम के लिए 4.5 टन चिकित्सा सामग्री की पहली खेप सौंपी। इस चिकित्सा सहायता में पीपीई किट, जांच किट, इंफ्रारेड थर्मामीटर, फेस शील्ड, मजबूत सुरक्षात्मक जूते और अन्य संक्रमण निवारक सामग्री शामिल हैं। भारत ने हाल के महीनों में अफ्रीका के प्रभावित क्षेत्रों में रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को इबोला की संक्रमण से निपटने के लिए 45 टन से अधिक चिकित्सा सहायता प्रदान की है। अमेरिका की सेना ने लगातार 12वीं रात ईरान पर हवाई हमले किए। दोनों देशों के बीच संघर्ष तेज होने के साथ नागरिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना है जिससे वह समुद्री मार्गों से गुजरने वाले नागरिक और व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ये हमले ऐसे समय में किए गए हैं जब अमरीका होर्मूज जलडमरू मध्य पर फिर से नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान होर्मूज जलडमरू मध्य में किसी जहाज पर हमला करेगा तो उसके जवाब में अमेरिका ईरान के पुल या बिजली संयंत्र को निशाना बनाएगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि उनका देश जवाबी कार्रवाई की नीति अपनाएगा। अमरीका और सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे खाड़ी देश सऊदी अरब को नागरिक परमाणु कार्यक्रम विकसित करने की अनुमति मिल जाएगी। अब इस समझौते को समीक्षा के लिए अमरीकी संसद में भेजा जाएगा। हालांकि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी वर्तमान में संसद के ऊपरी और निचले सदनों पर नियंत्रण रखती है, फिर भी दोनों पक्षों के कुछ सांसद इस समझौते का विरोध कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: समझौते का लिखित प्रारूप सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिकी मीडिया ने बताया कि इससे सऊदी अरब को भविष्य में यूरेनियम संवर्धन करने की अनुमति मिल सकती है जिसका उपयोग बिजली संयंत्रों के ईंधन के रूप में और परमाणु बम बनाने में भी किया जा सकता है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने बताया कि सहयोग समझौते के साथ साथ एक द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। सऊदी सरकार

0: के खिलाफ आज व्यापक विरोध प्रदर्शन। भारत ने जन स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए केन्या को 4.5 टन चिकित्सा सामग्री भेजी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लगातार 12वीं रात हमले किए। और 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू। इसके साथ ही विश्व दर्पण अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सरबजीत कौर विद द वर्ल्ड न्यूज।

101.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर शुरू हो गया है दिल का मेल बॉक्स। इसमें होती है आपकी रिक्वेस्ट पूरी, यानी जो गाना आपको पसंद है आप उसकी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं इस ईमेल आईडी पर जो मैं अब बताने जा रही हूं आपको, fmgoldairdelhi@gmail.com fmgoldairdelhi@gmail.com पर भेजिए अपनी रिक्वेस्ट। अगर समय हुआ और आपकी रिक्वेस्ट टाइमली हम तक पहुंची और लक हुआ आपका तो आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी। फिलहाल जिनकी रिक्वेस्ट पूरी हो रही है वो हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली और इनके अलावा हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, जो सुनना चाहते हैं देश परदेश फिल्म का ये गाना।

हम तक पहुंच गए हैं। अब जो अगला गाना आप सुनने जा रहे हैं वो संजय मार्कंडे और ममता मार्कंडे उनके साथ किट्टू हैं जो ये गाना सुनना चाहते हैं। फिल्म है शोर और गाना तो ये वाकई बहुत प्यारा सा है, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ में।

0: जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंक

0: आप सभी को प्रसारण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

लीजिए, एक एक करके इतने गाने सुनाए और अब वक्त हो गया है कि आपसे इजाज़त ले ली जाए। तो चलते चलते जिनका गाना आप तक पहुंचने वाला है वो हैं सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली नारंग। इनकी फरमाइश पर है रजनीगंधा फिल्म का ये गाना। आप इस गाने को एंजॉय कीजिए, उसके बाद समाचार सुनिए और फिर मैं आपसे मिलती हूँ तस्वीर में।

0: रवाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इससे पहले उत्तरी मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोरदोना सियोनोस्का दावकोवा ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में महिला राष्ट्रपति का होना गर्व की बात है। स्कोपे में आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में सुश्री दावकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 बुरी तरह प्रभावित है। बनिहाल और उधमपुर सेक्टरों के बीच कई स्थानों पर भूस्खलन, कीचड़ और पत्थर गिरने की घटनाएं हुई हैं। इसके कारण लगातार दूसरे दिन वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि मौसम में सुधार और सड़क मरम्मत पूरी होने तक जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा न करें। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi today reiterated that nothing is more important than the welfare and future of youth of the country. In a social media post, Mr. Modi announced that the government will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. He asserted that those who try to harm the future of the youth will not be spared. He added that the decision has been taken as part of a series of measures to safeguard the interests of students. Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that government is ready to discuss the NEET paper leak issue in Parliament and formulate an effective policy to ensure a permanent solution to the issue. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said, instead of indulging in blame games and constantly shifting the goalposts, the opposition should participate in a meaningful parliamentary discussion on the serious issue of paper leaks. He said paper leaks are a national concern, not an issue confined to any one government or

नालंदा का नाम तो आपने सुना होगा, क्योंकि इसका अतीत इतना खास रहा है कि मुमकिन ही नहीं किसी ने नालंदा का नाम ना सुना हो। प्राचीन मगध का एक लोकप्रिय महाविहार यानी बौद्ध मठ विश्वविद्यालय, जिसे दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है, ये उस समय दुनिया भर में शिक्षा के सर्वोत्तम केंद्रों में से था और वहां पढ़ने के लिए दुनिया भर से विद्यार्थी आया करते थे। नालंदा ने 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कला और शिक्षाविदों के संरक्षण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज तस्वीर में हम नालंदा की ही बात करेंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली।

नालंदा जो है वो राजकीय शहर से 16 किलोमीटर उत्तर में और पटना से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और बोधगया से 80 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। नालंदा पुरातात्विक स्थल बरगांव जिले जिसे नालंदा गांव भी कहते हैं उसके उत्तर पश्चिम में ऐतिहासिक मानव निर्मित झीलों गिधी पनाशोकर और इंद पुष्करणी है। माना जाता है कि नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व गुप्त काल में हुई थी। गुप्त शासकों के पतन के बाद नालंदा महाविहार का सबसे उल्लेखनीय संरक्षक जो था वो था राजा हर्ष, जिसे कुछ बौद्ध अभिलेखों में शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। वो 7वीं शताब्दी का सम्राट था जिसकी राजधानी कन्नौज थी, जिसे उस समय कान्यकुब्ज कहा जाता था। वहां हुई खुदाई में जो शिलालेख, साहित्यिक साक्ष्य, मोहरें, कलाकृतियां मिली हैं, उनसे पता चलता है कि 8वीं शताब्दी के मध्य में भारत के पूर्वी क्षेत्रों में पाल वंश के शासकों ने खुद को स्थापित किया और करीब 12वीं शताब्दी के अंत तक शासन किया था।

0: है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जांच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
0: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू है आपके साथ और आप सुन रहे हैं तस्वीर, जिसमें हम बातें कर रहे हैं नालंदा की। तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, जैसे ये जो तीन थे बहुत बड़े शिक्षण संस्थान थे जिन्हें भारत के प्रारंभिक विश्वविद्यालयों के रूप में जाना जाता है। इनमें नालंदा का एक विशेष स्थान है। उदार सांस्कृतिक परंपराओं के कारण नालंदा के विकास और समृद्धि का दौर 9वीं शताब्दी तक चला, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका पतन होने लगा और उसके पतन में एक बड़ा हाथ बाहरी आक्रमणकारियों का भी माना जाता है। 1920-21 में हुए पुरातात्विक सर्वेक्षण में नालंदा में अलग अलग कई इमारतों के ऊपर सबसे ऊपरी स्तर पर राख की एक मोटी परत पाई गई, जिससे ये भी माना जाता है कि नालंदा भीषण आग की चपेट में आया होगा। कहते हैं कि नालंदा को 3 बार नष्ट किया गया था, लेकिन सिर्फ 2 बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। फिर भी नालंदा का जो अस्तित्व है वो 13वीं शताब्दी तक रहा और फिर इसे भुला दिया गया।

परीक्षण कराया गया, लेकिन एक व्यवस्थित खुदाई शुरू हुई 1915 में जो 1937 तक चली। अलग अलग चरणों में हुई उस खुदाई से पाया गया कि नालंदा के मठों की जो कतार है वो आधुनिक बरगांव तक फैली हुई है। स्वतंत्रता के बाद उत्खनन, फिर जीर्णोद्धार का दूसरा

0: कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

चीनी यात्री जुआंग जेंग और यीजिंग यहाँ से सैकड़ों संस्कृत ग्रंथ चीन ले गए थे। प्राचीन नालंदा महाविहार की तर्ज पर पाली और बौद्ध धर्म में उच्च अध्ययन का एक केंद्र विकसित करने के लिए 1951 में नालंदा के खंडहरों के पास ही एक आधुनिक

इसके अलावा आप पांडु पोखर भी जा सकते हैं, जो कि एक आनंददायक आरामदायक जगह है। यहाँ हरे भरे गुलाब के बागीचे, फर्न गार्डन और हर्बल गार्डन है, और सर्दियों में टहलने के लिए परफेक्ट जगह है। और यहाँ पर एक गेमिंग जोन भी है, जहाँ बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत आनंद आएगा।

इसी के साथ नीतू को इजाजत दीजिए, तस्वीर का समय यहीं समाप्त होता है, आपसे फिर मुलाकात होती है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

कि प्रश्नकाल के दौरान किसी भी सदस्य को किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि यह सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। श्री बिरला ने कहा कि सरकार पहले ही विपक्षी सदस्यों को आश्वासन दे चुकी है कि वो नीट पेपर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने देश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़, बिजली गिरने तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया।

0: आंगन।
1: आवाज़ों का रिश्ता कोई सरहद नहीं जानता, और जो एक बार दिल से जुड़ जाए वो फिर कभी नहीं बिछड़ता। नमस्कार, मैं श्रुति पुरी
2: और रश्मि कुकरेती आपके सामने हाजिर हैं आपके अपने कार्यक्रम घर आंगन में,
1: जो आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, इंद्रप्रस्थ चैनल पर 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर, और हमारे डिजिटल परिवार के साथ ही हमसे जुड़े हैं

0: लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह बॉबी फिल्म में कह रहे थे कुछ ना कहूं चुप रहूं, लेकिन अब मुश्किल चुप रहना है श्रुति जी, क्योंकि घर आंगन में हम दोनों आ चुके हैं।
1: बिल्कुल, और अब हम सुनते हैं एक संदेश।
2: ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, इस शायर की गजल, ड्रीम गर्ल।
3: नमस्कार, मैं हेमा मालिनी आप सभी को अनेकानेक बधाइयां शुभकामनाएं देती हूँ। जब हम छोटे थे तो आकाशवाणी ही हमारी जानकारियों और एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन का जरिया था, लेकिन आज भी मुझे आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना उतना ही पसंद है, चाहे वो कार में बैठते ही रास्ते में थकान मिटाना हो या घर में सारे दिन धीमे धीमे बजने वाले गीत सभी सुकून देते हैं। आकाशवाणी से जुड़ाव अब तो जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। धन्यवाद।
2: पल दो पल,
4: कौन?
5: नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं सौम्या मिश्रा, लोक गायिका। मैं आप सभी को प्रसारण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूं। और हमारे यहाँ लोक संगीत में जब कुछ खुशहाली होती है तो दो लाइन उसके लिए सोहर गाते हैं, तो आइए मैं कुछ दो लाइन सोहर आप सबों के बीच सुना रही हूँ।

0: पहले हमेशा मेल आती है, बिल्कुल,
1: क्या बात है, पहले मेल करके। और इन्होंने लिखा है कि जब मैं पहली बार ऑल इंडिया रेडियो आया था, आकाशवाणी आया था, तो मुझे बहुत खुशी मिली थी। ये कोई करीब 15 साल पहले की बात बता रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।
1: तो अब आपकी खुशी में हम भी शामिल हो जाते हैं और आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: देखिए कितना खूबसूरत गाना था ये, लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीता मेरा नाम फिल्म से।
1: जी
0: और रश्मि जी, आज की तारीख जो है ना 23 जुलाई, हमारे इतिहास में बहुत ख़ास है, क्योंकि आज ही के दिन तीन बड़ी बातें जुड़ी हुई हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, जिसकी हम बधाई दे चुके हैं, और आज ही दो महान क्रांतिकारियों की जयंती भी है।
1: भाई, आज जो प्रसारण राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है उसकी बधाई तो हमने दी ही है। 23 जुलाई 1900 दिल में जोश भर देता है।
0: और आज ही के दिन 1856 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का भी जन्म हुआ था। तिलक जी ने नारा दिया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। उन्होंने शिक्षा, पत्रकारिता और जनजागरण के जरिए आज़ादी की अलख जगाई और लोगों को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना सिखाया।
1: तो एक ही तारीख में हमें आवाज की ताकत भी मिली और दो ऐसे महान सपूत भी मिले जिन्होंने अपनी आवाज से बुलंद कर आवाज बुलंद की और देश को जगाया। ये तो एक इत्तेफाक ही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: पेशा करते हैं तो दुकानदार, फ्रीलांसर या कोई भी पेशेवर सेवा देने वाले हैं तो आपके लिए तारीख 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है। इसलिए सबसे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि आप किस श्रेणी में आते हैं, ताकि गलत तारीख को लेकर आपको बाद में परेशानी ना हो।
1: और श्रुति जी, रिटर्न भरने से पहले एक ज़रूरी काम ये भी है कि आप अपना जो फॉर्म्स है ना, जो मिलते हैं वार्षिक सूचना विवरण, वो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें आपकी सैलरी होती है, बैंक ब्याज होता है, अन्य आमदनी का पूरा रिकॉर्ड होता है, और अगर इसमें और आपकी असली आमदनी में कोई फर्क दिखे तो रिटर्न भरने से पहले उसे ठीक कर देना अच्छा रहेगा। क्योंकि जो आयकर विभाग है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इन आंकड़ों का मिलान बहुत बारीकी से करता है, और अगर कोई गड़बड़ी छूट भी जाए तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि अब संशोधित रिटर्न भरने की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है और मार्च 2027

0: झलक दिखा रही हैं।
1: राजस्थान के जैसलमेर की पटवों की हवेली 18वीं सदी में आखिर में सेठ गुमानचंद पटवा जी ने बनाई थी। और ये जो हवेली है ना, ये 5 छोटी छोटी हवेलियों का समूह है। इसमें बारीक नक्काशी है, जालीदार झरोखे हैं, जो इसे देखने वाले हैं वो दंग रह जाते हैं। लेकिन खास बात यह है कि एक हिस्सा जो है इसका संग्रहालय के रूप में खोला गया है, जहां पटवा परिवार की तस्वीरें, उस दौर की जीवन शैली से जुड़ी कलाकृतियां

0: तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा।
1: तेरे घर के सामने, इस फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को सुन रहे थे। और रश्मि जी, एक मेल और आई है हमारे पास
2: जी।
1: और ये लिखने वाले हैं इदरिस सैफी, और लिख रहे हैं कि मैं हमेशा आकाशवाणी

0: टुकड़ा है वो हर घर की चिट्ठी का हिस्सा बन गया।
1: देखिए, आज़ादी के बाद हमारे अपने महापुरुषों की तस्वीरें भी टिकटों पर आने लगी। आज़ादी की पहली वर्षगांठ यानी 15 अगस्त 1948 को महात्मा गांधी भारतीय टिकट पर आने वाले पहले भारतीय बने और उन पर 4 अलग अलग मूल्यों के टिकट जारी हुए। और ख़ास बात ये थी कि गांधी जी पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन पर ब्रिटेन ने भी टिकट जारी किया।
0: भाई वाह, तो ये छोटा सा जो टिकट है ना,

0: को मिला, बोला कैसे जाता है ये सीखने को मिला। और साथ में लिख रहे हैं कि भाषा के संस्कार जो हमने आकाशवाणी से सीखे हैं उनका, उनके लिए मैं बहुत हमेशा से आकाशवाणी का शुक्रगुजार रहूंगा। भाई वाह, कितनी सुंदर मेल लिखी है राघव ने।
1: हम शुक्रगुजार रहेंगे इनके, आकाशवाणी परिवार की तरफ से हम इन्हें शुक्रिया अदा करते हैं, हृदय से आभार अभिव्यक्त करते हैं जो आपने हमारे को इतना अच्छे से परखा। और रश्मि देखो, गांव की बातें कुछ याद हैं तुम्हें? गांव में जब मेले की भीड़ होती थी ना, तो वो ऊंचा सा एक तंबू लगता था और जब ढोलक की थाप सुनाई देती थी और वहां पर अनाउंसमेंट होता था, आ जाओ अमर सिंह राठौर खेलने देखने आ जाओ, तो एक सेकंड लगता था जब सभी अवाल वृद्ध नर नारी सब उस तंबू के आगे जमा हो जाते थे और फिर धागे से बंधी जो रंग बिरंगी गुड़िया हवा में नाचने लगती थी, तलवारें लिए झूमती हुई, मानो सचमुच जीवंत हो जाती थी।
0: भाई यही तो है कठपुतली कला। भाई इसकी कला की जो जड़ें हैं भारत में बहुत गहरी और बहुत पुरानी है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में महर्षि पाणिनी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी में नट सूत्र में पुतला नाटक का जो उल्लेख किया है, यानी आज से लगभग 2500 साल पहले भी भारत में कला मौजूद थी।
1: और देखो आज अगर हम राजस्थान की बात करें ना, तो राजस्थान की डोरी वाली कठपुतली आज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई है। इन कठपुतलियों के जो वस्त्र और साज सज्जा है, उस क्षेत्र की चित्रकला, वास्तुकला और वेशभूषा की अच्छी खासी झलक हमें देती है
0: जी। और पश्चिम बंगाल में पुतुल नाच और उड़ीसा में कठिकुंधई नाच में छोटी कठपुतलियां जो है वो धागे और डंडे की दोनों की मदद से नचाई जाती हैं। तो अगर दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जो छाया कठपुतलियां हैं वो चमड़े से बनी होती हैं और पर्दे के पीछे से रोशनी डालकर उनकी परछाइयों के जरिए कहानी कही जाती है।
1: और देखो इस तरह हर राज्य ने अपनी मिट्टी, अपनी भाषा और अपने लोक जीवन के रंग इस कला में खोल दिए हैं और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। एक ही कला पूरे भारत में अलग अलग कितने रंगों में जीवित है, आज भी राजस्थान के कलाकार इसे जीवित रखे हुए हैं। तो दोस्तों, डोरियों से बंधी हो या यादों से, हर कठपुतली अपने साथ एक कहानी लेकर आती है और यही कहानियां तो संस्कृति की असली पहचान है।

0: तो रश्मि जी, आप देखो कार्यक्रम का समय संपन्न हो रहा है, तो हमें ना चाहते हुए भी श्रोताओं से विदा लेनी है
1: जी,
0: तो
1: कल के मिलने के लिए और रश्मि कुकरेती और
0: मुझे श्रुतिपुरी को दीजिए अनुमति,
1: और हम कहते हैं आपसे नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की

0: सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की।
1: सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया री एग्जाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के और भविष्य में ऐसा ना हो उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं, फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से।
0: राज्यसभा में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन

0: खजाना मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले नीट पर चर्चा की मांग की थी और सरकार ने जवाब दिया था कि वो नीट परीक्षा के पेपर लीक सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा कि अब कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की नई मांग रखी है। एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्र के हित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has announced that the centre will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in the NEET paper leaks. Mr. Modi also asserted that protecting students' future remains the top priority of the government. In a social media post, Prime Minister Modi said nothing is more important than the welfare and future of the youth of the country. PM Modi's statement comes amid ongoing students' protest at Delhi's Jantar Mantar over the NEET paper leak case. Mr. Modi said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. He asserted that those who try to harm the future of the youth will not be spared. The Prime Minister added that the decision has been taken as part of a series of measures to safeguard the interests of students. Both Houses of Parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition protest over various issues, including the NEET paper leak case. When the Lok Sabha reassembled after the first adjournment at 12 noon, the opposition was on their feet protesting on the paper leak issue. The presiding officer, Dilip Saikia, urged the opposition to cooperate for the smooth functioning of the House. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to opposition parties, particularly the Congress, to cooperate in holding a discussion on the NEET paper leak issue. He added that the government has already conveyed its willingness to hold a discussion on the issue in both houses as per the date and duration desired by the opposition.
2: Today, I appealed on behalf of the entire NDA for a discussion on NEET. After meeting Mr. Kharge and some other opposition leaders, yesterday we were hopeful that a discussion on NEET would take place today. However, the Congress party imposed conditions. Imposing conditions suggests that your intentions are not right, as it appears that you want to prevent the discussion.
1: Despite the appeal by Mr. Rijiju, the opposition members continued with sloganeering and trooped into the well. As the pandemonium continued, presiding officer Dilip Saikia adjourned the house till 2 p.m. Earlier, when the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m., Speaker Om Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of paper leak and students' protest. The same scene was also witnessed in the Rajya Sabha. When the Rajya Sabha assembled again at 12 noon,

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। 1:11:04 और इस वक्त ये समय रहता है कलाकार बेमिसाल का। कलाकार बेमिसाल में आज हिंदी सिनेमा इतिहास के एक ऐसे महान अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, कॉमेडियन जिनके पर्दे पर आते ही माहौल बदल जाया करता था। हंसाना चाहते हैं तो लोग जी भर कर हंसते हैं और रुलाना चाहते हैं तो रोने का मन हो जाता है। कला के ऐसे माहिर, ऐसे धनी कि जब चाहा हंसाया, जब चाहा रुलाया। बड़े बड़े कलाकारों के सामने टक्कर की परफॉर्मेंस, नेचुरल अदाकारी, संवाद अदायगी और भाव बदलते उन्हें देर बिल्कुल नहीं लगती थी। महमूद अली खां जिक्र हो रहा है इनका, जिन्हें महमूद के नाम से ही बखूबी जाना गया फिल्म इंडस्ट्री में। इन्हीं की ढेर सारी बातें आज कलाकार बेमिसाल के इस सफर पर आपके साथ साझा होंगी। सुनते रहें आकाशवाणी गोल 100.1। अंजलि है आपके साथ।

0: जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

ही बाला तंदाना, ये 16 साल तंदाना है तेरे ख्याला तंदाना, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो

0: ताली ताक झुम ताक ताली ताक झुम ताक झाला आंगू ताक झुग ताक ताली गेन ताक नाक ताक झुम ताक नाक नाक झुम ताक नाक नाक झुम ताक नाक नाक झम तारी ता झग तारी ता झन झाले कोकु तारी दाबू तारी गेट ताक झुम तारी ता झग तारी ता झन झाले कोकु तारी दाबू तारी गेट झम तारी झग तारी ताक नाक ताक ता झन ता झुम ता झन ता झम तारी झग तारी झाले झाले कोकु ता झन ता झुम ता झन ता
1: हरफन मौला कलाकार महमूद जन्म इनका हुआ 29 सितंबर 1932 को मुंबई में। महमूद के माता पिता खुद अच्छे डांसर और एक्टर रहे। मुंबई में शुरुआत में अक्सर ये स्टेज शोज में नजर आया करते थे। इनकी एक बड़ी बहन भी रही और छह इनके छोटे भाई बहन। इनकी बड़ी बहन मीनू मुमताज, जिन्हें भी आप अच्छी तरह जानते होंगे, एक अच्छी डांसर और करेक्टर एक्ट्रेस रही। शरारते करना, मौज मस्ती करना, नकल उतारना इन्हें काफी पसंद रहा। बस अपने इसी शरारती अंदाज से इन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्म में बाल कलाकार के तौर पर काम करने का मौका मिला। फिल्म किस्मत 1943 की फिल्म रही और इसमें इन्हें अशोक कुमार के बचपन का रोल प्ले करने का मौका मिला। बस इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग की गाड़ी जो थी ना महमूद की, और ये सिलसिला शुरू हो गया।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और

0: प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी गोल्ड 100.1 और इस वक्त बातें हो रही हैं जाने माने एक्टर, कॉमेडियन, निर्माता, निर्देशक महमूद की। फिल्म किस्मत 1943 की फिल्म थी जिससे कि इनकी एक्टिंग की गाड़ी चल निकली थी और फिल्मों में काम करने का

महमूद साहब का जो किरदार हुआ करता था उसका नाम महेश रखा जाता था। इसके बाद अनेक फिल्म्स में इन्होंने काम किया, जैसे CID, फिल्म प्यासा जिसमें ये गुरुदत्त के बड़े भाई बने थे। बावजूद इसके ज्यादा लाइमलाइट में महमूद नहीं आ सके। फिर क्या हुआ कि भाई बाद की फिल्म्स में इनके नाम का डंका बजने लगा। बात करेंगे, बातें हमारी जारी रहेंगी, सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। कलाकार बेमिसाल का ये सफर और महमूद साहब की यहाँ पर बातें हो रही हैं।

जाने माने अभिनेता, कॉमेडियन, निर्माता, निर्देशक महमूद को दर्शकों का फेवरेट बनाने वाली फिल्म रही 1961 की फिल्म थी ससुराल। एज ए कॉमेडियन इस फिल्म में नजर आए महमूद और इनकी को आर्टिस्ट रही शुभा खुटे। एक यादगार गाना भी इस जोड़ी पर फिल्माया गया, अपनी उल्फत पर नजमाने का पहरा होता। बाद में ये सफल जोड़ी कई फिल्म्स में लगातार नजर आती रही। इस म्यूजिकल केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। दिल तेरा दीवाना, गोदान, गृहस्थी, भरोसा, हमराही, बेटी बेटे, जिद्दी, लव इन टोक्यो इसी कड़ी की फिल्म है। चलिए एक और गीत सुन लेते हैं। फिल्म ससुराल से ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश साहब की आवाज में।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर,
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
5: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
4: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
5: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
4: प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता।

0: आयकर विभाग, भारत सरकार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। इस वक्त कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय कर रहे हैं और बात कर रहे हैं जाने माने कॉमेडियन, अदाकार, कलाकार, निर्माता, निर्देशक महमूद। महमूद नाम एक, लेकिन उनके अंदर कई कलाकार समाये हुए थे। व्यक्तित्व एक, लेकिन अनेक विधाएं इस व्यक्तित्व में समाई हुई थी। उनके किरदार ही जैसे उनमें डूब जाया करते थे। बेहतरीन अदायगी के मालिक रहे महमूद साहब। संगीत की भी महमूद को खूब पकड़ रही। कई गाने उन्होंने कॉमेडी अंदाज में फिल्म्स में गाए। दूसरे पार्श्व गायक मन्ना डे जितने नटखट अंदाज स्टाइल के गाने उन्होंने गाए, उन्होंने जो भी गीत गाए इस तरह के, वो ज्यादातर महमूद पर ही फिल्माए गए। मन्ना डे ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इसका आभार भी व्यक्त किया है। एक गीत यहां पर सुन लेते हैं मन्ना डे की ही आवाज में, और साथ में है उषा मंगेशकर, फिल्म प्यार किए जा से।

दिल में रहता है कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटर गूं, दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटर गूं, दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार

कॉमेडियन के रूप में महमूद फिल्मों के लिए अनिवार्य से हो गए थे। 60 के दशक के मध्य से फिल्मों में महमूद का होना सफलता की गारंटी बन गया था। इस दौर में बड़े बड़े बैनर्स, बड़ी बड़ी फिल्म्स और बड़े बड़े कलाकारों के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। पत्थर के सनम, दो कलियां, नील कमल, औलाद, प्यार किए जा, हमजोली, पड़ोसन जैसी फिल्में यहां याद की जा सकती हैं। जब महमूद निर्माता निर्देशक बने तो अनेक संगीतकारों को मौका देकर उन्होंने आगे बढ़ाया। आर डी बर्मन, छोटे नवाब से उन्हें मौका मिला। राजेश रोशन, कुमारा बाप फिल्म में उन्हें म्यूजिक कंपोज करने का मौका मिला। इसी तरह बासु मनोहारी, सबसे बड़ा रुपया में उन्हें मौका दिया गया। कॉमेडियन के साथ साथ छोटे बजट की जो फिल्म्स हुआ करती थी उनमें एज अ हीरो उन्हें ऑफर आने लगे। छोटे नवाब, जिसका निर्माण उन्होंने ही किया था, इसी तरह से फर्स्ट लव, प्यासे पंछी, कहीं प्यार ना हो जाए, शबनम, भूत बंगला, नमस्ते जी जैसी फिल्मों में उनकी अदाकारी के दूसरे रूप हमें देखने को मिले। क्रिकेटर, आर्टिस्ट, कॉमेडियन आईएएस जौहर के साथ भी उनकी जो ट्यूनिंग थी ना, वो जबरदस्त रही। और अगर आपने फिल्म देखी हो जौहर महमूद इन गोवा, तो आप इस जोड़ी को आपने काफी पसंद किया गया होगा स्क्रीन पर। और इसके बाद जौहर महमूद इन हांगकांग इसी जोड़ी की यादगार एक और फिल्म रही। तो चलिए इसी फिल्म से एक गीत सुन लिया जाए, जौहर महमूद इन गोवा। और ये गीत आप जरूर स्क्रीन पर देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको भी।

कॉमेडियन, अभिनेता, कलाकार, निर्माता, निर्देशक, क्या क्या नाम हम दें महमूद साहब को। ये तो एक उपाधि हो गई, लेकिन उनके अंदर जो एक वर्सेटाइल एक्टर छुपा हुआ था, जो एक कला छुपी हुई थी, जो प्रतिभा छुपी हुई थी, उसे शायद नाम देना बहुत मुश्किल होगा। फिल्म पड़ोसन का जिक्र करना भी यहाँ पर जरूरी होगा, और फिल्म भी आपने जरूर देखी होगी, बार बार इस फिल्म को देखने को जी चाहता है। जब भी कभी लगता है कि कुछ कॉमेडी देखी जाए, मन हल्का फुल्का मतलब मनोरंजन के तौर पर, वो कॉमेडी फिल्म अगर लिस्ट में हम उसे पहली 10 नंबर्स में रखें तो शायद ये गलत ना होगा। और सचमुच बहुत ही मज़ेदार फिल्म है। इस फिल्म को देखकर मन बहुत ही खुश हो जाता है, और हम अपनी सारा जो स्ट्रेस होता है, जिस पर्पज़ के लिए हमने वो फिल्म देखी होती है, वो पूरा हो जाता है, और हम बहुत हल्के फुल्के लाइट सा फील करने लगते हैं। महमूद के फिल्म करियर की ऑल टाइम ग्रेट फिल्म कहा जा सकता है फिल्म पड़ोसन को। और इसके बाद अगर हम बात करें कि शुभा खुटे के साथ उनकी फिल्मी जो केमिस्ट्री थी, स्क्रीन केमिस्ट्री थी, स्क्रीन जोड़ी थी, इसको बहुत बहुत दर्शकों ने पसंद किया, और एक के बाद एक कई उस दौर की बहुत ही जैसे बोलते हिट मूवीज ने ये जोड़ी हमें दिखाई दी। और उसके बाद महमूद की स्क्रीन जोड़ीदार रही अरुणा ईरानी। अरुणा ईरानी इस बात का आभार मानती है कि महमूद ने उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया, जिससे उनके करियर में काफी इजाफा हुआ। अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म बॉम्बे टू गोवा, जो कि 1972 की फिल्म थी, इसमें महमूद साहब ने अमिताभ के अपोजिट अरुणा ईरानी को हीरोइन का रोल ऑफर किया था। तो चलिए एक गीत सुन लेते हैं जो कि फिल्माया गया है अरुणा ईरानी जी पर और महमूद साहब पर।

0: आखिर में महमूद ने अपने एक दोस्त से अपनी जीवनी लिखवाई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं कभी टाइप्ड नहीं हुआ, मेरी अपनी निश्चित स्टाइल भी नहीं थी, मुझ में ऑब्जर्वेशन की एक अद्भुत ताकत थी और मैं अच्छा नकलची था, इसने मुझे अच्छा कॉमेडियन बना दिया। फिल्म सबसे बड़ा रुपया में मैंने फिल्मिस्तान के सेठ तोलाराम जालान की कॉपी की थी। सचमुच महमूद जैसे कलाकार विरले ही होते हैं जिनके व्यक्तित्व में अनेक विधाएं छुपी होती हैं। इनकी फिल्में हम हमेशा ऐसे ही देखते रहेंगे, सराहते रहेंगे और महमूद साहब को ऐसे ही याद करते रहेंगे। और चलते चलते एक बेहद खूबसूरत गीत उनके होम प्रोडक्शन की उन पर फिल्माया हुआ, ये गीत किशोर कुमार और महमूद साहब और साथियों ने इसको आवाज़ दी है और स्क्रीन पर हमें महमूद देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार है ये गीत भी, अगर आपने देखा हो तो।
1: पुरी हप्पू हप्पू हुरी या।

0: इसी के साथ अंजलि आपसे ले रही है इजाजत, लेकिन आप सुनते रहे हमेशा 100.1 आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। इस गीत के बाद सुनिएगा उर्दू खबरें, उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।
1: अरे सामने क्या देख रही हूँ, पीछे से पाकिट मार रहा है।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। मरकज नीट पेपर लीक में मुलव्वस अफराद को जल्द और सख्त सजा को यकीनी बनाने की खातिर फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि तलबा के मुस्तकबिल का तहफ्फुज हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले समेत किसी भी मामले पर बहस के लिए तैयार है। भारत ने मनीला में आसियान वजारती मीटिंग में दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने पर जोर दिया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में दरियाए सिंध आबी मुआहिदे पर पाकिस्तान की रायजनी को मुस्तरद कर दिया है। उसने कहा है कि मुआहिदा उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक सरहद पार की दहशतगर्दी खत्म नहीं हो जाती। ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेल आज शाम शुरू हो रहे हैं। 125 भारतीय एथलीट इसमें हिस्सा लेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में मुलव्वस अफराद को जल्द और सख्त सजा को यकीनी बनाने की खातिर मरकज फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगा और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि तलबा के मुस्तकबिल का तहफ्फुज बदस्तूर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवानों की बहबूद और मुस्तकबिल से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। वजीर आजम मोदी का बयान नीट पेपर लीक मामले पर दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी तलबा के एहतजाज के दरमियान सामने आया है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में सभी जरूरी इकदामात के लिए मुतालिका हुक्काम और ओहदेदारान को हिदायत दी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि नौजवानों के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वजीर आजम ने मजीद कहा कि तलबा के मफादात के तहफ्फुज के सिलसिले में सिलसिलेवार इकदामात के तहत फैसला किया गया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस फैसले की तारीफ की जिसमें उन्होंने पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए कसूरवारों के खिलाफ सुनवाई में तेजी लाने और सख्त कार्रवाई को कहा है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नौजवानों का दरख्शां मुस्तकबिल और उनकी फलाह दोनों ही मोदी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नौजवानों के तई वजीर आजम के अहद को उजागर करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ये फैसला उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक की वजह से नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं और ये फैसला एक संगे मील साबित होगा। नीट पेपर लीक मामले समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज के सबब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पहली बार मुलतवी किए जाने के बाद जब लोकसभा की कार्रवाई दिन में 12 बजे फिर शुरू हुई तो अपोजिशन ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज जारी रखा। प्रिजाइडिंग अफसर दिलीप साइकिया ने बिला रुकावट ऐवान की कार्रवाई चलने देने के लिए अपोजिशन से तावुन की अपील की। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों खासतौर से कांग्रेस से अपील की कि वो नीट पेपर लीक मामले पर बहस कराने में तावुन करे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने एक ऐसी तारीख और मुद्दत तक जिस पर अपोजिशन मुत्तफिक हो दोनों ऐवानों में इस मामले पर बहस कराने की खातिर हुकूमत की रजामंदी के बारे में पहले ही मुत्तला कर दिया है। जनाब रिजिजू ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क को यकीन दहानी कराई है कि नीट पेपर लीक मामले के कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और तेजी से इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें तश्कील दी जाएंगी। जनाब रिजिजू ने इस बात पर जोर दिया कि तलबा के मफाद में इस मामले पर बहस जरूरी है और उन्होंने अपोजिशन पर जोर दिया कि वो इस बात का फैसला करे कि बहस का आगाज कब होना है।
1: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज, तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया चर्चा पर बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की सूरत हाल रही। जब राज्यसभा की कार्यवाही पहली बार मुलतवी होने के बाद 12 बजे फिर शुरू हुई तो अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक और तलबा के एहतजाज का मामला उठाया। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज के दौरान एक खातून की मौत की बात कही गई है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में पुलिस ने वाजे किया कि ये झूठी और गुमराहकुन खबर है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि वो खातून जिंदा है और उनका इलाज राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में आज रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंचेंगी। कोट्रोचेनी पैलेस पहुंचने पर सदर जमहूरिया मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वो रोमानिया के अपने हम मनसब निकोशोर डैन के साथ वफ्द सतह की बातचीत करेंगी। बातचीत के बाद कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। रोमानिया के सदर और खातून अव्वल सदर जमहूरिया मुर्मू के एजाज में आज सरकारी इशाइये का एहतमाम करेंगे। कल सदर जमहूरिया मुर्मू भारत रोमानिया तजारती फोरम से खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के मेम्बरान से मुलाकात करेंगी। सिक्किम की सरकार ने नामची जिले में सुरंग के वाकये की पूछताछ के लिए आईजीपी की जेर निगरानी एक आला सतह की चार मेंबरों पर मुश्तमिल कमेटी कायम की है। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर पेश करेगी। वजीर आला प्रेम सिंह तमांग ने एक आला सतह की कमेटी कायम करने का ऐलान किया था। फिलिपाइन के मनीला में आसियान इलाकाई फोरम की 33वीं वजारती मीटिंग में भारत ने दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने पर जोर दिया है और एक आजाद खुले सबकी शमूलियत वाले और जवाबित पर मबनी भारत बहरुल काहिल के अपने अज़्म का इयादा किया है। मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये फोरम खासतौर से बढ़ती आलमी पेचीदगियों के दरमियान भारत बहरुल काहिल में सियासी और सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल की खातिर एक अहम प्लेटफॉर्म है। बहरी सलामती के सिलसिले में वजीर मौसूफ ने कहा कि बहरे हिंद खत्ते में इत्तलात के तबादले का मरकज भारत बहरुल काहिल में बहरी बेदारी पहल और भारतीय बहरिया के असासे तैनात किए जाने जैसे इकदामात पायरेसी सामान और मुनशियात की गैर कानूनी तिजारत से निमटने में मदद के साथ साथ महफूज बहरी तिजारत को भी यकीनी बना रहे हैं। भारत ने दरियाई सिंध के आबी मुआहदे से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान

राइजनी को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि जब तक इस्लामाबाद की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी को उसकी रियासती पॉलिसी के एक अहम हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहेगा उस वक्त तक इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश पाकिस्तान की जानिब से नई दिल्ली पर यह इल्ज़ाम लगाए जाने के बाद जवाब दे रहे थे कि वो दरियाए सिंध आबी मुआहिदे को मुअत्तल रखते हुए पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जम्मू और कश्मीर पर जनाब पी हरीश ने कहा कि मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम इलाका हमेशा भारत का एक अटूट और कभी अलग न होने वाला हिस्सा रहा है और रहेगा। अमरीका और सऊदी अरब ने एक अहम और तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत खलीजी मुमलिकत को सिविल एटमी प्रोग्राम को फ़रोग देने की इजाज़त होगी। अमरीकी महकमाए तवानाई के मुताबिक इस मुआहदे को पुरमन एटमी तआवुन के मुआहदे के तौर पर बयान किया गया है जो सऊदी अरब की एटमी तवानाई प्रोग्राम में अमरीकी कंपनियों को ज़्यादा रसाई फराहम करेगा। 23वें दौलत मुश्तरका खेलों का आज शाम स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आगाज़ हो रहा है। 10 दिनों तक जारी रहने वाले इन खेलों में 74 मुल्कों की टीमें हिस्सा लेंगी। भारत के 125 एथलीट इन खेलों में हिस्सा लेंगे। ओलंपिक में तमगा जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लोवलीना बोरगोहाइन CWG 2026 में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकज नीट पेपर लीक में मुलव्वस अफराद को जल्द और सख्त सजा को यकीनी बनाने की खातिर फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि तलबा के मुस्तकबिल का तहफ्फुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले समेत किसी भी मामले पर बहस के लिए तैयार है। भारत ने मनीला में आसियान वजारती मीटिंग में दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने पर जोर दिया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में दरियाए सिंध आबी मुआहिदे पर पाकिस्तान की रायजनी को मुस्तरद कर दिया है। उसने कहा कि मुआहिदा उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक सरहद पार की दहशतगर्दी खत्म नहीं हो जाती। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Blood-related deaths reported yesterday, taking the toll to 41. Over 6 lakh people have been affected across the state in 40 revenue circles. Relief and rescue operations are continuing in the affected districts as several rivers continue to flow above the danger level. The Intermeteorological Department has issued a red colour warning for very heavy to extremely heavy rainfall over parts of Gujarat and Madhya Maharashtra for today. East Rajasthan, Madhya Pradesh, Konkan, Goa, Manipur, Mizoram, Tripura and Nagaland may experience heavy to very heavy rainfall for the day. The weather agency has forecast heavy rainfall over northeast Gangetic, West Bengal, Bihar and Jharkhand till Sunday. The 23rd Commonwealth Games will begin in Glasgow, Scotland this evening. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. Olympic medalists Neeraj Chopra, Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain are set to represent India at the Games. It will feature just 10 sports, 9 fewer than at Birmingham in 2022, with competitions spread across 4 venues with an 8-mile corridor. Athletics, swimming, 3x3 basketball, track cycling, weightlifting, bowls, artistic gymnastics, netball, boxing and judo make up the schedule for the game. The Indian contingent comprises 125 members, including para-athletics. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for persons involved in paper leaks. Prime Minister Narendra Modi assures that protecting students' future remains government's top priority. Government ready to discuss any issue, including NEET, in Parliament, says Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju. India calls for zero tolerance against terrorism at ASEAN ministerial meeting in Manila. India rejects Pakistan's remarks on the Indus Waters Treaty at UNSC, says treaty to stay in abeyance until cross-border terror ends. And Glasgow Commonwealth Games set to begin this evening, 125 Indian athletes to participate. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की सरकार परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया, कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि लागू नहीं रहेगी। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का ये बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने फास्टैग अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की।

0: की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
1: आप जिस हिसाब से सदन में सरसास आते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार, ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है। सदन ऐसे बाधित करेंगे ये ठीक नहीं है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
2: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज, तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा पर बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार ने विपक्षी सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
3: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
0: राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और अपना रुख बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूँ कि आए सदन के अंदर और चर्चा करें।
0: एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
5: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं।

0: ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, मगर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित हैं।
1: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है

0: सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये जानकारी झूठी और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का आग्रह किया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर यह जवाब दिया।
1: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ है। जब सीमा पार से आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो आपसी विश्वास सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
0: जम्मू कश्मीर मुद्दे पर श्री हरीश ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डॉन और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बुलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजोर डान के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शर्ली अयरकोर बोर्डचवे से मुलाकात की। बैठक में डॉ मांडविया ने खेलो भारत नीति और अस्मिता लीग का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत कर रही हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और मध्य गुजरात में

लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गृह मंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीन स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है किसान की बात। मैं हूं आपके साथ नीरा और आज मेरे साथ हैं
2: अमित तेवतिया
1: जी। और अमित, जैसे कि इस प्रोग्राम का लक्ष्य ही यही है, उद्देश्य ही यही है कि हम मौसम से जुड़ी हुई जानकारी हो या फिर विषय से जुड़ी हुई कोई बात हो, तो ऐसी जानकारियां, ऐसी चीजें, ऐसी बातें हम अपने श्रोताओं तक, यानी हमारी जो किसान भाई बहन हैं, उन तक पहुंचाते हैं ताकि जिससे लाभ ही लाभ हो।
2: बिल्कुल आपने सही कहा। और कोशिश रहती है कि जो अनुसंधान आज कृषि के क्षेत्र में हो रहे हैं, डॉक्टर्स लगे हैं, विशेषज्ञ लगे हैं,
1: बिल्कुल
2: क्या तैयारियां होती हैं कि जो किसानों तक पहुंचे और किसानी जो कर रहे हमारे किसान भाई बहन हैं, जो भूमि पुत्र हैं, जो अन्नदाता हैं, उन्हें किसी भी विपरीत परिस्थिति में बहुत अधिक समस्या का समाधान मिलता रहे, कोई ऐसा जोखिम ना उठाना पड़े।
1: बिल्कुल। और साथ ही साथ हम ये भी ख्याल रखते हैं कि जिस विषय को लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं, साथ ही साथ आप भी जुड़ पाए उस विषय के साथ। और अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा उठती है, कोई प्रश्न उठता है, तो उसका समाधान भी यहां से मिले आपको।
2: सही कहा आपने भाई, हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो सम्मिलित होते हैं कार्यक्रम में। और आज जैसा विषय है, हमें लगता है कि हमारे किसान भाई बहन निश्चित रूप से रुचि लेंगे, क्योंकि आज बात होगी वैज्ञानिकों से। हम प्रश्न करेंगे किसानों के हित में कि क्या कुछ देश का जो वैज्ञानिक है, वो हमारे कृषि वैज्ञानिक लगे हुए हैं, अनुसंधान संस्थान जो तैयारियां कर रहे हैं जिससे हमारी कृषि सुरक्षित हो, हमारा किसान सुरक्षित हो। और किसान की बात में जब भी बात होगी तो आपकी बात भी शामिल होना जरूरी है। तो नीरा, अपने किसान भाइयों को शामिल करते हुए उन्हें भी फोन नंबर बता दीजिए स्टूडियो।
1: बिल्कुल। तो अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल करेंगे तो एसटीडी कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, जो है 011। और टेलीफोन नंबर है 2342-1081 और 83 पर आप डायल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, या फिर ऐसा कहेंगे कि पूर्ण जानकारी आप तक इन्हीं नंबरों से पहुंचेगी।
2: जी हाँ, यानी कि आज आप बात करेंगे मौसमी परिस्थितियों के मद्देनजर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की क्या तैयारियां हैं, कृषि परिषद ने क्या तैयारी की है, वैज्ञानिक किस तैयारी में लगे हुए हैं जिससे किसानों को बहुत अधिक समस्या का जो सामना है वो ना करना पड़े। इसमें आप सीधे बातचीत कर सकते हैं हमारे स्टूडियो में। हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सीताराम बिश्नोई को, जो कि वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
3: धन्यवाद
1: जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मौसमी परिस्थितियों की, यानी कि इस समय को अमित हम अक्सर सुनते हैं कि कहा जाता है कि डबल मुनाफा या फिर बम्पर पैदावार की बात की जाती है। एक तरफ हम ये बात करते हैं और ये सच है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, बस इसी का जो तालमेल है कैसे रख सकते हैं ये बताइए।
3: बिल्कुल, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी हमारे श्रोतागणों और हमारे किसान भाइयों बहनों को सादर नमस्कार। एंड आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो आज की चर्चा का मूल विषय है वो है कि मौसमी परिस्थितियों में के मद्देनजर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की क्या क्या तैयारियां। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस ये मौसमी परिस्थितियों के अंदर तैयारियों की क्यों जरूरत पड़ती है और क्यों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं अपने भारतीय कृषि के स्वरूप की बात करते हैं, तो हमारे जो भारतीय अपना जो भारतीय कृषि का जो स्वरूप है वो मानसून पर, तापमान पर और मृदा में उपलब्ध नमी और स्थानीय जलवायु परिस्थितियों पर प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तो देश का, और उसी समय मैं आप बताना चाहूँगा कि हमारे देश का सबसे बड़ा भूभाग जो कृषि क्षेत्र है उसके सिंचाई की एक सीमित सुविधाएं हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे बहुत ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो और फसल उत्पादन के लिए मुख्यतः हमें वर्षा पर निर्भरता रहती है, क्योंकि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है, छोटे सीमांत किसान हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में मानसून का आगमन हो, वर्षा की मात्रा हो, या फिर वितरण वर्षा का बराबर वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर दो वर्षाओं के बीच का जो अंतराल है वो उसके फसल उत्पादन पर एक गहरा प्रभाव डालता है। अभी हम हाल ही के कुछ पिछले वर्षों की बात करें तो ये मौसम की जो अनिश्चितता है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। कहीं कहीं अल्प समय में बहुत अधिक वर्षा हो रही है, तो कहीं लंबे शुष्क अंतराल के बाद में बरसात हो रही है, तो कहीं जैसे बाढ़ या जलभराव या जैसे शीतलहर, ओलावृष्टि या तमाम तरह की घटनाओं की आवृत्तियां बढ़ रही है। तो मौसम में इस प्रकार के जो असंतुलन होता है, ये फसलों की बुआई, चाहे उसके अंकुरण की बात करें, चाहे पौध वृद्धि की बात करें, फूल और फल आने की अवस्था की बात करें, या दाना बनने या कटाई के समय, ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो वर्तमान समय की अपन जब ऐसे बात करते हैं, तो अभी हमारे किसान भाई ने जैसे खरीफ की फसलों की बुआई कर ली होगी या फिर अभी कर रहे होंगे, तो खरीफ की फसलों में कई प्रकार की चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ सकता है, तो उसके संदर्भ में हम आज जो चर्चा करने वाले हैं। तो क्या होता है कि अभी जैसे कुछ क्षेत्रों में जैसे अधिक वर्षा हो गई तो वहाँ पे जल भराव की स्थिति हो गई, या फिर अधिक बारिश की वजह से उसके पोषक तत्व जो उनके खेत में होने चाहिए उनका बहाव की समस्या आ सकती है, या ज़्यादा दिनों तक जल भराव की स्थिति में जड़ सड़न, तना गलन, इस टाइप की कुछ समस्याएं, या कुछ जब आर्द्रता नमी ज़्यादा रहती है तो फफूंद जनित बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ सकता है। और उसी समय जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे कि जहाँ पे बहुत कम वर्षा है, शुष्क अंतराल वाले हैं, तो उनमें जैसे नमी की कमी के कारण अंकुरण में असमानताएं खेतों में मिल सकती है, या फिर पौधों का मुरझाना उपज में कमी की आशंका करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से संबंध रखता हूं, और आज के विषय में हमें यह भी चर्चा करनी है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, तो इसी क्रम में जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कई तरह की जो अधिक उत्पादकता वाली और विषम परिस्थितियों में होने वाली फसलों की किस्मों का उत्पादन किया है, तो उसी के साथ जैसे उसको फिर विषम परिस्थितियों में उसका अच्छा उत्पादन हमारा किसान भाई कैसे ले सके, उसके लिए कोई प्रौद्योगिकियां तकनीकियां विकसित की है, और हमारा संस्थान कृषि से संबंधित, मौसम से संबंधित जो परामर्श है जो हमारे किसान भाइयों को समय समय पे देते रहते हैं, इसी तरह जैसे मृदा में जल प्रबंधन है या फिर है ना दूसरे तमाम तरह के संसाधनों का प्रबंधन है उससे संबंधित जो परामर्श है वो हम किसानों को देते हैं। और दूसरा बात करें कि सारे किसान भाइयों के साथ हम प्रत्यक्ष रूप से पहुंच नहीं पाते, तो हम कई डिजिटल माध्यम के द्वारा, कई विभिन्न प्रकार के तमाम माध्यमों के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, मोबाइल ऐप के द्वारा हम किसानों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी कि आपने तो सभी तैयारियां हमें गिना दी कि बहुत ही संक्षेप में कि कौन कौन सी तैयारी हमारे देश के वैज्ञानिकों ने की हैं, अनुसंधान संस्थान ने की हैं, किसानों को सुरक्षित करना, कृषि को सुरक्षित करना, इस देश की रोटी को सुरक्षित करना, ये बहुत बड़ी बात है। कि जहां आपने दोनों बातें कही कि यदि मानसून को मद्देनजर रखते हुए बारिश अधिक हो तो क्या समस्याएं होती हैं, यदि लग रहा है कि बारिश कम होगी, नहीं हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या कुछ हमें पहले से ही भूमिका बनानी पड़ेगी ताकि हमारी कृषि जो है वो सुरक्षित रहे।

0: और आगे हमारे किसान भाइयों को बहुत अधिक नुकसान ना उठाना पड़े, ये तैयारी रही एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखें। लेकिन बात आती है कि जो कृषि पर संभावित प्रभाव इसका पड़ता है, तो ऐसे कौन कौन से प्रभाव में हमारे किसान भाइयों को हम कैसे समझा सकते हैं कि जो मौसमी परिस्थिति है या जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव आ रहा है, जैसे भी आपने कहा कि बारिश जब होनी चाहिए तब नहीं होती, तब नहीं होनी चाहिए तब हो जाती है, तो ये बड़ी समस्याएं आ रही हैं। इसी को लेकर के नई किस्में आपने इजाद की, आपने बताया, हम जरूर बात करेंगे, किसान भाइयों तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कि जो मौसमी परिस्थिति है इनमें कृषि पर जो संभावित प्रभाव है वो क्या पड़ता है।
1: बिल्कुल, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि वर्षा की अनियमितता के कारण कहीं पे बहुत ज़्यादा हो गया या कहीं पे शुष्क अवस्था है, तो उनके लिए कई तरह के जो प्रभाव है हम उनके बारे में बात करना चाहेंगे। जैसे अधिक वर्षा या जल भरभाव का एक ये महत्वपूर्ण समस्या है, जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अगर लंबे समय तक या अत्यधिक वर्षा होने से खेत में पानी जमा हो जाता है तो इसमें पौधों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और उसमें पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे अधिक समय तक जल भराव रहने से उसमें जैसे कई तरह की बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ जाता है, जैसे जड़ सड़न है या तना गलन है या पौधे के पीले पड़ने की समस्या है, तो इस प्रकार की समस्या हो जाती है। तो और दूसरा, जब जल भराव होता है तो बहते हुए पानी का जो मिट्टी की जो ऊपरी परत है, जो उपजाऊ परत होती है, उसको अपने साथ बहा के ले जाते हैं, तो इससे जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और कई घुलनशील पोषक तत्व भी साथ में बह के चले जाते हैं। तो इस टाइप का, जैसे जहां पे ज्यादा हो रहा है, इस टाइप की समस्या का उनको सामना करना पड़ सकता है। दूसरा है कि लंबे समय तक अगर बारिश नहीं हो रही है, शुष्क अंतराल उनको झेलना पड़ रहा है, तो उसके अंदर भी जो पौधे की वृद्धि है वो प्रभावित होती है, उसमें फूल का आना, दाना बनना, उसमें पूर्ण अवस्था में, इस अवस्था में जो नमी की कमी के कारण उसमें पूर्ण परिपक्वता नहीं आ जाती, जिससे उसकी उपज प्रभावित होती है। इसी तरह जैसे खरपतवार और कीट और रोगों में वृद्धि हो जाती है, जैसे वर्षा और जब बात करते हैं अधिक आर्द्रता अपने खेत में रहती है तो खरपतवार बहुत तेजी से बढ़ती है। जब खरपतवार बढ़ेगी तो वो पोषक तत्वों के लिए और हर जो पौधे को मिलना चाहिए उसके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं खेत में, तो जिसमें पौधे को जो आवश्यक पोषक तत्व मिलने चाहिए वो ना मिलके और खरपतवार या और फिर बाद में जो कई फफूजनित या कई तरह की तमाम तरह की बीमारियों की और कीटों की संख्या बढ़ जाती है। इसी तरह जैसे बहुत समय तक तेज बारिश या होने से, जल भराव से हमारे कृषि कार्यों में भी विलंब हो जाता है। जैसे हमारे किसान भाई जैसे अपने खेत की तैयारी करना है, उसको बुआई करना है, निराई गुड़ाई या उर्वरक डालना है, या फिर उसको तमाम तरह की जो खेत के जो काम करने होते हैं उसमें भी विलंब हो जाता है।
0: बिल्कुल, यानी कि ये तो नीरा बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कही कि ऐसे जोखिम कृषि पे आते हैं कि ये तो भाई कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकते हैं। जब पूरी की पूरी फसल ही नहीं बचेगी तो किसान भाई तो छोड़ो भाई, हम तक भी रोटी नहीं पहुंचेगी। तो ऐसे में तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय बन जाता है कि इन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए। तो डॉक्टर साहब, जो मौसमी जोखिम आपने बताए हैं, इनके समाधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या परिषद जो कार्य कर रहे हैं और जो हमारे देश के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर लगे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र कहीं ना कहीं किसानों की पहुंच तो कोशिश करते हैं कि किसान वहां पहुंचे, अपनी समस्याओं का समाधान लें, तो ऐसे में आप क्या सलाह किसान भाइयों को देंगे कि किस प्रकार वो जुड़े रहें इस तकनीकी ज्ञान से, वैज्ञानिकों से, अनुसंधानों से, ताकि उनका जो जोखिम है वो कम से कम हो।
1: बिल्कुल, जैसे मैं सबसे पहले तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ही बात करता हूँ कि हमारे संस्थान ने जो मौसम और जलवायु संबंधी जो जोखिम है इनसे निपटने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें हम हर तरह का प्रयास करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को हर तरह की जो जानकारी सही समय पे उन तक पहुंचे। तो जो इसमें जैसे क्रम में मैं बात करना चाहूँगा कि फसल की विभिन्न प्रकार की नई किस्मों का विकास है, या फिर वैज्ञानिक उत्पादन की जो पद्धतियां हैं, या कृषि मौसम से संबंधित से परामर्श का बात कर लें, या प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की बात कर लें, तो और उसी के साथ किसानों की क्षमता निर्माण, उनको ट्रेनिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी करते हैं। तो इसी क्रम में मैं जैसे सबसे पहले बात करता हूं कि जैसे हमारे संस्थान ने जलवायु सहनशील जो फसलों की किस्मों का विकास किया है, तो ऐसी किस्में को पे हमेशा से हमारे संस्थान का जोर रहता है कि जो प्रतिकूल मौसम में भी अच्छी उपज देके हमारे किसान भाइयों को फायदा पहुंचाए। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में जैसे बात करते हैं कि जैसे सूखा हो, सीमित नमी की अवस्था में भी वो अच्छा उपज दे सकती है, अधिक तापमान सहन करने की उनकी क्षमता होती है, और कम अवधि में पकने वाली जैसे किस्मों की है, या फिर देर से बुआई करने में, कई बार मानसून का देर से आगमन होता है तो देर से बुआई वाली स्थिति में भी अच्छा प्रदर्शन करे, या फिर प्रमुख कीटों या रोगों से प्रतिरोधक क्षमता हो उस किस्म में, या फिर जैसे बात करते हैं कि कई बार फसलों में गिरने की समस्या होती है, लोजिंग की समस्या होती है, तो वो समस्या ना हो और उसमें अधिक दक्षता के साथ पोषक तत्वों का वो प्रयोग कर पाए। तो एक तो ये हो गई कि हमारी संस्था ने जलवायु सहनशील जो किस्मों का विकास किया है, इसी की तरह मौसम आधारित कृषि परामर्श की हम बात करते हैं, जिसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी संस्थान ने जो किसान भाई हमारे संस्थान पे जुड़ के प्रत्यक्ष रूप से आके जो जानकारी ले सकते हैं या वैज्ञानिकों से वन टू वन जानकारी ले सकते हैं, इसके अलावा भी हमारी संस्थान ने एक हमारा संस्थान का यूट्यूब चैनल कोविड के बाद से हमारा चल रहा है, जिसमें हर शनिवार को 7 बजे हमारा एक एपिसोड जारी होता है जो पूसा समाचार के नाम से चैनल है, तो हमारा किसान भाई घर पे बैठे ही उस पे जानकारी ले सकता है। उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे किसान भाई को हर शनिवार को 7 बजे जो एपिसोड होता है, तो उस हफ्ते के अंदर जैसे किसान भाइयों को क्या किस टाइप की जो फसल अभी जैसे धान लगा रखा है, मक्का लगा रखा है, तो उसमें क्या क्या उनको कौन सा उर्वरक देना है या कितनी मात्रा में देना है, सिंचाई कब करनी है, कौन से जैसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है, इसके अलावा हम उस व्हाट्सएप नंबर पे किसानों को ये सुविधा भी दे रहे हैं कि हमारे किसान भाई अगर उनके खेत में किसी तरह की रोग या समस्या आ गई है तो उसकी फोटो क्लिक करके और हमारे उसमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ताकि हमारे विशेषज्ञ देख के उसका सही समाधान सही निदान बता सकते हैं। तो इसके लिए ये इस टाइप की, और इसके अलावा जो हम हमारे किसान भाइयों के लिए हिंदी भाषा में जो किसान भाई समझ पाए, हर वीकली हम उनको परामर्श देते हैं जो किसान भाइयों को, वो लिखित फॉर्म में जाती है। जैसे अभी धान है तो धान में जैसे नर्सरी के बाद रुपाई का हो गया, तो अब उसको किसान को खेत में क्या करना, कितना नाइट्रोजन डालना, कितना पोटास फास्फोरस डालना है, उसके अलावा जैसे नील हरित शैवाल है, या फिर जो उसको कब सिंचाई देना है, खेत में कितना पानी भर के रखना है, तो हर हफ्ते हम हमारे किसान भाइयों को लिखित में भी देते हैं, और जो ये डिजिटल या तमाम जैसे व्हाट्सएप हो गया और ये यूट्यूब के थ्रू भी हम किसानों के पहुंचने की कोशिश करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बात कही कि पूसा समाचार के माध्यम से आप हमारे जो सभी किसान भाई बहन हैं वो अपनी समस्याओं का समाधान यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं, उसका जो एपिसोड जारी होता है, अगर कोई उनकी वो फसल है तो उसे वो सीख सकते हैं या समझ सकते हैं। लेकिन वहीं जब आप व्हाट्सएप नंबर की बात करते हैं तो जरूरी हो जाता है कि हमारे बहुत सारे किसान भाई बहन सुन रहे हैं कि भाई पूसा का वो व्हाट्सएप नंबर क्या है कि जिस पर हम अपनी फसल में कोई भी कीट है, पत्ती पे कोई रोग दिखाई देता है, खेत की जो भूमि है वो समझ में नहीं आ रही है, जिसका फोटो क्लिक करके वो व्हाट्सएप के माध्यम से वैज्ञानिकों तक पहुंचा सकते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर आप हमारे किसान भाइयों को बता सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारा ये जो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता रहा हूं, इसको हमने पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट नाम दिया है, पूसा व्हाट्सएप सलाह, तो ये नंबर है 9560297502। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, 9560297502। तो ये हमारे किसान भाई, इसमें आपको फसलों से संबंधित है, आपको सब्जियों से संबंधित है, या आपने बागवानी से संबंधित है, तमाम तरह की जो आपको समस्याएं आप फेस करते हैं उससे संबंधित आप फोटो खींच के जानकारी इस पे ले सकते हैं।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे,
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
3: परम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और अगर आप भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीफोन नंबर हमने आपको पहले भी बताए हैं, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। आज के विषय से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें डायल कर सकते हैं 2342108183 पर, और अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो एसटीडी कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, जो है 011।
7: बिल्कुल, और भाई विषय बता दें, जो आज का कार्यक्रम का विषय है वो है मौसमी परिस्थितियों के मद्देनजर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की क्या तैयारियां हैं, जिस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर सीताराम बिश्नोई कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लगातार प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, और कोशिश है कि कहीं ना कहीं कृषि जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है वो मजबूत हो और हमारा विश्व में अग्रणीय स्थान हो फसलों के उत्पादन में। तो मित्रों, जब बात तैयारी की होती है और एक वैज्ञानिक की सोच से हम देखते हैं तो निश्चित रूप से अनुसंधान हमारे खेतों तक पहुंचते हैं, खेत खलियान खिलखिलाते हैं, कृषि मजबूत होती है, हमारे किसान मजबूत होते हैं। और बात चल रही थी कि किस प्रकार से मौसमी परिस्थितियों को देख करके ICAR या ICARI की तैयारियां हैं, लेकिन अब बात हमारे ऊपर भी आती है कि हम कितने जागरूक हैं, हम कितनी कोशिश करते हैं उन चीजों को सीखने की। अभी व्हाट्सएप नंबर सर ने बता दिया, लेकिन अब जानना है कि आपको केवल एक फोटो क्लिक करना है यदि कोई समस्या है और व्हाट्सएप कर देना है, आपको जानकारी मिलेगी, उसे किसान भाई अपने खेत में जैसे ही अप्लाई करेंगे तो उसका हमें लाभ देखने में मिल जाएगा।
6: और अमित, ये जो टेलीफोन नंबर बताया गया है क्यों ना एक बार फिर से बता दें अपने सुनने वालों को।
7: बिल्कुल बता देते हैं भाई, जो पूसा का सलाह ऐप है जिसपे आप जानकारी ले सकते हैं, वो नंबर है 9560297502। इस पर व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कोई भी। अब बात आती है कि जो अगर हम अब समसामयिक डॉक्टर साहब बात करें, जो खरीफ की फसल का मौसम चल रहा है और लोग धान में लगे हुए हैं मुख्यतः अगर माना जाए, तो इसको क्या आप अपने मन के अनुसंधानों का जो आप विचार करते हैं वो परामर्श के माध्यम से क्या हमारे किसान भाइयों को बताना चाहिए?
8: बिल्कुल, अभी की जैसे बात करते हैं तो अभी हमारे किसान भाई जो खरीफ की फसल जो ले रहे हैं, लेने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कुछ 3-4 चीजें हैं जो हम डिजिटल माध्यम से या दूसरे तमाम लिखित से हम परामर्श के तौर पर हम किसान भाई को भेजते हैं। मैं आज आपके माध्यम से भी मैं किसान भाइयों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा।
7: स्वागत
8: है। उसमें सबसे पहला तो है कि जैसे आपको खरपतवार नियंत्रण करना है तो जैसे खरीफ की सभी फसलों में मैं कहना चाहूंगा कि आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई कर खरपतवार को समय पर नियंत्रित करें, क्योंकि खरपतवार ये आपकी मुख्य जो फसल है उसके साथ उसके जल पोषक तत्व है या तमाम तरह के जो संसाधनों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, जिससे हमारी मेन फसल जो मुख्य फसल है वो प्रभावित होती है। तो और निराई गुड़ाई में मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो थोड़ी सी भुरभुरी हो जाती है, जिससे क्या है ना कि वायु संचार बढ़ जाता है तो पौधा और अच्छे से विकास कर सकता है, तो जिसे उसकी जड़ें मजबूत होती है। और विशेषकर मैं किसान भाइयों कहना चाहूंगा कि वर्षा के तुरंत बाद गीले खेत में निराई गुड़ाई ना करें, एक बार जब मिट्टी काम करने योग्य हो तब करें। तो पहली बात तो हो गई कि खरपतवार नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी जब बात कर रहे हैं कि जल निकास की, जैसे हम अभी खरीफ की अन्य फसलों की बात करते हैं, जैसे मक्के की बात करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं, दलहन की बात करते हैं या फिर बागवानी फसलों में, वो जल भराव के प्रति बहुत ही संवेदनशील होती है। तो अपने कि हमारे किसान भाइयों से ये अनुरोध रहेगा कि वो अपने खेत में इस प्रकार का कोई वो करे कि जिससे है ना नालियों के थ्रू या जो जल भराव हो रहा है वो पानी तुरंत वहां से निकल जाए, तो और समय समय पर उसकी सफाई भी करे ताकि उसके खेत में ऐसी समस्या बार बार ना आए। इसी तरह जैसे उर्वरक प्रयोग की हम बात करते हैं तो जैसे अब वर्षा का समय चल रहा है तो इस टाइम जैसे यूरिया या अन्य घुलनशील पदार्थों उर्वरकों का प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर इस टाइम आप करोगे और उसके बाद में अगर भारी मात्रा में अतिरिक्त पानी जो बहेगा तो उसके साथ जो घुलनशील पोषक तत्व है वो बह के चले जाएंगे, फिर से आपको दोबारा करना पड़ेगा। इसी तरह जैसे रासायनिक जो कीटनाशक या तमाम तरह के जो छिड़काव करते हैं हमारे किसान भाई, तो उनको जब बारिश या तेज हवाएं चल रही हो या अधिक तापमान के दौरान इन चीजों को छिड़काव ना करें, क्योंकि जब आसमान साफ हो तभी आप करो तो वो उसमें लाभदायक होगा, नहीं तो आपके करने के बाद में फिर से दोबारा करना होगा, बरसात हो गई या फिर तेज हवाएं चल रही है तो उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे।
7: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे नीरा भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, कई बार आता है ना भाई, वो तो ऐप ऐसे लगाए हैं, और बिल्कुल हम तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो मौसम विभाग वो भी जानकारी देता है, तो पहले से पता रहता है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी या कितनी संभावना है, तो उसी हिसाब से आप कृषि कार्य को करें ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो, हमारी जो उपज बढ़े, लागत कम हो, उत्पादन अच्छा रहे। वहीं डॉक्टर साहब एक हम देख भी रहे हैं आजकल, एक तो मोबाइल के जो सोशल मीडिया का जमाना है उस पर कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आती हैं, एल नीनो से आजकल किसान भाई बहन बातचीत करते सुने गए हैं कि वो चौपाल पर बैठे कि भाई एल नीनो है, कैसे सूखा होगा, क्या होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जो वैज्ञानिक एक दृष्टि है उसके माध्यम से हमारे किसान भाई बहनों को ये बात पहुंचे,
6: यानी कि कृषि पर इसका क्या असर,
7: क्या प्रभाव पड़ेगा।
8: सबसे पहले मैं जैसे हमारे किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो अल नीनो, कई किसान भाई इसको समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या बला है, तो जैसे ये एक मैं कहना चाहूंगा कि एक महासागरीय वायुमंडलीय घटना है, जिसमें जो प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भाग में जब उसका जो सतही जल वो गर्म ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से कहीं पे ज्यादा वर्षा, कहीं पे कम वर्षा, इस टाइप का, कहीं पे लंबा शुष्क अंतराल हो रहा है तो कहीं पे कम समय में बहुत ज्यादा बरसात आ रही है, उसको हम अल नीनो के नाम से जाना जाता है। तो मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय की तरफ से और हमारे आईसीआर की तरफ से अल नीनो को ध्यान में रखते हुए एक एसओपी गाइडलाइन अभी हमने जारी की गई है, तो उसके अंदर मुख्य रूप से जो काम हमारे काउंसिल या जो मंत्रालय या संस्थान के जो माध्यम से किया गया है, उसमें जो है ना, जो सबसे पहले है कि मानसून से पहले हमारे किसान भाइयों को सचेत करने के लिए जो पिछले साल का डाटा है या उसके आधार पर हमने जो सूखे जिले हैं जहाँ पे वर्षा कम हो रही है या जो विकास खंड है उनकी पहचान की हुई है, उनके लिए समय सही समय पर बीज की उपलब्धता हो, उनके सही समय पर अन्य उर्वरक पदार्थ पहुँचे, और उनको जो सूखा सहनशील किस्मों के बीज की व्यवस्था सही समय पे हो, इस टाइप की। इसके अलावा जो विभिन्न दूसरे डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट के साथ एक समन्वय स्थापित करके, जैसे कृषि में भी राज्य कृषि विश्वविद्यालय है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के संस्थान है या कृषि विज्ञान केंद्र है, इनके सबके साथ में समन्वय स्थापित करके जो अल नीनो से जो प्रतिकूल प्रभाव हमारे किसान भाइयों को पड़ने वाला है उससे हम उनको बचा सके, उसके लिए हम एक एसओपी और उसको हिंदी में भी, ताकि हमारे किसान भाई भी समझ सके और बाकी सारे जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, वो एक समन्वय में एक साथ काम करे और उनके साथ जो हमारे किसानों की जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जैसे कृषि सिंचाई योजना है, बीमा योजना है, या फिर दूसरी तमाम तरह की जो हमारे किसान हितैषी योजनाएं हैं, उनका सबका एक जगह समावेश हो, समन्वय हो, और हमारे किसान भाइयों पर जो पड़ने वाला इसका प्रतिकूल प्रभाव है, प्रतिकूल प्रभाव इसमें क्या होता है कि कई बार जो औसत वर्षा जो हम आशा करते हैं उससे कम होती है, जैसे पिछले कई सालों में हम देखा जाए तो उसमें उसकी वजह से खरीफ की फसलों में उनको जो बुआई में विलंब हो जाता है, या फिर जैसे मान लो एक बार हो गई बाद नहीं और तो अंकुरण में कमी आ जाती है, या फिर कई तमाम तरह की जैसे कीट रोगों का बाद में ज्यादा बरसात हो गई, तो इस टाइप के, तो उसके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, अल नीनो के प्रभाव को कम करने के लिए काउंसिल और मंत्रालय की तरफ से और सभी संस्थानों के समन्वय से कृषि विज्ञान केंद्र को साथ लेके, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र हमारी सबसे अग्रिम इकाई है जो हमारे किसान भाई से डायरेक्ट जुड़ के और हमेशा उनके टच में रहते हैं, तो ये एक हमारी तरफ से पहल की गई है।
7: जी डॉक्टर साहब, विषय है कि मौसमी परिस्थितियों के मद्देनजर भारतीय कृषि अनुसंधान की संस्थान की क्या तैयारियां हैं, इस पर बड़ी लंबी बातचीत हुई, बहुत चर्चा, एक कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप में आपने अपने संस्थान, वैज्ञानिकों की और डॉक्टर्स और विशेषज्ञों की तैयारियां बताई, लेकिन बात आती है कि किसान और विज्ञान कहीं ना कहीं एक उस प्रकार के हल में है जो दो बैलों से चलता है, कि जब विज्ञान के साथ साथ किसान चलेगा तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, लागत भी कम होगी और देश भी आगे तरक्की करेगा। तो विज्ञान की बातों को मानते हुए किसान को आप क्या परामर्श देना चाहते हैं कि किसानों को क्या तैयारियां अपनी ओर से इस जो मानसूनी मौसम चल रहा है या मौसमी घटनाएं हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं, उनमें उनको रखनी चाहिए?
8: तो इसको इस क्रम में मैं आपको लास्ट में यही बताना चाहूंगा कि हमारे किसान भाइयों को कुछ सामान्य सावधानियां हैं, उनको ध्यान में रखना है। तो जैसे आप चाहे बुआई कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, या खेत में उर्वरक डाल रहे हैं, किसी दवा का प्रयोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप स्थानीय जो पूर्वानुमान आता है मौसम का, उसको एक बार जरूर ध्यान करें कि भाई क्या हम अभी उर्वरक डाल रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं, तो क्या ये उचित समय है या नहीं। दूसरा, फिर से मैं

0: करना चाहूंगा, क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें हैं, इनके
1: जी
0: बारे में हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो जल भराव की स्थिति में सबसे पहले जो एक्स्ट्रा पानी है वो खेत से निकाले, वो अगर सही समय पे निकाल देंगे तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं या फिर उसमें वो तना गलन या जड़ गलन की बीमारियों से हमें या फफूंदनाशकों से हमें बचा सकते हैं, जिससे हमारी लागत कम हो सकती है। इसी तरह जैसे हम जब तेज हवा चल रही हो
1: जी
0: या वर्षा आने वाली हो, पूर्वानुमान को देखते हुए तो रासायनिक जो आप छिड़काव करते हैं उनका ना करें। और सबसे महत्वपूर्ण, बीज और पौध जो भी हमारे किसान भाई खरीदते हैं वो प्रमाणित और विश्वसनीय स्रोत से खरीदे, किसी सरकारी संस्थान से या जहां पे विश्वसनीयता हो उसी से खरीदे, हर किसी से ना खरीदे।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम किसान की बात में जो हमारे श्रोताओं तक ये बातें पहुंची हैं तो उसका लाभ हमारे किसान भाई बहन उठाएंगे। तैयारियां हो गई हैं, अनुसंधान की तैयारियां पूरी हैं संस्थान
1: बिल्कुल
2: की, वहीं हमारे किसानों ने भी तैयारियां क्या करनी है इस पर आपने विशेष जोर दिया, और निश्चित रूप से किसान भाई बहन इस बातचीत का लाभ उठाएंगे। आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इतनी अच्छी जानकारी आपने किसान भाई बहनों को दी, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: और साथियों, आपसे भी अब अनुमति लेने का समय हो गया है। कार्यक्रम किसान की बात सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इन्हीं मुद्दों पर राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
1: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पर चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पर चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज, तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा पर बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि नीट पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू

0: तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। हालांकि DMRC ने बताया कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वदा नैनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर ये जवाब दिया। फिलीपींस के मनीला में 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगे। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi announced that the centre will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks, and asserting that protecting students' future remains the government's top priority. In social media post, the Prime Minister said nothing is more important than the welfare and future of the youth of the country. His statement comes amid ongoing student protests at Delhi's Jantar Mantar over the NEET paper leak case. The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. Both Houses of Parliament have been adjourned for the day. The Lok Sabha was adjourned for the day following opposition protest over various issues, including the NEET paper leak case. When the Lok Sabha assembled after the second adjournment at 2 p.m, the opposition members again started sloganeering, forcing the chair to adjourn the house for the day. When the Lok Sabha reassembled after the first adjournment at 12 noon, the opposition was on their feet, protesting on the paper leak issue. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to opposition parties, particularly the Congress, to cooperate in holding a discussion on the NEET paper leak issue. He added that the government has already conveyed its willingness to hold a discussion on the issue in both houses as per the date and duration desired by the opposition. Similar scenes were also witnessed in the Rajya Sabha. When the Rajya Sabha assembled again at 12 noon after the first adjournment, Leader of Opposition Mallikarjun Kharge again raised the issue of NEET paper leak and students' protests. He said the opposition is ready for a discussion, but first, the Education Minister Dharmendra Pradhan should resign. Earlier, when the proceedings began at 11 a.m., Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government is ready to discuss the NEET issue, but alleged that the Congress party is imposing conditions, raising questions about its intentions.
2: Today, I appealed on behalf of the entire NDA for a discussion on NEET. After meeting Mr. Kharge and some other opposition leaders, yesterday we were hopeful that a discussion on NEET would take place today. However, the Congress party imposed conditions. Imposing conditions suggests that your intentions are not right, as it appears that you want to prevent the discussion.
1: Leader of the opposition Mallikarjun Kharge demanded the resignation of Union Education Minister, saying that without his resignation the discussion will not happen. He said the Congress is not shying away from discussion. India has called for zero tolerance against terrorism and reaffirmed its commitment to a free, open, inclusive and rules-based Indo-Pacific at the 33rd ASEAN Regional Forum Ministerial Meeting in Manila in the Philippines. Addressing the meeting, External Affairs Minister

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। 3:11:04 हुए हैं और ये वक्त रहता है मन भावन का, आपके मन को भाते सुहाते पसंद आते गीतों की महफिल सजती है यहाँ आपकी पसंद पर। तो फिर आप अपनी पसंद कैसे हम तक पहुंचाएंगे? व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9868868753, 9868868753। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से आप नोट करें 9868868753 और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com fmgoldairdelhi@gmail.com। और ये पहला गीत जो आपके पास पहुंच रहा है बहुत ही खूबसूरत सा गीत है और इस गीत की फरमाइश जिन लोगों ने की है ये तो हम आपको इस गीत को सुनवाने के बाद बताएंगे। तो रजिया सुल्तान फिल्म का ये गीत लता जी की आवाज़ में।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz के साथ आप बने हुए हैं और मन भावन का सफर जारी है आपकी दोस्त रुचिका के साथ। आपको बता दें, यदि आपका भी मन किसी गीत को भाए, यानी कि आपका मन है कोई गीत सुनने को, आपका दिल गुनगुना रहा है वो गीत, तो आप अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। एक बार फिर से आपको बता दें, fmgoldairdelhi@gmail.com। और आपके बहुत सारे संदेश, बहुत सारी फरमाइशें हम तक पहुंच रही हैं। देखिए, महाराष्ट्र से संदेश हम तक पहुंचा है विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर का। और फरमाइश इन्होंने की है एक बहुत ही खूबसूरत गीत की, तो इनकी जो फरमाइश है वो हम ज़रूर हमारे सभी श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। लेकिन उनसे पहले आपको बता दें, और भी बहुत सारे आपके संदेश हैं जो हम तक पहुंच रहे हैं। देखिए, हरजिंदर सिंह भाटिया का संदेश हम तक पहुंचा है, इनके साथ हैं एंजल भाटिया, पपी भाटिया और सोनू भाटिया। कहाँ से इनका संदेश पहुँचा है? जमशेदपुर से इनका संदेश हम तक पहुँचा। आपके संदेशों को हम शामिल करेंगे। एक बार ईमेल आईडी फिर से सुन लीजिए, fmgoldairdelhi@gmail.com।

ये गीत आपने सुना फिल्म सावन को आने दो से, और फिलहाल आपके भी बहुत सारे संदेश और बहुत सारी फरमाइशें जो हैं वो हम तक पहुंच रही हैं, तो चलिए आपके संदेशों को हम शामिल करते हैं। संतोष आनंद, मास्टर अशोक, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मुसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना और सुदामा नगर खांडवा से, लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु और मुकेश का संदेश हम तक पहुंचा है, और इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश भी की है लता मंगेशकर जी की आवाज में। और किसका संदेश हम तक पहुंचा है भाई? संदेश हम तक पहुंचा है महाराष्ट्र अमरावती से, ये संदेश है। रुद्र रोमेकर, अक्षय, हर्षा रोमेकर, दिलीप रोमेकर और रुचिका रोमेकर, इनका पूरा परिवार जो है वो हमारे साथ बना हुआ है। राशिद हुसैन अंसारी का संदेश हम तक पहुंचा है, और कहां से ये संदेश हमें लिख रहे हैं ये इन्होंने नहीं लिखा है, सिर्फ इनका नाम है। और आकाशवाणी FM गोल्ड चैनल नई दिल्ली इन्होंने लिखा है, तो चलिए आपका संदेश हमने शामिल कर लिया है। नवनेल महाराष्ट्र से, SP नहावकर, निर्मला विशाल और नारायण सुबान आशीष का संदेश हम तक पहुंचा। मोहम्मद सईद अबासी, निकट परवीन अबासी, शाहनवाज अबासी, सरफराज अबासी, फरदीन, सुहान, अरजान अबान और इनका पूरा परिवार हमारे साथ बना हुआ है।

चंडीगढ़ सिटी से हम तक संदेश पहुंचा है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का। आप अपने संदेश, अपनी फरमाइशें ऐसे ही हम तक पहुंचाते रहिए fmgoldairdelhi@gmail.com पर। FM गोल्ड के जरिए मैं रुचिका आप तक पहुंचाऊंगी आपकी पसंद के गीत।

नमस्कार, मैं हेमा मालिनी आप सभी को अनेकानेक बधाइयाँ शुभकामनाएं देती हूँ। जब हम छोटे थे तो आकाशवाणी ही हमारी जानकारियों और एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन का जरिया था, लेकिन आज भी मुझे आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना उतना ही पसंद है, चाहे वो कार में बैठते ही रास्ते में थकान मिटाना हो या घर में सारे दिन धीमे धीमे बजने वाले गीत सभी सुकून देते हैं। आकाशवाणी से जुड़ाव अब तो जीवन का एक हिस्सा बन चुका है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ, आपके बहुत सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz। और आपको बता दूं कि FM Gold AIR Delhi@gmail.com पर आप अपनी फरमाइश के गीत के शुरुआती बोल और अपना नाम हम तक पहुंचा सकते हैं और हम आप तक पहुंचाएंगे आपकी पसंद के गीत। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का संदेश हम तक पहुंचा है और गीत की फरमाइश वो करती हैं। वो कहती हैं कि चुनिंदा फिल्मों में से कोई भी एक गीत आप सुनवा दीजिए। तो चलिए, आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले और भी बहुत सारे संदेश हैं जो हम शामिल कर लेते हैं। तो उसकी तुलसी मस्कीन, वीणा मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य और मेघा का संदेश है। चंडीगढ़ से राहुल खन्ना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना का। और किसका संदेश है भाई? तुलसी और वीणा का एक बार फिर से हम तक संदेश पहुंच चुका है। और जनकपुरी सहारनपुर से जॉन, रोजी, पर्ल और विलिस का संदेश हम तक पहुंचा, साथ में एक खूबसूरत गीत की फरमाइश भी इन्होंने हम तक पहुंचाई है। और भी बहुत सारे संदेश हैं आपके जनाब, और इतने सारे संदेश हैं कि हमें कभी कभी नहीं समझ आता कि किसका संदेश हम शामिल करें और किसका हम ना करें। देखिए, श्रीपाल गोयल का संदेश हम तक पहुंचा है बहादुरगढ़ हरियाणा से, और इनके साथ हैं साधना गोयल। गुलाम साबिर राही, मेहर राज जहां और ताज मोहम्मद अंसारी का संदेश हम तक पहुंचा है हरिद्वार से।

सहारनपुर चंद्रनगर से संदेश हम तक पहुंचा है सुरेश नारंग, आशु नारंग और सोनाली नारंग का। इन्होंने फरमाइश की है फिल्म रजनीगंधा से मुकेश की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत है जो ये सुनना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल तो मैं आप तक पहुंचाऊंगी कौन सा गीत। भाई गैम्बलर फिल्म का गीत है, बहुत ही खूबसूरत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है, तो पहुंचाते हैं आप सभी तक। सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000-7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न

0: ITR 1 या ITR 2 में भरनी है उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जांच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
0: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
5: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
4: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
5: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
4: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

हिंदुस्तान का देगा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

चलिए आपके संदेशों को हम अब शामिल कर लेते हैं जल्दी से। वीरगमान से अजीत भावसागर प्रमिला और भावेश सनी भावसार का संदेश हम तक पहुंचा है और एक बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश इन्होंने पहुंचाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ साथ आपको बता दें कि लखनपाल रंधावा, सुरेंद्र कौर रंधावा, परमिंदर सिंह रंधावा का संदेश हम तक पहुंचा है संगरूर पंजाब से और इन्होंने भी एक गीत की फरमाइश की है। साथ साथ लिखती हैं कि रुचिका जी नाम आप ज़रूर शामिल करना। चलिए हमने आपका नाम शामिल किया। छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी का संदेश हम तक पहुंचा है और खांडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर और जियाउल हक डावर का संदेश हम तक पहुँचा।

और भी बहुत सारे संदेश हम तक पहुंचे हैं। कक्कड़डूमा से प्रकाश गोगिया हमें सुन रहे हैं। भगवती सिंह का संदेश पहुंचा है प्रहलादपुर से। नवाब अहमद हमारे साथ बने हुए हैं नांगलोई दिल्ली से। अनीता वर्मा पीतमपुरा से। वहीं हरजिंदर सिंह भाटिया दिल्ली से। और चाणक्य चौक से मनोहर लाल गांधी हमें सुन रहे हैं।

छत्तीसगढ़ से संदेश पहुंचा है मोहम्मद इसफाक, खातिजा बेगम, मोहम्मद अशफाक और आफरीन का, इनके साथ हैं फातिमा। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हम तक संदेश पहुंचाने के लिए, और कुछ शिकायतें भी हैं उनके लिए भी हम भाई कोशिश तो यही करते हैं कि आपके जितने संदेश हम हो सकें शामिल कर सकें, लेकिन फिर भी कुछ संदेश है रह जाते हैं।

0: मन भावन में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला है समाचारों का, सुनते रहिए FM गोल्ड।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा, प्रश्न पत्र लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू की, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इन्हीं मुद्दों पर राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप साइकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
2: आप जिस हिसाब से सदन में सरसास आते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार, ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है। सदन ऐसे बाधित करेंगे ये ठीक नहीं है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
3: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा NDA पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी अपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज, तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा पर बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि नीट पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए। हालांकि DMRC ने बताया कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत परवथानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर यह जवाब दिया। फिलीपींस के मनीला में 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान किया और स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियमों पर आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने एक दूसरे के देशों में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। भारत UAE संयुक्त वाणिज्य दूतावास समिति JCCA की 7वीं बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रवासी भारतीय मामलों के काउंसलर, पासपोर्ट और वीजा सचिव श्री प्रिया रंगनाथन और UAE के विदेश मंत्रालय के अवर सचिव उबैद मोहम्मद अलहसान अल शमसी ने इस बैठक की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने समुदाय के कल्याण पर बल दिया और कौंसुलर, वीजा और कानूनी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए आगामी रणनीति पर सहमति व्यक्त की। सरकार ने उन सोशल मीडिया पोस्टों का खंडन किया है जिनमें यह दावा किया गया था कि दिल्ली में नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान 21 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि ये सारे दावे झूठे हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Both the Houses of Parliament have been adjourned for the day following the opposition protest over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to the opposition parties, particularly the Congress, to cooperate in holding a discussion on the NEET paper leak issue. He added that the government has already conveyed its willingness to hold a discussion on the issue in both houses as per the date and duration desired by the opposition. Mr. Rijiju appealed to the Congress party not to impose conditions, stating that such conditions may be seen as an attempt to avoid discussion. Union Minister and Leader of the House, J.P. Nadda, criticized the opposition, terming its conduct as highly irresponsible. He alleged that the opposition neither wants a discussion nor is willing to allow the House to function. Leader of the Opposition, Mallikarjun Kharge, demanded the resignation of the Union Education Minister, saying that without his resignation, the discussion will not happen. He said that Congress is not shying away from discussion. Prime Minister Narendra Modi announced that the centre will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks and asserted that protecting students' future remains the government's top priority. In a social media post, the Prime Minister said that nothing is more important than the welfare and future of the youth of the country. His statement comes amid ongoing student protests at Delhi's Jantar Mantar over the NEET paper leak case. The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. Delhi Police has clarified that the powers of detention granted under the National Security Act, NSA, to the Delhi Police Commissioner is not new, as it is a routine extension or renewal of powers. In a statement, the Delhi Police said this order is issued every 3 months, and the present renewal was issued on the 7th of July for the period 19th July to 18th October this year. It said the renewal was issued well before the commencement of the students' protests. The Delhi Police has further clarified that no specific request was made in the present context. The police said that the renewal is a routine administrative exercise and has been interpreted out of context by certain media reports. President Draupadi Murmu will reach Bucharest in Romania today in the final leg of her three-nation visit. After her arrival at the Cotroceni Palace, she will be accorded a guard of honour. She will hold delegation-level talks with her Romanian counterpart, Nicușor Dan. Several MOUs will be signed after the talks. The President of Romania and the First Lady will host a state dinner in honour of President Murmu today. India has called for zero tolerance against terrorism and reaffirmed its commitment to a free, open, inclusive and rules-based Indo-Pacific at the 33rd ASEAN Regional Forum Ministerial Meeting in Manila, the Philippines. Addressing the meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said this forum remains an important platform for discussing political and security issues in the Indo-Pacific, particularly at a time of growing global conflict.

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz के साथ आप बने हुए हैं। मैं हूँ रुचिका, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार।
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है,
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई D&D ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई D&D ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
7: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
6: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें, तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
7: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें, ये क्विक रिफंड में सहायक होती है, सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
6: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता, आयकर विभाग, भारत सरकार।

0: AI website. Kindly look up www.iwai.nic.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नई दिल्ली में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव और स्टेनोग्राफर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पदों का विवरण, पात्रता मानदंड, अनुभव, आयु सीमा आदि आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की वेबसाइट www.nha.gov.in पर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का संवैधानिक निकाय केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। उपनिदेशक कार्यक्रम, सहायक निदेशक कार्यक्रम, लेखाधिकारी, निजी सहायक, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर और हिंदी टाइपिस्ट। पात्रता संबंधी मानदंड इस वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं cara.wcd.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बीबी नगर हैदराबाद में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रोफेसर कुल 20 रिक्तियां, अतिरिक्त प्रोफेसर कुल 5 रिक्तियां, एसोसिएट प्रोफेसर कुल 9 रिक्तियां और सहायक प्रोफेसर कुल 17 रिक्तियां। भर्ती अधिसूचना, शैक्षणिक योग्यता, आयु, अनुभव, आवेदन शुल्क और आरक्षण आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट aimsbbnagar.edu.in। इसके अतिरिक्त 18 से 24 जुलाई 2026 के रोजगार समाचार पत्र में भी आप आवश्यक जानकारी देख सकते हैं। भारत सरकार का उपक्रम पवन हंस लिमिटेड कनिष्ठ तकनीकी सहायक संविदा और सहायक कैमो संविदा के पदों के लिए शुद्धि पत्र जारी करता है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि पवन हंस लिमिटेड की वेबसाइट तथा समाचार पत्रों में दिल्ली संस्करण में प्रकाशित विज्ञापन सही है तथा क्रम संख्या 2 और 4 को इस प्रकार पढ़ा जाए, कनिष्ठ तकनीकी सहायक संविदा और सहायक कैमो संविदा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रभाग अनुबंध के आधार पर युवा पेशेवरों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट अथवा 18 से 24 जुलाई 2026 के रोजगार समाचार पत्र में भी आप विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। विभाग की वेबसाइट है www.moef.nic.in। टाटा मेमोरियल केंद्र, होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। चिकित्सा अधिकारी एफ, रेडियो डायग्नोसिस, चिकित्सा अधिकारी ई, चिकित्सा गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी, चिकित्सा अधिकारी ई, न्यूक्लियर मेडिसिन, चिकित्सा अधिकारी डी, जनरल मेडिसिन, मेडिकल फिजिसिस्ट डी, वैज्ञानिक अधिकारी डी, गुणवत्ता वैज्ञानिक अधिकारी डी, फिजियोथेरेपी अधिकारी प्रभारी डिस्पेंसरी, वैज्ञानिक सहायक सी, न्यूक्लियर मेडिसिन वैज्ञानिक सहायक बी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रोग्रामर वैज्ञानिकी सहायक बी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। आवेदन के लिए अंतिम तिथि रहेगी 1 अगस्त 2026। अधिक विवरण के लिए देखिए वेबसाइट tmc.gov.in। वेबसाइट पर जाकर आप करियर्स को क्लिक करके आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक सम विश्वविद्यालय है, जिसका मुख्य परिसर नई दिल्ली में तथा क्षेत्रीय परिसर आइजोल, अमरावती, ढेंकनाल, जम्मू और कोट्टायम में है। अपने मुख्य परिसर नई दिल्ली के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक कुल सचिव के दो पदों को भरने

0: हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए IIMC की वेबसाइट www.iimc.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। अगले आधे घंटे तक हम इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी चलेंगे और जानेंगे कि आज क्या है उनके पास खास रिपोर्ट्स, खेल के मैदान की गतिविधियों और आर्थिक जगत की सुर्खियों पर भी कार्यक्रम में हम डालेंगे एक नज़र। और कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज है पुण्यतिथि या आज ही के दिन जिनका हुआ था जन्म। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं अनुजा कुमार।
2: नमस्कार विशाल, एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू टुडेज परिक्रमा। विशाल, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट विशेस टू यू ऑन नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। And since we are connected to radio, we are the anchors, the presenters, radio becomes an important medium of broadcasting and we really feel very connected with radio, isn't it?
1: Ji, desh ki awaz, radio.
2: Yeah. The day highlights radio's vital role in reaching remote villages and diverse linguistic populations across India. We will discuss more on this in our Dateline section today, but first, the headlines. Vishal?
1: जी जरूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता।
2: गवर्नमेंट रेडी टू डिस्कस एनी इश्यू इंक्लूडिंग नीट इन पार्लियामेंट, सेज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू।
1: आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान।
2: इंडिया रिजेक्ट्स पाकिस्तान्स रिमार्क्स ऑन द इंडस वाटर्स ट्रीटी एट यूएनएससी, सेज ट्रीटी टू स्टे इन अबेयंस अंटिल क्रॉस बॉर्डर टेरर एंड्स।
1: और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
2: And Vishal, as always, it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about National Broadcasting Day. Today is a truly special occasion. We celebrate National Broadcasting Day, observed every year on the 23rd of July, marking the beginning of organized radio broadcasting in India in the year 1927.
1: जी अनुजा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है देश में रेडियो प्रसारण की दृष्टि से। आज का दिन सिर्फ भारत में रेडियो की शुरुआत को याद करने का ही नहीं है, बल्कि एक ऐसे माध्यम का जश्न मनाने का भी है जिसने कई पीढ़ियों को जानकारी दी, शिक्षित किया, मनोरंजन किया और प्रेरित भी किया। और इस शानदार सफर के केंद्र में है आकाशवाणी, भारत का भरोसेमंद लोक प्रसारक। क्या आप जानते हैं कि भारत में ब्रॉडकास्टिंग की कहानी लगभग एक सदी पहले शुरू हुई थी?
2: That's right, Vishal. The first organized radio broadcast was made on the 23rd of July 1927 from Bombay by the Indian Broadcasting Company. It was a modest beginning, but one that would transform communication in our country forever.
1: बाद में ये सेवा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बनी और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो में बदल गई।
2: And in 1956 it was given the beautiful name we all cherish today, आकाशवाणी। बहुत ही अच्छा लगता है बोलने में जब हम समाचार शुरू करते हैं विशाल, एंड वी से दैट दिस इज आकाशवाणी। इट लिटरली मींस वॉइस फ्रॉम द स्काई, अ नेम दैट परफेक्टली रिफ्लेक्ट्स इट्स मिशन ऑफ रीचिंग एवरी कॉर्नर ऑफ द नेशन।
1: जब हम रेडियो शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमें गाने और समाचार याद आते हैं, लेकिन आकाशवाणी की भूमिका हमेशा से ही इससे भी कहीं ज्यादा रही है।
2: एब्सोल्युटली, सिंस इंडिपेंडेंस आकाशवाणी हैज सर्व्ड एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, कैरिंग इन्फॉर्मेशन टू विलेजेस, टाउन्स, सिटीज एंड इवन रिमोट रीजन्स वेयर अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन वर वंस अनअवेलेबल।
1: चाहे किसानों को खेती के बेहतर तरीकों के बारे में जानकारी देना हो, परिवारों को स्वास्थ्य और साफ सफाई के बारे में शिक्षित करना रहा हो, साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देना हो, या फिर भारत की समृद्ध संगीत, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखना हो, आकाशवाणी हमेशा एक साथी की तरह साथ रही है।
2: One of the greatest strengths of Akashvani has been its role in nation building.
1: बिल्कुल सही कहा आपने। राष्ट्रीय महत्व के समय चाहे चुनाव हो, प्राकृतिक आपदाएं हो, जन स्वास्थ्य अभियान हो या फिर नीतिगत घोषणाएं, लोग हमेशा विश्वसनीय और सही जानकारी के लिए आकाशवाणी का ही रुख करते रहे हैं।
2: Absolutely right. It has also encouraged scientific thinking, promoted education, empowered women, supported youth, and provided valuable information to farmers through dedicated agricultural programs as well.
1: और आपातकालीन स्थितियों में आकाशवाणी की भूमिका को भी कभी भूला नहीं जा सकता, जब रेडियो अक्सर संचार का सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद जरिया बन जाता है।
2: And here is an interesting fact for our listeners. Today, Akashvani operates 591 stations, reaching nearly 98% of India's population, broadcasting in 23 languages and 146 dialects.
1: अनुजा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है, अद्भुत है बिल्कुल, कि बहुत कम संस्थान हैं जो भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को इस तरह से दर्शाते हैं जैसा आकाशवाणी दर्शाती है।
2: Yes, and now let's talk about something every listener loves, that is music.
1: जी, 1957 में आकाशवाणी ने मशहूर विविध भारती सेवा शुरू की, जो लाखों घरों तक यादगार फिल्मी गाने, नाटक, इंटरव्यू और मनोरंजन लेकर आई।
2: फॉर मेनी फैमिलीज इवनिंग्स वर इनकम्प्लीट विदाउट ट्यूनिंग इन टू विविध भारती, एंड इवन टुडे इट्स टाइमलेस प्रोग्राम्स कंटिन्यू टू कनेक्ट जनरेशंस।
1: और अनुजा, जैसे जैसे संचार के समय बदला है, संचार के माध्यम भी बदले हैं, टीवी भी आया और भी इंटरनेट आया, सोशल मीडिया आया, और लोग सोचते हैं कभी कभी लगता है कि रेडियो का आज के दौर में जो है, लेकिन आज के दौर में भी रेडियो अपने प्रासंगिकता बनाए हुए है और डिजिटल दौर में भी रेडियो की वही अहमियत आज भी बनी हुई है।
2: ऑफ कोर्स विशाल, इट हैज इट्स ओन चार्म एंड द आंसर इज ऑफ कोर्स रिजाउंडिंग यस। आकाशवाणी हैज एम्ब्रेस्ड टेक्नोलॉजी बाय एक्सपैंडिंग FM सर्विसेज, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग थ्रू डिजिटल रेडियो मॉन्डियल एंड ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सच एज The Waves platform as well.
1: अब सुनने वाले न सिर्फ पारंपरिक रेडियो सेट पर बल्कि स्मार्टफोन और डिजिटल डिवाइसेस पे भी आकाशवाणी का आनंद ले सकते हैं, जिससे ये पक्का होता है कि पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की भरोसेमंद आवाज हर जगह दर्शकों तक पहुंचे, श्रोताओं तक पहुंचे, माफ कीजिएगा।
2: जी हाँ, एंड अनदर रिमार्केबल एस्पेक्ट इज आकाशवाणीज एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन। थ्रू इट्स इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट, इंडियाज वॉइस रीचेज ऑडियंसेज इन मोर देन 100 कंट्रीज, स्ट्रेंथनिंग द कल्चरल टाइज एंड कीपिंग द इंडियन डायस्पोरा कनेक्टेड टू देयर रूट्स।
1: पिछले कुछ दशकों में टेक्नोलॉजी में जबरदस्त बदलाव आए हैं, लेकिन एक चीज हमेशा एक जैसी रही है जो कभी नहीं बदली, वो है आकाशवाणी पर लोगों का अटूट भरोसा।
2: जी हाँ, एंड फॉर प्रिजर्विंग इंडियाज क्लासिकल म्यूजिक एंड लिटरेचर, टू एम्पलीफाइंग रीजनल वॉइसेस, टू ब्रिंगिंग एक्यूरेट न्यूज एंड मीनिंगफुल डिस्कशंस इनटू एवरी होम, रेडियो एंड ब्रॉडकास्टिंग इज सो वेरी इंपॉर्टेंट।
1: जी, और आकाशवाणी का मूल मंत्र रहा है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, और आकाशवाणी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ देश की सेवा कर रही है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हुए हम उन सभी प्रसारकों, इंजीनियरों, निर्माताओं, पत्रकारों, कलाकारों और तकनीशियनों को सलाम करते हैं जिनकी प्रतिबद्धता ने जन प्रसारण की भावना को जीवित रखा है।
2: राइट, एंड ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे टुडे, प्रसार भारती CEO गौरव द्विवेदी सेड दैट ब्रॉडकास्टिंग हैज इवॉल्व फ्रॉम रेडियो टू टीवी एंड नाउ टू डिजिटल स्ट्रीमिंग इन द लास्ट 99 years. Talking exclusively to Akashvani News, Mr. Dwivedi said that Prasar Bharati will continue to bring all kinds of entertaining, informative and educational content to the audiences within India and abroad. And talking about the launch of Prasar Bharati's OTT platform named Waves, Mr. Dwivedi said that platform already has a user base

0: of about 1.1 crore people and is growing at a rapid pace.
1: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, तत्कालीन बम्बई, आज जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं। और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के लिए।
0: And above all, we thank all you listeners. Your trust has been the greatest strength of Akashvani for generations. And as India moves confidently into the digital future, Akashvani remains committed to informing, educating, entertaining and uniting every citizen.
2: रेडियो की सदाबहार आवाज़, रेडियो पर गूंजने वाली सदाबहार आवाज़ आने वाली पीढ़ियों तक विविधता भरे हमारे देश को प्रेरित, सशक्त और एकजुट करती रहे। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब कार्यक्रम में समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और ये जानने का कि आज क्या क्या खास रिपोर्ट्स उनके पास हैं।
0: तो सबसे पहले कहाँ चलें विशाल?
2: और इस कड़ी में सबसे पहले हम पंजाब के कपूरथला चलेंगे। और डॉल्फिन अगर आपने देखी हो, हम सभी ने देखी है, उसके जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, उसके जो उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है डॉल्फिन के, ऐसा लगता है कि हंसती हुई है वो। और डॉल्फिन टूरिज्म के एक बड़े केंद्र के रूप में उभरने की तैयारी कर रहा है पंजाब का कपूरथला ज़िला। और ज़िला प्रशासन यहाँ डॉल्फिन टूरिज्म गतिविधियों, डॉल्फिन देखने की जगहों, बोट राइड और सुरक्षित सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक योजना तैयार कर रहा है। क्या है ये व्यापक योजना, विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: पंजाब का कपूरथला जिला ब्यास नदी में डॉल्फिन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार कर रहा है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इंडस रिवर डॉल्फिन पंजाब का राज्य जलीय जीव यानी स्टेट एक्वेटिक एनिमल है। वन्य जीव विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित मीटिंग में कपूरथला के डिप्टी कमिश्नर आकाश बंसल ने बताया कि जिले के अंतर्गत आने वाला ब्यास रिवर कंजर्वेशन रिजर्व में वर्तमान में 3 डॉल्फिन की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि ब्यास नदी के किनारे बोटिंग तथा अन्य इको टूरिज्म गतिविधियों के माध्यम से डॉल्फिन टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय टूरिज्म के लिए भी एक बड़ा आकर्षण केंद्र बनने की अपार संभावनाएं रखता है। डॉल्फिन टूरिज्म को टिकाऊ तथा पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार तरीके से शुरू करने की संभावनाओं पर WWF इंडिया के कोऑर्डिनेटर गीतांजलि कंवर एवं वन्य जीव रेंज अधिकारी जसवंत सिंह व अन्यों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। श्री बंसल ने अधिकारियों को ब्यास नदी के किनारे ऐसे उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के निर्देश भी दिए जहां से पर्यटक डॉल्फिनों के प्राकृतिक आवास को बिना किसी नुकसान पहुंचाए सुरक्षित एवं सुविधाजनक तरीके से देख सकें। अधिकारियों ने मीटिंग में बताया कि रिजर्व क्षेत्र में डॉल्फिन की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए ब्यास नदी में 17 डॉल्फिन मित्र तैनात किए गए हैं। इन स्वयं सेवकों को विभाग द्वारा संरक्षण संबंधी जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु बुनियादी प्रशिक्षण भी दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला प्रशासन डॉल्फिन मित्रों के लिए उपयुक्त रोजगार एवं आजीविका के अवसर भी सुनिश्चित करेगा ताकि वे संरक्षण कार्यों में प्रभावी ढंग से अपना योगदान देते रहें। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट कपूरथला को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने में सहायक होगा और साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार जलंधर से मैं राजेश बाली।
0: एंड लेट्स नाउ गो टू केरलम। We all know that Onam is Kerala's biggest festival, but the month that comes just before it is Kari Kedakam, which is special in its own way. And from the traditional reading of the Ramayana to the practice of visiting the Nalambalam temples, the month is marked by several unique customs and traditions. And Kari Kedakam is the final month of the Malayalam calendar. One of the most distinctive traditions associated with the month is the practice of visiting 4 temples on the same day. Let us hear more about this unique tradition from our Thiruvananthapuram correspondent.
4: Nalambala Darshan means visiting four temples dedicated to the four sons of King Dasharatha, Lord Rama, Bharata, Lakshmana and Shatrughna on the same day. Devotees believe that visiting these four temples during the Malayalam month of Karkidagam, which is also known as Ramayana month, brings great spiritual benefits, and that is equivalent to receiving the benefits of reading the entire Ramayana. Keralam is believed to have around six groups of Nalambalam temples. The

0: Most famous group is located in Thrissur and Ernakulam districts. The Nalambalam temples in Kottayam district is also well known. A special feature in Kottayam district is that all four temples are located so closely, making it possible for devotees to visit the four temples in a single day. The tradition was once mainly followed in certain local areas, but over the years, Nalambala Darshan has become increasingly popular among devotees from different parts of Kerala. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान श्री विजयपुरम ने अंडमान कोकम की खोज की है। संस्थान के शोधकर्ताओं ने अंडमान कोकम के विशिष्ट जर्म प्लाज्म का राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण कराया है। ये उपलब्धि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समृद्ध जैव विविधता और स्थानीय आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: अंडमान की स्थानीय अनुवंशिक धरोहर के संरक्षण में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि सामने आई है। अंडमान कोकम के विशिष्ट जर्म प्लाज्म का राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण किया गया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा हासिल की गई है। अंडमान कोकम, जिसका वानस्पतिक नाम गार्सिनिया ट्राइविनिस है, एक सूक्ष्म स्थानिक अर्थात माइक्रो एंडेमिक प्रजाति है। यह पौधा केवल दक्षिण अंडमान द्वीप में पाया जाता है। वर्ष 1993 में इस प्रजाति की खोज के समय इन द्वीपों में इसका केवल एक ही पौधा अस्तित्व में होने की जानकारी सामने आई थी। इस दुर्लभ पौधे के संरक्षण और संवर्धन के लिए ICEAR कैरी के वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण प्रयास किए। संस्थान के शोधकर्ताओं ने अंडमान कोकम के विशिष्ट जर्म प्लाज्म का राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण कराया है। यह उपलब्धि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समृद्ध जैव विविधता और स्थानीय अनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे इस दुर्लभ प्रजाति की पहचान, संरक्षण और भविष्य में वैज्ञानिक उपयोग की संभावनाएं और मजबूत होंगी। अंडमान कोकम जैसे दुर्लभ स्थानीय प्रजातियां न केवल द्वीप समूह की प्राकृतिक धरोहर है, बल्कि जैव विविधता और वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से अंकित कुलश्रेष्ठ के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद।
3: एंड नाउ ओवर टू अगरतला, where a timeless blend of royal heritage, spiritual faith and social harmony has transformed old Agartala's Khairpur into a vibrant cultural hub. The grand 7-day Kharchi Puja and Mela began at the historic 14 Gods temple premises with a deep devotion and fanfare. Here is our special feature on this magnificent celebration.
4: The sacred rituals of Kharchi Puja officially commenced on the evening of July 21st at the Devghat of the Howrah River near the 14 Gods temple. Under the guidance of the head royal priest, the Chantai, the 14 metal idol deities underwent their traditional holy bath. The following day, Chief Minister Dr. Manik Shaha formally inaugurated the festival and fair at the historic Kanchanmala Manch by lighting the ceremonial lamp. Following the inauguration, the historic Haveli complex transformed into a glowing epicenter of cultural unity and royal heritage. Beyond the traditional worship of the 14 deities representing the forces of nature, this year's festival features a vital environmental mission embracing the nationwide campaign Ek Ped Maa Ke Naam. The chairman of the Mela committee highlighted the green initiative.
5: So, our theme is Ek Ped Maa Ke Naam. 1000 daily hum free of cost aadmi log ko dega, क्योंकि अगर इकोलॉजिकल बैलेंस अगर ठीक नहीं रहेगा तो सामने वाले दिन में हमारा पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा।
4: With tens of thousands of pilgrims flocking to Khairpur every day, the local administration has pulled out all the stops, robust security, organized traffic control, uninterrupted drinking water and round-the-clock healthcare services have been put in place to ensure a smooth experience for visitors. For 7 straight days, this confluence transcends religious boundaries, bringing people together through shopping, cultural exchanges and a shared appreciation of Tripura's rich history. For Parikrama, Shuman Bhattacharjee, Akashvani, Agartala.
3: Vishal, we all know that our president is on a state visit to North Macedonia and other countries. And as part of her historic state visit to North Macedonia, President Draupadi Murmu paid tribute to one of the country's most revered national heroes, Goce Delchev. The president laid a wreath at the grave of Goce Delchev at the Church of St. Spas in the capital Skopje. Delchev was remembered as a leading revolutionary who fought for the freedom and self-determination of the people of Macedonia.

0: Macedonia during the late 19th and early 20th centuries. We have more on this from our correspondent who is covering the visit.
1: Born in 1872, Gotse Delsev was a key leader of the Internal Macedonian Revolutionary Organization, which worked to end Ottoman rule in the region. He believed in the ideals of the freedom, equality, cooperation among different communities. Although he was killed in 1903 at the age of 31, his legacy continued to inspire generations, and he remained a symbol of Macedonian national movement. The wreath-laying ceremony by President Murmu reflected India's respect for North Macedonia's history and its national heroes. It also underscored the growing friendship between the two countries during the first ever state visit by an Indian president to North Macedonia. This is Subhashree Mahapatra from North Macedonia for Akashvani News.
2: और अब एक खबर झारखंड से, झारखंड के युवाओं के लिए, ऐसे युवाओं के लिए जो फिल्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल के तहत रांची में झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के माध्यम से फिल्म एवं डिजिटल मीडिया से जुड़े विभिन्न अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि इससे राज्य के युवाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, कौशल विकास और फिल्म उद्योग में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। कार्यक्रम के दौरान झारखंड के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित फिल्मकारों को भी सम्मानित किया गया। और अब चलते हैं खेल के मैदान में, जहां क्या कुछ हो रहा है जानने की कोशिश करते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं।
0: And coming to the business news, benchmark domestic equity indices ended around 0.5% lower today, extending their losing streak for the fourth consecutive session. The Sensex shed 364 points to close at 76,391. The Nifty lost 127 points to settle at 23,870.
2: और कार्यक्रम के हम उस हिस्से में आ पहुंचे हैं जब हम बात करते हैं उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है, या फिर आज के दिन जिनका जन्म हुआ था, या फिर आज जिनकी जयंती है। और सबसे पहला नाम हमारे सामने है बाल गंगाधर तिलक का।
0: यस विशाल, ही वाज अ पायनियरिंग फ्रीडम फाइटर, स्कॉलर एंड द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, द आर्किटेक्ट ऑफ आवर अवेकनिंग। थ्रू हिज फियरलेस जर्नलिज्म एंड रिवोल्यूशनरी स्लोगन स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट, he united millions, transformed India's independence movement and inspired generations to fight for liberty. And if we talk about the historical legacy and contributions,
2: जी, बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की अपने लेखों के माध्यम से, और केसरी में छपने वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल भी भेजा गया। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में एनी बेसेंट की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की थी, और होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफी प्रसिद्धि मिली, और जिसकी वजह से उन्हें लोकमान्य की उपाधि भी मिली। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत में स्वराज स्थापित करना। लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। उन्होंने जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाए जाने की भी शुरुआत की थी।
0: He was the one who transformed community event like गणेश उत्सव and शिवाजी जयंती into massive platforms for public unity and anti-British sentiment. And moving on, we also pay tribute to Chandrasekhar Azad on his birth anniversary today. The nation pays rich tribute to this revolutionary freedom fighter, honoring his indomitable courage, fierce patriotism and supreme sacrifice in India's independence movement. He was born in 1906 and famously declared his name as Azad when arrested as a teenager, vowing never to be captured alive by the British.
2: Nidar, nirbhik aur adamya sahasi krantikari Pandit Chandrasekhar Azad जीते जी कभी भी फिरंगियों के हाथ नहीं आए। और आजाद जी सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो ब्रिटिश हुकूमत के लिए

0: एक खौफ थे और उन्होंने ये प्रतिज्ञा भी ली थी कि जीते जी कभी भी फिरंगियों की पुलिस उन्हें छू तक नहीं पाएगी और उन्होंने इस प्रतिज्ञा को अपनी आखिरी सांस तक निभाया। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब वो पुलिस से घिर गए तो उन्होंने अकेले ही सामना किया और आखिरी गोली जब उनकी पिस्तौल में बची तो उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय खुद को गोली मार ली और भारत माँ की गोद में हमेशा के लिए सो गए।
1: Today, leaders and citizens across India are honoring this great hero of our freedom struggle, commemorating his immense contributions, keeping the flame of his sacrifice alive for future generations. And the next personality we pay tribute to is Captain Lakshmi Sehgal. It is her death anniversary today. We pay humble tributes to her. She was the commander of the Indian National Army's Rani of Jhansi Regiment and a tireless social reformer. She was known for her profound medical service and defense of marginalized communities. Her legacy continues to inspire generations of activists.
0: Ji, Netaji Subhash Chandra Bose ke saath Captain Lakshmi Sehgal ne kandhe se kandha milakar kai sarahaniya kaam kiye. Unko behad mushkil zimmedariyan bhi saunpi gayin aur unke kandhon par zimmedari thi ki fauj mein mahilaon ko bharti hone ke liye प्रेरणा देना और उनको भर्ती करना और लक्ष्मी सहगल ने इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम पहुंचाया और जिस जमाने में स्त्रियों का घर से निकलना भी एक बहुत ही अजीब अलग बात समझी जाती थी उस समय में उन्होंने 500 महिलाओं की एक फौज तैयार की जो एशिया में अपनी तरह की पहली विंग थी।
1: जी विशाल, शी प्रोवाइडेड मेडिकल रिलीफ एंड फॉट फॉर विक्टिम्स फॉलोइंग द 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड द 1984 एंटी सिख रायट्स एज वेल एंड इन 1998 शी वाज ऑनर्ड विद पद्म Vibhushan, and in 2002, she made history by becoming the first woman to contest the Indian presidential election.

0: और आज के दिन जन्म हुआ था ताराशंकर बंदोपाध्याय का, बांग्ला भाषा के जाने माने साहित्यकार। ताराशंकर बंदोपाध्याय का जन्म 23 जुलाई 1898 को बंगाल के बीरभूम के लाखपुर में हुआ था। ताराशंकर अपने समय के बांग्ला उपन्यासकारों में सबसे अधिक प्रसिद्ध रहे। उनके उपन्यास आरोग्य निकेतन और गणदेवता को पुरस्कृत किया जा चुका है। आरोग्य निकेतन पर 1956 में साहित्य अकादमी की ओर से और गणदेवता पर 1967 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे प्रादेशिक जीवन को बहुत ही व्यापक रूप से चित्रित करते रहे और इस काम में उन्हें महारत हासिल थी और इसीलिए वो लोकप्रिय भी थे।
1: And we, moving on, we pay tribute to a widely revered as the Keats of Punjab, Shiv Kumar Batalvi, known as the Birha Da Sultan, that is, King of Separation. His poignant verses about love, loss, and longing continue to shape Punjabi literature. He became the youngest recipient of the Sahitya Academy Award in 1967, and for his epic verse play, based on the ancient legend of Puran Bhagat or Luna in 1965, which is now considered a masterpiece in modern Punjabi literature and which also created a new genre of modern Punjabi kissa. And we have selected a song which was penned by him. I beg your pardon, the song is not there. But whom are we moving to?
0: Ji, Lakshmi Narayan Subramanyam, prasiddh Bharatiya violin vadak, sangeetkar. आज ही के दिन इनका जन्म हुआ 23 जुलाई 1947 को, और दक्षिण भारतीय और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत का कर्नाटक संगीत के साथ कुशल संयोजन के लिए इनको जाना जाता है।
1: जी, तो उनके वायलिन का एक हम थोड़ा सा एक्सर्प्ट
0: जरूर।

0: role, but right now we have a dialogue from another movie of his.
1: तुम मुझसे बचना चाहता था?
2: नहीं नहीं अमर, तुम्हें देखते ही गले से लग कर मिलना चाहता था, लेकिन तुम किसी बड़े आदमी के साथ बैठे थे, वो क्या सोचता? अमर का दोस्त एक वेटर, एक मामूली होटल बॉय,
1: बड़ा आदमी वो होगा, दोस्त के दिल को नहीं पहचानता यार।
2: पहचान लिया, मुझे माफ कर दे अमर यार।
3: जी, अपने बहुरंगी किरदारों से दर्शकों को हंसाने और गंभीर भूमिकाओं में रुलाने वाले महमूद अभिनय के प्रति बहुत समर्पित थे और अपने बहुमुखी अभिनय प्रतिभा और कला के प्रति समर्पण ने उन्हें बुलंदियां दी और फिल्म फेयर सहित कई पुरस्कार उनको दिए गए। और अब समय समाप्त हो रहा है कार्यक्रम परिक्रमा का, हमें यहीं दीजिए अनुमति। नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर श्री सैकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले दोपहर 12 बजे पहली बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग करने की अपील की।
5: वो बहाना जुड़ रहा, आज तो फिर कांग्रेस दोनों सदनों में शुरू में ही बोलता अपना कंडीशन है, मांग है, पहले पूरा करो तब चर्चा होगा। अरे मांग चर्चा के दौरान में भी तो आप बोल बोल के मांग रख सकते हैं। आप जब बोलेंगे डिबेट में तो आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं, तो डिबेट को कैसे रोक सकते हैं आप? वो चर्चा को ही रोकना चाहते हैं।
4: उधर राज्यसभा को भी नीट मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि देश में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। लोकसभा में आज लिखित उत्तर में श्री मनोहर लाल ने बताया कि जून 2026 तक देश की वर्तमान स्थापित उत्पादन क्षमता 548 गीगावाट से अधिक हो गई है। अप्रैल 2014 से लेकर अब तक लगभग 324.7 गीगावाट तक की नई उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है। इससे देश बिजली की कमी वाले राज्य से बिजली की पर्याप्तता वाले देश में बदल गया है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ने पश्चिम एशिया संघर्ष के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान तक पहुंचने के लिए संवाद और कूटनीति के माध्यम से बातचीत जारी रखने पर बल दिया है। राज्यसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने आज कहा कि सरकार ईरान सहित संघर्ष में शामिल पक्षों तथा अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकारों के साथ लगातार संपर्क में है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। मनीला में 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंस मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। श्री जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री सैयद बदर बिन हमद अल बुसैदी से भी मुलाकात की और खाड़ी क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल SIT ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड TDB के पूर्व अध्यक्ष PS प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व TDB अध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में जिम्बाब्वे ने भारत के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक छठे ओवर में 3 विकेट पर 21 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Both the Houses of Parliament have been adjourned for the day following the opposition protest over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to the opposition parties, particularly the Congress, to cooperate in holding a discussion on the NEET paper leak issue. He added that the government has already conveyed its willingness to hold a discussion on the issue in both houses as per the date and duration desired by the opposition. Mr. Rijiju appealed to the Congress party not to impose conditions, stating that such conditions may be seen as an attempt to avoid discussion. Union Minister and Leader of the House Jagat Prakash Nadda criticized the opposition, terming its conduct as highly irresponsible. He alleged that the opposition neither wants a discussion nor is willing to allow the House to function. Leader of the Opposition Mallikarjun Kharge demanded the resignation of the Union Education Minister, saying that without his resignation, the discussion will not happen. He said that Congress is not shying away from discussion. Prime Minister Narendra Modi announced that the centre will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks and asserted that protecting students' future remains the government's top priority. In a social media post, the Prime Minister said that nothing is more important than the welfare and future of the youth of the country. His statement comes amid ongoing student protest at Delhi's Jantar Mantar over the NEET paper leak case. The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to media, the minister said that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protests for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present during the dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind at the residence of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found. Union Minister Piyush Goyal today said that Prime Minister Narendra Modi has made it clear that the accused in the NEET paper leak cases will face severe punishment through fast-track courts. Speaking to the reporters at Parliament premises, Mr. Goyal said that the government will take many further steps in the matter to fulfill the hopes and expectations of the country's youth. Condemning the opposition stand of running away from discussion on this matter, the minister urged the leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, and other opposition parties to maintain peace and resolve the issue through discussion. India's call for zero tolerance against terrorism and reaffirmed its commitment to a free, open, inclusive and rules-based Indo-Pacific at the 33rd ASEAN Regional Forum ministerial meeting in Manila, the Philippines. Addressing the meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said this forum remains an important platform for discussing political and security issues in the Indo-Pacific, particularly at a time of growing global complexities. India has rejected Pakistan's remarks at the United Nations on the Indus Waters Treaty, saying it cannot be expected while cross-border terrorism is used as an instrument of state policy by Islamabad. India's permanent representative, Ambassador Parvathaneni Harish, responded at the UN Security Council after Pakistan accused New Delhi of weaponizing water by keeping the Indus Waters Treaty in abeyance. India has increasingly been viewed as a favorable investment

जी हाँ, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz। मैं हूँ रुचिका आपके साथ और वक्त हो गया है गाते गुनगुनाते का। तो चलिए फिलहाल आप तक पहुँचाते हैं ये खूबसूरत गीत और फिल्म है गजब। जी हाँ, गजब फिल्म से ये गीत आप सभी तक। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड।

ये गजब का खूबसूरत गीत आपने सुना लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, और फिल्म थी गजब, है ना। तो सुनते रहिए एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद गाते गुनगुनाते का सफर जारी रहेगा।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं सौम्या मिश्रा, लोक गायिका। मैं आप सभी को प्रसारण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूं। और हमारे यहाँ लोक संगीत में जब कुछ खुशहाली होती है तो दो लाइन उसके लिए सोहर गाते हैं, तो आइए मैं कुछ दो लाइन सोहर आप सबों के बीच सुना रही हूँ।

0: आप सभी को प्रसारण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड जारी है, गाते गुनगुनाते का सफर।
2: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना।

0: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ieefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
5: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
4: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
5: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
4: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

0: मणि दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप बने हुए हैं और फिलहाल वक्त हो चला है नॉर्थ ईस्ट डायरी का, तो आइए सुनते हैं।
1: न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी प्रेजेंट्स नॉर्थ ईस्ट डायरी।
2: गुड इवनिंग, वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरी, bringing you the latest developments of India's unexplored northeast region. Today, we take you on a spiritual tour of temples of Tripura. We will also get to know about the customs and culture of our tribe of the Nagas. But for now, let's go over to Mau Lik Nong in Meghalaya, which is home of the awe-inspiring Living Root Bridges.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीट पेपर लीक मामले पर फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने के निर्णय की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ये निर्णय युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया है।
1: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर श्री सैकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद पुनः शुरू होने पर विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे के कारण राज्यसभा को भी दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में डॉ. सिंह ने कहा कि रोड मैप के अनुसार मौजूदा 8.78 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता के 2031-32 तक लगभग 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती हुई घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी स्पर्धा के कारण लाभ कम हो गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में आज ठाणे, पालघर, नासिक और पुणे के घाट क्षेत्रों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरी कोंकण, दक्षिणी कोंकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में शनिवार तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। प्रशासन ने पुणे और कोंकण की ओर यात्रा करने वाले पर्यटकों से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में जिम्बाब्वे ने भारत के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 5 विकेट पर 108 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to media, the minister said that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present to the dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind at the residence of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found. Prime Minister Narendra Modi announced that the centre will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks and asserted that protecting students' future remains the government's top priority. In a social media post, the Prime Minister said that nothing is more important than the welfare and future of the youth of the country. His statement comes amid ongoing student protests at Delhi's Jantar Mantar over the NEET paper leak case. The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. Both the Houses of Parliament have been adjourned for the day following the opposition protest over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to the opposition parties, particularly the Congress, to cooperate in holding a discussion on the NEET paper leak issue. He added that the government has already conveyed its willingness to hold a discussion on the issue in both houses as per the date and duration desired by the opposition. Mr. Rijiju appealed to the Congress party not to impose conditions, stating that such conditions may be seen as an attempt to avoid discussion. Union Minister and Leader of the House, Jagat Prakash Nadda, criticised the opposition, terming its conduct as highly irresponsible. He alleged that the opposition neither wants a discussion nor is willing to allow the House to function. Leader of the opposition, Mallikarjun Kharge, demanded the resignation of the Union Education Minister, saying that without his resignation, the discussion will not happen. He said that Congress is not shying away from discussion. Delhi police has clarified that the powers of detention granted under the National Security Act, NSA, to the Delhi Police Commissioner is not new, as it is a routine extension or a renewal of powers. In a statement, the Delhi police said this order is issued every 3 months and the present renewal was issued on 7th of July for the period 19 July to 18th October this year. He said the renewal was issued well before the commencement of the students' protests. President Draupadi Murmu has arrived in Bucharest, Romania today on the final leg of a three-nation visit. After arrival at the Cotroceni Palace, President Murmu accorded a guard of honour. During her visit, she will hold delegation-level talks with her Romanian counterpart, Nico Șordan. Several MOUs will be signed after the talks. The President of Romania and the First Lady will host a state dinner in honour of President Murmu tonight. India Today stressed that international waterways must remain safe and unblocked and call for dialogue and diplomacy to end the West Asia conflict. Addressing the 21st East Asia Summit, EAS, in Manila, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that attacks on seafarers, civilian shipping or infrastructure cannot be condoned under any circumstance. The minister said that the global order is uncertain and volatile, where interdependence and common interest coexist with competitiveness and rivalries. He also highlighted that the world economy is reeling under the impact of multiple conflicts. Dr. Jaishankar underlined India's commitment to ASEAN centrality, regional stability, and the realization of a free, open, and prosperous Indo-Pacific. In badminton, Indian shuttler PV Sindhu's campaign at the China Open Super 1000 came to an end after she suffered a defeat against China's Chen Yufei in the women's singles round of 16. In men's cricket, Zimbabwe were 108 for 5 in 17 overs against India in the first T20 international of the three-match series in Harare when reports last came in. Earlier, India won the toss.

0: and elected to field. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आप सभी का स्वागत। मैं हूं विशाल शर्मा। श्रोताओं, 23 जुलाई का दिन भारतीय प्रसारण इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। आज ही के दिन वर्ष 1927 में भारत में संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी। उस समय शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि एक छोटे से रेडियो प्रसारण की शुरुआत आने वाले दशकों में दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रसारण नेटवर्कों में से एक का रूप ले लेगी। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि भारत में लोक सेवा प्रसारण की शुरुआत कैसे हुई, समय के साथ इसकी भूमिका किस तरह विकसित हुई, डिजिटल युग में ये किस प्रकार नए माध्यमों को अपना रहा है और लोकतंत्र तथा समाज के लिए इसकी उपयोगिता आज भी क्यों बनी हुई है। भारत में प्रसारण का इतिहास वास्तव में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना से भी पहले शुरू हो चुका था। देश का पहला रेडियो प्रसारण जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने किया था। इसके चार साल बाद 23 जुलाई 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन का उद्घाटन किया। यही दिन भारत में संगठित रेडियो प्रसारण की औपचारिक शुरुआत के रूप में जाना जाता है और इसी कारण 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के पहले प्रसारण से लेकर 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना तक ये घटनाएं भारत में सार्वजनिक प्रसारण की नींव रखने वाले महत्वपूर्ण पड़ाव थे। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। आने वाले वर्षों में रेडियो ने जिस तरह देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास के साथ कदम से कदम मिलाया, उसने इसे केवल संचार का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का सहभागी बना दिया। भारत में संगठित रेडियो प्रसारण की लगभग एक शताब्दी लंबी इस यात्रा पर डालते हैं एक नजर।
3: भारत में संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को हुई, जब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे यानी आज के मुंबई से नियमित रेडियो सेवा शुरू की। हालांकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी अधिक समय तक नहीं चल सकी और 1930 में इसका संचालन बंद हो गया। इसके बाद सरकार ने प्रसारण सेवाओं की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली और इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की शुरुआत की। यहीं से प्रसारण को एक व्यावसायिक गतिविधि के बजाय जनसेवा के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। वर्ष 1935 में ब्रिटिश प्रसारण विशेषज्ञ लाइनन फील्डन को भारत का पहला कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में प्रसारण सेवाओं के विस्तार और गुणवत्ता सुधार की दिशा में कई प्रयास हुए। इसके बाद 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। इसी दौर में रेडियो पर समाचार प्रसारण की भी शुरुआत हुई। 19 जनवरी 1936 को पहला समाचार बुलेटिन प्रसारित किया गया और 1937 में सेंट्रल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, जिसने आगे चलकर देश की समाचार व्यवस्था की मजबूत नींव रखी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय पूरे देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली और लखनऊ। उस समय रेडियो की पहुंच देश के केवल 2.5% भौगोलिक क्षेत्र और लगभग 11% जनसंख्या तक थी। लेकिन स्वतंत्र भारत ने रेडियो को राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना और इसके विस्तार को प्राथमिकता दी। 1956 में राष्ट्रीय प्रसारक के लिए आकाशवाणी नाम को औपचारिक रूप से अपनाया गया। इसके अगले ही वर्ष 1957 में विविध भारती सेवा शुरू की गई, जिसने फिल्म संगीत, हल्के फुल्के मनोरंजन और लोकप्रिय कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों श्रोताओं के दिलों में अपनी विशेष जगह बनाई। इसी दौर में प्रसारण का दायरा लगातार बढ़ता गया। 1959 में टेलीविजन सेवा की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो के ही एक भाग के रूप में हुई। बाद में 1976 में दूरदर्शन को अलग संस्था के रूप में स्थापित किया गया। इसके बाद 23 जुलाई 1977 को मद्रास यानी आज के चेन्नई से भारत की पहली FM सेवा शुरू हुई, जिसने रेडियो प्रसारण की गुणवत्ता और लोकप्रियता दोनों को नई ऊंचाई दी। तकनीक के विकास के साथ सार्वजनिक प्रसारण भी लगातार आधुनिक होता गया। 1988 में नेशनल चैनल शुरू किया गया, जिसने देश भर के श्रोताओं तक राष्ट्रीय कार्यक्रम पहुंचाए, और फिर 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती अस्तित्व में आया, जिसके तहत आकाशवाणी और दूरदर्शन को एक स्वायत्त सार्वजनिक प्रसारण संस्था के रूप में नया स्वरूप मिला।
2: लोक प्रसारण का अर्थ केवल समाचारों और कार्यक्रमों का प्रसारण नहीं है, इसका वास्तविक उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक हर परिस्थिति में विश्वसनीय संवाद पहुंचाना है। इस भावना को समझने के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज एक घटना याद आती है। वर्ष 1947, देश आजाद हो चुका था, लेकिन विभाजन का दर्द अभी भी ताजा था। लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी बड़ी संख्या में विस्थापित लोग राहत शिविरों में रह रहे थे। महात्मा गांधी स्वयं वहां जाकर उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। तब उन्होंने आकाशवाणी का सहारा लिया। 12 नवंबर 1947 को गांधी जी नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी स्टूडियो पहुंचे। ये उनके जीवन का पहला और एकमात्र स्टूडियो दौरा था। यहीं से उन्होंने कुरुक्षेत्र शिविर में रह रहे शरणार्थियों के नाम अपना संदेश किया। उन्होंने लोगों से धैर्य, शांति और आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील की। गांधी जी के इसी ऐतिहासिक प्रसारण की स्मृति में हर वर्ष 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। नई दिल्ली स्थित जिस स्टूडियो से गांधी जी ने अपना संदेश दिया था, उसे आज बापू स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। बदलते समय के साथ प्रसारण के माध्यम और तकनीक लगातार विकसित हुए हैं, लेकिन लोक सेवा प्रसारण का मूल उद्देश्य आज भी वही है, विश्वसनीय सूचना, जन जागरूकता और समाज के हर वर्ग तक पहुंच। हालांकि आज सूचना के अनेक स्रोत उपलब्ध हैं, फिर भी लोक प्रसारण की इसी विशिष्ट भूमिका और डिजिटल युग में इसकी प्रासंगिकता पर एक नजर।
3: आज सूचना तक पहुंच पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है। स्मार्टफोन और इंटरनेट के दौर में समाचार कुछ ही क्षणों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सूचना की इस गति के साथ एक बड़ी चुनौती भी सामने आई है, सत्य और असत्य के बीच अंतर करना। ऐसे समय में लोक सेवा प्रसारण की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल सबसे पहले सूचना देना नहीं, बल्कि प्रामाणिक, संतुलित और जनहित से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे प्रसारण माध्यम किसी विशेष वर्ग या बाजार के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए कार्य करते हैं। उनका मूल उद्देश्य है सूचित करना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना, ताकि नागरिक बेहतर निर्णय ले सके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा सके। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में ये भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आकाशवाणी आज 23 भाषाओं और 179 बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करती है। इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों, भाषाई समूहों और जनजातीय समुदायों तक उनकी अपनी भाषा में सूचना पहुंचती है। ये केवल संचार नहीं, बल्कि भाषाई और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। आज जब सोशल मीडिया पर अपुष्ट सूचनाएं और भ्रामक सामग्री तेजी से फैलती है, तब तथ्यों की पुष्टि, संपादकीय उत्तरदायित्व और विश्वसनीय पत्रकारिता का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। यही वह आधार है जिसने सार्वजनिक प्रसारण को लगभग एक शताब्दी तक लोगों का भरोसेमंद साथी बनाए रखा है। रेडियो प्रसारण की शुरुआत जिस दौर में हुई थी, उस समय सूचना का सबसे प्रभावी माध्यम रेडियो ही था, लेकिन पिछले दो दशकों में संचार की दुनिया में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आज आकाशवाणी केवल रेडियो सेट तक सीमित नहीं है, न्यूज ऑन AIR ऐप और डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश विदेश में रहने वाले श्रोता अपने मोबाइल फोन पर आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों का सीधा प्रसारण सुन सकते हैं। पॉडकास्ट, ऑन डिमांड ऑडियो, यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी समाचार, समसामयिक कार्यक्रम, चर्चाएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच रही हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
2: 23 जुलाई 1927 को संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत से लेकर आज के डिजिटल युग तक लोक प्रसारण ने समय के साथ स्वयं को लगातार बदला है। 6 रेडियो स्टेशनों से शुरू हुई ये यात्रा आज 470 प्रसारण केंद्रों, 23 भाषाओं, 179 बोलियों, देश की 99.19% आबादी और लगभग 92% भौगोलिक क्षेत्र तक पहुँचने वाले विशाल नेटवर्क का रूप ले चुकी है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हमें केवल इस गौरवशाली विरासत जरूरत का स्मरण नहीं कराता, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि बदलती तकनीक के बीच भी लोक सेवा प्रसारण का मूल उद्देश्य वही है, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सिद्धार्थ सिंह। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार निखिल।
1: और सबसे पहले आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: थैंक यू निखिल। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज डिक्लाइन फॉर फोर्थ स्ट्रेट सेशन। सेंसेक्स फॉल्स ओवर 350 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स एट 23,870। Most Asian stock market indices close in positive zone and global crude oil prices rise around 5%.
1: घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 350 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 23,870 अंक पर बंद हुआ। अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में आज सकारात्मक रुख देखा गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 5% तक ऊपर चढ़े।

0: तो क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि निवेशक अब इस तरफ पैसा लगाने से बच रहे, जोखिम उठाने से बच रहे, या दूसरे जो कारण है वो इसमें ज्यादा अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहे, जैसे बिकवाली की जब हम बात करते हैं?
1: नहीं निखिल, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ऐसे दिनों पे जब जब भी बाजार गिरती है तो ये जिसको हम कहते हैं ये हमेशा एक ये ट्रेंड भी है। आप देखेंगे कि स्मॉल कैप और मिड कैप्स में जो गिरावट वो कहीं ना कहीं हमेशा ज़्यादा होती है लार्ज कैप्स के बनस्पत। दूसरी बात, पिछले एक डेढ़ साल की जो अनिश्चितता बनी हुई है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं थोड़ा लोगों ने अप जो है लार्ज कैप्स की तरफ या जो उनको लगता है थोड़ा ज़्यादा डिफेंसिव स्टॉक्स हैं तो थोड़ा शायद निवेशक उस तरफ ज़्यादा गया है। हालांकि मैं उसको कहीं से भी इस तरह से नहीं मानता हूं कि बाज़ार में निवेशकों का जो है उनका भरोसा कम हुआ हो या टूटा हो। मुझे लगता है वो कम्प्लीटली इंटैक्ट है। हाँ, ये इस तरह के जो इवेंट्स हो रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी पे एक डायरेक्ट कह लें या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, चाहे महंगाई पे हो, चाहे हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी उसकी रफ्तार है, गति है, ग्रोथ, तो उस पे इम्पैक्ट होगा। तो शायद कहीं ना कहीं वही बाज़ार में हमको इस हफ्ते दिख रही है।
0: लेकिन इसमें एक दूसरी बात ये भी कि पिछले सप्ताह बाजार ने काफ़ी मजबूती दिखाई थी, इस हफ्ते वो मजबूती हमें दिखाई नहीं दे रही। जबकि अगर एक हम रेंज लेकर के चलते हैं तो वैश्विक घटनाओं की रेंज लगभग उसी प्रकार से, लेकिन निवेशकों का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं कम होता दिखाई दे रहा है।
1: नहीं निखिल, आपका बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन उसके पीछे आप ये देखेंगे कि शायद जो आपने देखा कि लास्ट वीक फिर भी मार्केट सस्टेन कर रहे थे स्थिति, तो शायद कहीं ना कहीं एक बाजार को भरोसा था कि शायद ये जो अमेरिका और ईरान के बीच जो दोबारा जो ये लड़ाई शुरू हो गई है, शायद कहीं ना कहीं वो ज़्यादा दिन ना चले और दोबारा दोनों बातचीत शुरू हो और किसी तरह का कोई पीस टॉक्स हो और उस कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई ट्रूस हो जाए। और तो शायद चूंकि इस समय आप देखेंगे पिछले 4-5 दिन से लगातार अमेरिका के जो हमले हैं 8-9 दिन हो गए हैं वो बने हुए हैं, और अभी जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उन्होंने बल्कि ये वार्निंग दी है कि अब वो जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो जो बिजली संयंत्र हों या चाहे उनके ब्रिजेज हों या पुल हों, तो उन पे भी अटैक करेंगे अगर ईरान अब जो है अटैक करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो जहाज़ हैं जो तेल लेके वहाँ से निकल रहे हैं। उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपने जो ईरान सपोर्टेड हूती रिबल्स हैं उन्होंने जो रेड सी का रूट है जो कि अभी तक हमारे लिए सबके लिए एक जो अल्टरनेट सप्लाईज का एक रूट बना हुआ था उसको अब उन्होंने उस पर भी उन्होंने जो है रोक लगाई, बल्कि दो जहाज़ों पे अटैक भी किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाजार में इन इन जो नए ये इवेंट्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं दबाव दिख रहा है।
2: बट सिद्धार्थ, एज यू वेरी राइटली सेड दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स द इंडियन स्टोरी द ग्रोथ स्टोरी इज स्टिल intact, and you know, in fact, that is what is being has been mentioned in the RBI's state of the economy bulletin, that July bulletin. And as you were saying, that you know, the FIIs are making a comeback, have made a comeback into the Indian economy. So that overall, if you know, you look at it, it's a very good news because, as the RBI bulletin says, that the healthy domestic demand and resilient industrial and services sectors have helped sustain economic momentum despite challenges arising from fragile geopolitics and supply chain pressures. And as you were mentioning, foreign portfolio investors infused $3.1 billion into equity and debt markets in July up to the 20th of this month, while foreign direct investment remained higher during April and May this year. So overall, like we are discussing, that it's the trust of not just FIIs, the domestic investors as well as FIIs is still intact, and you know, in the Indian story.
1: As Anubha, as you rightly said, it is not only the FIIs, as you also mentioned that figure. In April, May, the FDI inflows have also, it's almost at a record level of about $6 billion.
2: Yeah.
1: And we are expecting a net FDI in the current financial year of upwards of around $15 billion, which is, I think, after 4 years, we are seeing that kind of number or FDI inflow into the country, and especially at a time when things are so uncertain. And as the RBI report also mentions about the heightened global economic uncertainty, also supply bottlenecks. But despite all that, if you look at, they have mentioned in the report the demand, as which whether it is in the urban areas or in the rural areas, and if you look at the GST data, the digital payments data, So everything is positive. The industrial, India's industrial sector or the services sector continue to be to record a robust growth. And the only concern is on the food side.
2: The yes, kharif the
1: sowing
2: inflation.
1: Has been a little delayed because of the monsoon. Onset of monsoon was a little delayed. But they are also a big for us, a big I would say a caveat for us is that we have huge stocks of food grains.
2: Right.
1: So there is nothing to worry, especially the rice, wheat, the essential items. Plus, government has also been kind of procuring the essential vegetables also to, you know, ward off any such eventuality. So I see, I do not see in terms of our own domestic parameters, macroeconomic, everything is positive. And if you look at the worst of projections for our current financial year GDP, India would definitely be the fastest growing economy.
2: Yes.
1: And all the projections are all are upwards of 6.5%. So, and if you look at the even the first 3 months of export data, so even there we are seeing a 16% growth. So I do not see anything to worry in terms of our own domestic challenges. Right. Yes, inflation could be a concern in terms of obviously oil, high oil prices feeding in. So, but that also till now, the last data we have seen 4.4%, I think that also is within the band.
2: Yes.
1: So,
0: तो सिद्धार्थ, इसी रिपोर्ट से जुड़ा एक छोटा सा मेरा सवाल ये है कि हम ये देख रहे हैं कि लगातार विदेशी निवेश को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इस दिशा में देश को सफलता भी मिल रही है. तो क्या ये कि ये बड़ा कारण है कि बैलेंस बनाने में हम कामयाब हो पा रहे हैं, खासतौर पर अपनी इकोनॉमी को एक स्टेबल प्लेस देने के मामले में?
1: नहीं, देखिए निखिल, जब आपने देखा होगा जब वेस्ट एशिया क्राइसिस हुई तो कहीं ना कहीं हमारे, चूंकि हम बड़े पैमाने पे ऑयल और गैस इंपोर्ट करते हैं और हमारा ऑयल गैस का बिल बहुत बड़ा और इसका पेमेंट चूंकि हम डॉलर में करते हैं तो जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व तकरीबन 700 बिलियन डॉलर, तो वो ही एक बड़ा कारण था कि जिससे किसी तरह का जो हमारे रुपये पर प्रेशर जरूर आया करेंसी पर, चूँकि हम डॉलर में पेमेंट करते हैं. लेकिन जो आपने सवाल पूछा उसके लिए सरकार ने इमीडिएटली स्टेप्स लिए. एक तो ये इंश्योर किया कि कहीं भी देश में जो पेट्रोल पदार्थ हैं, चाहे वो ऑयल हो या पेट्रोल हो, डीजल हो या गैस की जो सप्लाई है, उन पे इम्पैक्ट ना हो, तुरंत सरकार ने तत्काल कदम उठाए और उस पूरी स्थिति पे नियंत्रण रखा. और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि एक जो इम्पोर्टेंट स्टेप दूसरा लिया जो फर्टिलाइजर को लेके था, ताकि हमारा जो खरीफ की जो सोइंग थी उस पर इम्पैक्ट नहीं हो. एक तो हमारे पास फर्टिलाइजर के बहुत अच्छे भंडार थे, साथ ही सरकार ने तुरंत जो भी इम्पोर्ट, बहुत हाई प्राइस पे हमने इम्पोर्ट किया लेकिन हमने किया. तो और जो आपका सवाल है कैसे जो जो निवेश आ रहा है, जो FDI, FPI और उसके साथ साथ एक और अच्छी, हम लोगों ने अभी ने FDI की बात की, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात की, दोनों में हमें एक पॉजिटिव इनफ्लो दिख रहा है. उसके साथ साथ एक कल एक और RBI ने आंकड़ा, जो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट्स के लिए जो डिपॉजिट की स्कीम सरकार ने अनाउंस की थी, चूँकि हमारे ऊपर कहीं ना कहीं जो फॉरेन एक्सचेंज पे जो प्रेशर था उसको भी, उसका भी तकरीबन अभी तक $20 बिलियन कल जो डेटा आया उसमें हमें आ चुका है.
2: जी,
0: आगे बढ़ते हैं. इंफोसिस लिमिटेड ने आज इस वित्त वर्ष में अपनी पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम जारी किए हैं. कंपनी के राजस्व में वार्षिक आधार पर अपनी परिचालन गतिविधियों में 14% की बढ़त के साथ 48,211 करोड़ रुपए की बढ़त दर्ज हुई है. इस कंपनी का कुल लाभ 12.2% बढ़कर 7,769 करोड़ रुपए हो गया है.
2: Interglobe Aviation Limited today reported its financial results for the first quarter of the current financial year. The company's standalone revenue from operations rose nearly 20% year-on-year to 24,584 crore rupees. The company reported a standalone net loss of 381.5 crore rupees as compared with net profit of 2,161 crore rupees in the corresponding quarter of the previous financial year.
0: भारत की स्थिर आर्थिक वृद्धि, बाजार के बढ़ते अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य राष्ट्र के रूप में देख रही हैं. यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है. भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी स्पर्धा के कारण लाभ कम हुआ है, वहीं भारत दीर्घकालिक विकास के अवसर प्रदान करता है. रिपोर्ट में भारत के विशाल उपभोक्ता आधार, कुशल कार्यबल, बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, बेहतर अवसंरचना और व्यापार अनुकूल सुधारों को निवेश को बढ़ावा देने के प्रमुख कारकों के रूप में बताया गया है. तो सिद्धार्थ, जैसा कि हम बात कर रहे थे निवेश को आकर्षित करने के तमाम प्रयास किए जा रहे, यूरोप की बात करें तो सरकार का काफी फोकस है उधर.
1: नहीं, ना केवल यूरोप, जैसे आप देखा होगा जब से पिछले एक साल में आप देखेंगे तो कई सारे हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर डाले, हमने अपने एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ावा दें या दूसरे कंट्री से कैसे हमारे यहाँ जो है निवेश आए।

0: मैन्युफैक्चरिंग में आए तो हमने उसके लिए पीएलआई स्कीम्स जैसे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए। तो आप देख भी रहे होंगे कि खासकर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में या सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में, मोबाइल में आज हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की जो लगातार जो कोशिश है कैसे हिंदुस्तान में किसी भी बिज़नेस करने वाले को निवेश करने से लेके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे उसको हैंड होल्ड किया जाए, कैसे कि किसी भी तरह से उसको किसी भी स्टेज पे कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए। और उस यही वजह है कि आप देख रहे हैं जो आप जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया कि आज हम एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नॉट ओनली एज फॉर कैपिटल बट ऑल्सो फॉर मैन्युफैक्चरिंग।
1: जी, एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज सकारात्मक रुख देखा गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 4.4% चढ़ा, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.3% ऊपर आ गया, जापान के निक्केई में लगभग 0.5% की तेजी आई, चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.2% से ज्यादा का उछाल आया और ताइवान के ताइएक्स में मामूली बढ़त देखी गई। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% से अधिक नीचे आ गया। यूरोप की बात करें तो यूरोप के प्रमुख सूचकांक आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा जानकारी मिलने तक फ्रांस का कैक 40 1.1% से ज्यादा नुकसान में रहा, जर्मनी का डैक्स 0.6% नीचे आ गया और लंदन का फुटसी 100 0.1% नीचे आ गया। सिद्धार्थ, दोनों बाजार की अगर बात करें तो जहां एक और एशियाई बाजार हरे भरे दिखाई दिए, वहीं यूरोपीय बाजार लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। एक ही दिन में दोनों मतलब रीजन में इतना बड़ा फर्क कैसे है?
0: नहीं, देखिए एशियाई बाजार जहां तक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा निवेश हो रहा है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं जो एशियन बाजार खासकर कॉस्पी वगैरह में, जहाँ की जो कि खासकर दो कंपनियां जो चिप मेकर्स हैं, तो उसकी वजह से आपको वहां पे जो है इतना एक बॉयंसी दिख रही है। साथ साथ जो यूरोपियन मार्केट्स की बात है, जहाँ तक आज वो नेगेटिव में है क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन थी कि वहाँ पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं निराशा है।
2: सिंस यू आर मेंशनिंग द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, आई विल हैव टू, यू नो, आई जस्ट let our listeners know that the European Central Bank has, you know, come out with this decision, and the ECB left interest rates unchanged at 2.25% today. The ECB said it was closely monitoring the intensity and duration of the energy shock due to Middle East conflict, as well as its indirect and second round effects. So, Siddharth, I'll get back to you. Like we were discussing, as expected, ECB has left its, you know, rates unchanged, the key policy rates unchanged. But we have another central bank meeting coming up next week, which is the US Fed on the 28th and 29th of July. What are your expectations? Are we going to see a similar kind of reaction, you know, result or decision from the US Fed as well?
0: Anubha, I think there is a kind of wait and watch by all the central banks. So I think I see the US Fed also taking a similar line like the European Central Bank. I think it would be more of a data driven, and the last inflation data was not so negative as far as United States is concerned. So I think they will also wait and watch and it would be data driven, and I do not see US Fed increasing rates in the coming meeting. And though there is an expectation that sometime in this year, both for Europe, yes. Europe obviously the expectation is around September, but in for United States the expectation is around December. Before December there would be a rate hike, and the new thing which is now with the new governor here with Christine Lagarde or Kevin Warsh in United States, that the future guidance, they're not giving out any future guidance, they're just being they will act as per the data driven. It's all going to be data driven.
2: Yeah, and you like you said, you know, the ECB is also said that it is monitoring, closely monitoring the intensity and duration of what is called the energy shock. So obviously it's all around the world, you know, what, whether it's the central banks, whether it's the major economies, minor economies, everybody, everything is hinging around the so-called energy shock now.
0: Yeah, Anubhav, if you look at Japan, they are also having this impact, yes. Inflationary impact. They are also struggling with their the pressure on the currency. The yen has been depreciating. So, and the same is with United States also. There is pressure on inflation. And same is with the central bank, because they are all largely importers except United States. Yeah. So even Japan, United. So I think that pressure of inflation and this renewed conflict again in West Asia. So, and how long it goes and what kind of impact it has, so that I think only we would come to know as things go ahead.
2: Now let's take a look at the US markets yesterday. Major US indices ended with losses yesterday amid rise in crude oil prices. The Nasdaq Composite Index fell nearly 0.6%, the S&P 500 dropped over 0.1%, and the Dow Jones Industrial Average closed flat with a negative bias. A very quick comment from you, Siddhartha, on the US markets. Is it also to do with their quarterly results which are coming up and probably not up to expectations?
0: Also quarterly results, and what is an advantage for the Asian market, where the markets are going up because of the investments in the artificial intelligence sector. The negative side in the United States market is that investors feel that it might take longer for them for their returns to come in.
2: Okay, let's move on to the commodities. Global crude oil prices surged today. Brent crude was trading almost 4.9% up at $98.67 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading over 4.4% up at $90.70 per barrel when reports last came in. Let's also have a look at the gold and silver prices in the Indian bullion market. 24 karat gold was trading 1.2% down at 1,44,610 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.1% down at 2,22,790 rupees per kilogram a short while ago.
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 1.2% गिरकर 1,43,951 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी करीब 2% नीचे आकर 2,22,570 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। सिद्धार्थ, कारोबारी सप्ताह की बात करें तो कल अंतिम दिन होगा और आज चौथा दिन था जब लगातार हमने गिरावट का रुख देखा है। पिछले सप्ताह के मुकाबले भी सुस्ती देखी गई। अब क्या लगता है कि आने वाले सप्ताह के लिए निवेशकों को किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए, किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए, खासतौर पर ऑयल्स के दाम पर या फिर जो दुनिया भर में तमाम अनिश्चित राजनीतिक की अनिश्चित घटनाएं हो रही हैं उन पर, या फिर और भी कोई भू राजनीतिक कारण हो सकते हैं?
0: नहीं, मुझे लगता है निखिल, सीधी सी बात है, एक जो अमेरिका और ईरान का के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका क्या होता है, क्योंकि उसी का सीधा इम्पैक्ट है जो आपने बोला क्रूड ऑयल प्राइजेस पे। तो मुझे लगता है जो एक बड़ा चीज़ जो निवेशकों को की नज़र होगी या मार्केट की चाल वही डिसाइड करेगा, वो होगा कि US और ईरान के बीच जो लड़ाई चल रही है और उसका क्या होता है आने वाले दिनों में।
2: Siddharth, I'll come back to the prices of the gold and silver prices, you know, especially gold prices. We see that fallen a little bit, you know.
0: And Anubha, I would also add one more thing here.
2: Sure.
0: To the Nikhil ke jo sawal tha, Q1 results hamare achhe aaye hain. अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, उसके बावजूद हम बाजार में गिरावट देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो सबसे बड़ा निवेशकों के मन में या बाजार में जो इम्पैक्ट है वो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है और वो उसका भविष्य में क्या होगा।
2: जी, अ वेरी शॉर्ट ब्रीफ कॉमेंट फ्रॉम यू ऑन द गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस, बिकॉज आर वी सीइंग द फॉलिंग इन प्राइस बिकॉज ऑफ द हाई US बॉन्ड ट्रेजरी यील्ड्स एंड बिकॉज ऑफ अ फर्मर डॉलर?
0: Very actually, you have answered your question also has the answer. It's basically because we are seeing the earlier the conventional rule has been broken this time.
2: Yeah.
0: Each time there is uncertainty, gold prices used to go up, but this time because it is the US dollar and the US treasury yields and the fear of inflation, so that is driving people away from gold.
1: सिद्धार्थ, जिस कार्यक्रम में शामिल होने और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप दोनों को भी धन्यवाद।
2: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन फॉर फोर्थ स्ट्रेट सेशन। सेंसेक्स फॉल्स ओवर 350 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स एट 23,870। मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस क्लोज इन पॉजिटिव जोन। And global crude oil prices rise around 5%. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो स्वयं बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को भंग करने के लिए जिम्मेदार लोगों को शीघ्रता से दंडित किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद पुनः शुरू होने पर विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे के कारण राज्यसभा को भी दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने आज बताया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए कुल 1000 तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि विदेश मंत्रालय स्वयं के खर्च पर यात्रियों को परिवहन, आवास, भोजन, चिकित्सा परीक्षण, मार्गदर्शन आदि जैसी सेवाएं प्रदान करता है। सिक्किम में नामची जिले के समरदुंग में एनएचपीसी तीस्ता जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे सभी 25 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही 4 दिन के बाद बचाव अभियान समाप्त हो गया। सिक्किम सरकार ने इस दुखद घटना के कारणों का पता लगाने के लिए 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। ये कदम विशेष रूप से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में व्यापक अनियमितताओं का पता चलने के बाद उठाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोटरोसेनी पैलेस में राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकुसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। इस दौरान कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ कम हो गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में आज ठाणे, पालघर, नासिक और पुणे के घाट क्षेत्रों के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरी कोंकण, दक्षिणी कोंकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में शनिवार तक तेज बारिश की संभावना है। प्रशासन ने पुणे और कोंकण की ओर यात्रा करने वाले पर्यटकों से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में जिम्बाब्वे ने भारत को 126 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to media, the minister said that

0: इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत प्रभुदयाल, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: अम्बेसडर दयाल, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मेरा पहला सवाल ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने तीन देशों के दौरे के आखिरी चरण में आज से रोमानिया की दो दिन की यात्रा पर हैं। तीन दशकों से ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की बुखारेस्ट की इस पहली यात्रा का क्या महत्व है?
2: जी, जैसा आपने खुद कहा कि तीन दशक गुजर चुके हैं कि भारत के कोई राष्ट्रपति रोमानिया के दौरे पे जाए। पिछला दौरा हुआ था 1994 में, जब प्रेसिडेंट पंडित शंकर दयाल शर्मा जी वहां पर एक स्टेट विजिट पे गए थे, और इतना अच्छा गुजर गया है तो अब हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका वहां जाना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे दोनों देशों की जो एक ब्रॉड स्ट्रेटेजिक आउटरीच है उसमें हमारा सम्मेलन हो रहा है। देखिए, भारत की आउटरीच सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है, और राष्ट्रपति जी मोल्डोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया के दौरे पे भी गए। इसके अलावा देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इकोनॉमिक और सेक्टरल कोऑपरेशन। इससे जो भारत के यूरोपियन यूनियन के साथ जो संबंध है इंडिया ईयू फ्रेट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, इनमें बहुत बढ़ाव होगा, इसको बहुत ज्यादा उससे अच्छे एक संस्करण मिलेंगे। तो जो राष्ट्रपति जी हैं वो इंडिया रोमानिया बिजनेस फोरम को एड्रेस करेंगे। क्या मतलब कि कल्चरल टाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मेरे विचार में ये जो कल्चरल टाइज को बढ़ावा मिलेगा ये बहुत महत्वपूर्ण।
1: जी, अभी आपने जैसा कहा अम्बेसडर दया कि अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू इंडिया रोमानिया बिजनेस कार्यक्रम को संबोधित करेंगी, तो दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं?
2: मेरे विचार में जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं कोऑपरेशन के लिए वो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी, तीसरा डिफेंस, और चौथा रिन्यूएबल एनर्जी और साइंस। देखिए, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत जो है उसने काफी अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, जैसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब जो रोमानिया में हमारे जॉइंट वेंचर्स हैं वो हमें ऐसे एक स्थिति में पहुंचा सकते हैं कि रोमानिया हमारे लिए एक ईयू के लिए गेटवे साबित।
1: जी,
2: इसके अलावा जैसे मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की, देखिए इस क्षेत्र में जो कोऑपरेशन है उसको आगे बढ़ाने की बहुत संभावना है। इसके अलावा डिफेंस में देखिए, जॉइंट एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग, एक्सपर्ट एक्सचेंजेस, ये ऐसी चीजें हैं जिनमें हम बहुत पूर्ण रूप से हम समझते हैं और उस पर बहुत हम एम्फेसिस देते हैं।
1: जी, रोमानिया एक प्रमुख रीजनल टेक और आईटी आउटसोर्सिंग हब है, ये कम लागत वाला एक मैन्युफैक्चरिंग बेस भी है और ईयू में कृषि उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादक भी है। तो अगर हम इन तीनों क्षेत्रों को देखें इससे भारतीय व्यवसायों को कैसे फायदा हो सकता है?
2: देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, रोमानिया हमारे लिए एक ईयू के लिए गेटवे की तरह साबित होता है, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग में, और एक बहुत एडवांस्ड हब जो टेक इनोवेशन के क्षेत्र में, और पार्टनर हमारे लिए एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, इन सब क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें इनकी अहमियत बहुत है। अब जैसे रोमानिया में कुछ प्रोडक्शन बेसिस लगाकर जो भारत की फर्म्स हैं उन्होंने कुछ क्षेत्रों में जैसे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में जो हाई टैरिफ्स हैं वो हम उनसे बच सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो रोमानिया है वो 16% कॉर्पोरेट टैक्स हमको देता है, बड़ा कंपेटिटिव है, और जीरो टैक्स देता है री इन्वेस्टेड प्रॉफिट्स पे। अब जहां तक टैक्स सेक्टर की बात है, देखिए रोमानिया में जो टेक सेक्टर है वो भारत की कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, स्मार्ट सिटीज बनाने में और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, और रोमानिया के पास एक अच्छी वर्कफोर्स है, स्किल्ड कॉस्ट इफेक्टिव इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वर्कफोर्स है जो हमारी टेक फर्म्स के साथ कोऑपरेट करके दोनों का फायदा कर सकते हैं। अब आपने बात की एग्रीकल्चरल फूड टेक्नोलॉजी टाइज की, देखिए रोमानिया जो है वो एक बहुत स्पेशलिस्ट है मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर में, एग्री इंजीनियरिंग में और फूड प्रोसेसिंग जो उसकी टेक्नोलॉजीज है, तो इन सब से भारत को फायदा होता है कि हम अपनी भी जो कैपेसिटी है बढ़ा सकते हैं। सप्लाई चेन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जो बायलैटरल ट्रेड है इसको रोमेनिया के सरप्लस प्रोडक्शन से फायदा उठाते हुए, जैसे कुछ क्रॉप्स हैं, सीड ऑयल्स हैं, इन सब में मिलके हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉरिडोर्स बना सकते हैं।
1: जी, रोमेनिया यूरोप का एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन हब भी है और पश्चिमी यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला एक अहम ट्रांसिट पॉइंट है। बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी एक जरूरी पहलू है, तो ऐसे में यूरोप में अपनी मौजूदगी बढ़ाने और व्यापार और निवेश के नए मौके बनाने की कोशिश कर रहे भारतीय बिजनेसेस के लिए बुखारेस्ट का क्या महत्व है?
2: जो रोमेनिया है वो एक स्ट्रेटेजिक गेटवे भारत की बिजनेसेस के लिए है। जो यूरोप में कंज्यूमर्स की संख्या है वो 450 मिलियन से ज्यादा है, तो अगर रोमेनिया के थ्रू हमको एंट्री मिलती है तो हमारा बहुत फायदा है। देखिए, रोमेनिया के पास जो ब्लैक सी में सबसे बड़ा पोर्ट
1: जी,
2: उसके अलावा जो रोमेनिया के पास लो कॉस्ट फ्रेट इनलैंड कॉरिडोर है डैन्यूब रिवर की वजह से, डैन्यूब रिवर से जो सामान है वो जल्दी पहुंच सकता है सेंट्रल यूरोप और साथ ही साथ कम दाम में। इसी वजह से जो रोमेनिया के पोर्ट है ये नॉर्थ यूरोपियन पोर्ट्स के जो क्राउडेड हैं उसमें चार्जेस भी ज्यादा हैं, उसमें शिप्स की संख्या ज्यादा है, इस वजह से ये जो रोमेनिया का पोर्ट है ये हमको एक कॉस्ट और टैलेंट एडवांटेज देता है। और साथ ही साथ देखिए, जो मल्टीलिंगुअल आईटी और इंजीनियरिंग वर्कफोर्स है रोमेनिया के पास, उससे हमारी कंपनीज को बहुत सहायता मिल सकती
1: है। रोमेनिया यूरोपीय संघ का एक सदस्य है और भारत और ईयू ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को जो एक समझौता हो चुका है हमारा, तो इस भारत ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को और मजबूत करने में रोमेनिया की क्या भूमिका हो सकती है, कितनी अहम भूमिका रहेगी?
2: मैं तो ये कहूंगा कि रोमेनिया एक ऑपरेशनल कैटलिस्ट का काम कर सकता है
1: जी,
2: इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के संदर्भ में, क्योंकि रोमेनिया की जो पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल पोजिशनिंग है ब्लैक सी पे, ये बहुत हमारे लिए एडवांटेजेस हो सकती है जो ईस्टर्न यूरोपियन मार्केट है उसको एक्सेस करने के लिए। तो इस तरह से एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के हमारी कंपनीज के लिए रोमेनिया हमारी सहायता कर सकता है लोकलाइज प्रोडक्शन बढ़ाने में जो यूरोपियन सप्लाई चेन में इंटीग्रेट हो सकता है। तो मेरे विचार में ये जो बुखारेस्ट को हम उसके साथ जो हम कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम ये सोचते हैं कि बुखारेस्ट रोमेनिया हमारी सहायता कर सकता है इंडस्ट्रियल अलाइनमेंट में और रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन में सम की सेक्टर्स में, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, इन सब में जो रोमेनिया के पास एक स्किल बेस्ड लेबर पार्टनरशिप वो हमारे साथ काम करके जो वहां के हम लोगों को इस्तेमाल करके वहां के स्किल्ड प्रोफेशनल को इस्तेमाल करके अपने जो कंपनीज हैं उनके बेसिस वहां लगा के बहुत ये जो रिलेशनशिप को हम आगे बढ़ा सकते।
1: भारत और रोमेनिया की जो संबंधों की बात हो रही है तो 3 T's की बात हो रही है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म। हमने ट्रेड की बात की, हमने टेक्नोलॉजी की बात की, राष्ट्रपति मुर्मू की रोमानिया यात्रा दोनों देशों के टूरिज्म सेक्टर को कैसे बढ़ावा दे सकती है?
2: राष्ट्रपति मुर्मू जी की जो ये विजिट है रोमानिया की, ये टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि ये पीपल टू पीपल रिलेशंस है वो इसकी वजह से बहुत प्रोत्साहित हो सकते। देखिये, कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे, इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स होंगी, इससे कुछ जैसे वीजा रिस्ट्रिक्शंस है वो ईज होते हैं। तो मेरे विचार में ये जो इंटर कनेक्शन है हमारा एक दूसरे के बारे में जानने के लिए, एक दूसरे के जो कल्चर्स हैं उनको समझने के लिए, इसकी वजह से ये पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस बढ़ेंगे और टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।
1: रोमेनिया ने मोल्दोवा और नॉर्थ मैसिडोनिया के साथ मिलकर पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम के आतंकी हमले की निंदा की थी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अपना मजबूत समर्थन दिया था। वैश्विक स्तर पर नई दिल्ली के लिए ये जो आतंकवाद के खिलाफ जो समर्थन है कितना महत्वपूर्ण है?
2: भारत के लिए टेररिज्म से लड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण बात, और ये तीनों कंट्रीज रोमेनिया, मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया का जो हमको डिप्लोमेटिक सपोर्ट हमें चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों ने जो पहलगाम टेरर अटैक था इसमें उन्होंने भारत के साथ सॉलिडैरिटी दिखाई थी और स्पष्ट तौर पर हमारे साथ वो खड़े थे। तो इस तरह से

0: जो ये ईस्ट यूरोप की इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, इनके साथ अगर हम काम करते हैं तो जो टेरर के सपोर्टर्स हैं उनको हम अलग थलग करने में और एक यूरोपियन बैकिंग को प्राप्त करने में, एंटी टेररिज्म जो हमारी लड़ाई है उसके संबंध में बहुत महत्व रखते हैं। तो मेरे विचार में ये तीनों कंट्रीज का सपोर्ट भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे इसलिए कि हम चाह रहे हैं कि ग्लोबल वॉइस बने
1: जी,
0: टेररिज्म के खिलाफ।
1: मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात में जब ट्रेड रूट्स और सप्लाई चेन्स में रुकावटें आ रही हैं, आप मौजूदा पार्टनर्स के साथ संबंध बढ़ाने और नए पार्टनरशिप बनाने पर नई दिल्ली का जो फोकस है उसे कैसे देखते हैं?
0: न्यू दिल्ली का जो फोकस है इन सब संबंधों में वो ऐसा है कि हम जो पुरानी पार्टनरशिप्स हैं, अलायंसेस, उनको हम और तंदुरुस्त करना चाहते हैं और न्यू पार्टनरशिप्स भी बनाना चाहते हैं। अब जैसे हम कोशिश कर रहे हैं क्वाड के साथ जो कोऑपरेशन है वो बढ़े,
1: जी
0: और जैसे इनहेंस कर रहे हैं मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए, तो ये दिखाता है कि हम जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप्स हैं उनको तंदुरुस्त करना चाहते हैं लेकिन साथ ही साथ न्यू पार्टनरशिप भी क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मसलन अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो न्यूजीलैंड का दौरा हुआ
1: जी
0: था या उन्होंने जो विजिट्स की है जीसीसी कंट्रीज में, वहां पर कुछ हमने ऐसे ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए हैं और कुछ ऐसे रिश्ते बनाए हैं जिससे कुछ नए दिशाओं में काम करने की संभावना पैदा हो रही है।
1: मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत के संबंधों को और सुदृढ़ करने में राष्ट्रपति की रोमानिया यात्रा कितनी अहम है?
0: ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक संदेश देती है कि भारत ईस्टर्न और साउथ ईस्ट यूरोप को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, उनके साथ अपना कोऑपरेशन बढ़ाना चाहता है। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए जो संदेश जा रहा है कि हम बिलीव करते हैं वसुदेव कुटुंबकम में, और हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हम ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं ताकि हमारी जो पार्टनरशिप्स हैं ये और तंदुरुस्त होती जाएं। तो ये सब जो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे इस विजिट से पे अगर हम जोर दें, इस पे हम ठीक से स्टडी करें और इस पे फॉलो अप करें। देखिए, प्रेसिडेंट ने तो दरवाजे खोले हैं,
1: जी
0: अब हमारी इंडस्ट्री के लिए और हमारे जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके लिए काम करने की जरूरत है कि किस तरह से जो ये नए दरवाजे खोल रहे हैं उनका उपयोग करें और रिलेशनशिप को और मजबूत।
1: जी राष्ट्रपति मुर्मू की तीनों देशों की यात्रा से यूरोप और अगर हम व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात करें, क्या संदेश जाता है?
0: हम बिलीव करते हैं वसुदेव कुटुंबकम में, और हमने बार बार ये दिखाया है कि जब कोई भी देश संकट में आता है तो हम आगे बढ़ के उसकी सहायता करने की कोशिश करते हैं।
1: जी
0: एक आध महीने पहले वेनेजुएला में इतना बड़ा क्वेक आया,
1: जी
0: तो इतनी दूर एक स्थित कंट्री को हमने जल्दी से जल्दी सहायता भेजी। तो संदेश ये जाता है कि वी आर अ फ्रेंड इन नीड, जब कोई संकट का सामना कर रहा हो तो हम ऐसे दोस्त हैं कि हम उसकी सहायता करते हैं। तो ये जो दौरा है ये भी संदेश ये देता है कि भारत एक मजबूत रिश्ता बनाना चाहता है इन सब देशों के साथ ताकि हम साथ में मिलकर काम कर सकें, अपना ऑलराउंड कोऑपरेशन बढ़ा सकें, ट्रेड का एक्सपेंशन कर सकें और रिश्तों को और मजबूत कर सकें।
1: अम्बेसडर प्रभुदयाल, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल हुए और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रोमानिया यात्रा से सुदृढ़ होते भारत यूरोप संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत प्रभुदयाल। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

0: गानों के साथ एक बार फिर सजी है सांझ ढले की महफिल। और आज की इस खास महफिल की मेजबान हूं मैं यानी विभा। शुभ संध्या, नमस्कार। भाई खास इसलिए क्योंकि आज है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, तो आप सबको राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की अनंत शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसमें ढलती शाम का सौंदर्य भी है और प्रेम की मिठास भी। और कौन सा है वो गीत, बस पहुंचा दिया आप तक।
1: Oh, oh, oh, oh.

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
4: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
3: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
4: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
3: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया।

गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

नमस्कार, मैं हेमा मालिनी आप सभी को अनेकानेक बधाइयाँ शुभकामनाएं देती हूँ। जब हम छोटे थे तो आकाशवाणी ही हमारी जानकारियों और एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन का जरिया था, लेकिन आज भी मुझे आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना उतना ही पसंद है, चाहे वो कार में बैठते ही रास्ते में थकान मिटाना हो या घर में सारे दिन धीमे धीमे बजने वाले गीत सभी सुकून देते हैं। आकाशवाणी से जुड़ाव अब तो जीवन का एक हिस्सा बन चुका है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

सांचले में बात करते हैं साल 1966 की यादगार फिल्म बहारें फिर भी आएंगी की। गुरुदत्त साहब द्वारा निर्मित इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र, माला सिन्हा और तनुजा। त्रिकोणीय प्रेम कहानी पर बनी इस फिल्म को अगर आज भी उतनी ही शिद्दत से याद किया जाता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है इसका शानदार संगीत, दिल छू लेने वाली कलात्मक प्रस्तुति। संगीत दिया था मशहूर संगीतकार ओपी नैयर ने और गीतों को शब्द से सजाया था अजीज कश्मीरी, कैफे आजमी, अनजान और एसएच बिहारी ने। वहीं भावनाओं को कैमरे में बड़ी खूबसूरती से कैद किया था छायाकार केजी प्रभाकर ने। इस फिल्म से जुड़ा एक भावुक तथ्य ये है कि शुरुआत में इस फिल्म में नायक खुद गुरुदत्त साहब थे और कुछ हिस्सों की शूटिंग हो भी चुकी थी, मगर उनके असामयिक निधन के बाद फिल्म को फिर से बनाया गया और मुख्य भूमिका निभाई धर्मेंद्र साहब ने।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोविड 19 में कर्तव्य निर्वहन के दौरान जान गंवाने वाले अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने पश्चिम

0: दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना का शुभारंभ किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, राजधानी दिल्ली में यातायात भीड़ को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई परिश्रमी छात्र के साथ न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कल नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा और आज विश्व प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोविड-19 महामारी के दौरान कर्तव्य के निर्वहन में सर्वोच्च बलिदान देने वाले फ्रंटलाइन वर्कर के परिजनों को वर्षों से लंबित 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि कर्तव्य के निर्वहन में सर्वोच्च बलिदान देने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स के योगदान का स्मरण और उनके परिवारों के प्रति दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता सदैव सर्वोपरि रहेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज बताया कि राजधानी दिल्ली में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की हैं। दक्षिण दिल्ली से लोकसभा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री गडकरी ने बताया कि इस परियोजना से दिल्ली में 2,105 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
1: श्री गडकरी ने बताया कि दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे की योजना के अंतर्गत DND से फरीदाबाद और सोहना होते हुए 6 लेन का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसकी लागत 4,583 करोड़ रुपए है। इसके अलावा लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग 48 को नेल्सन मंडेला मार्ग वसंत कुंज से जोड़ने के लिए शिवमूर्ति से 6 लेन की टनल भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इन सभी योजनाओं पर व्यय की जाने वाली कुल राशि 1,04,145 करोड़ रुपए है। आश्रम से बदरपुर बॉर्डर तक महरौली गुड़गांव रोड, INA से महिपालपुर और कालिंदी कुंज जंक्शन से ओखला बैराज तक एक इंटरचेंज के निर्माण की अन्य परियोजनाओं का प्रस्ताव है। नितिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पश्चिमी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक से लैस 917 कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
2: यह डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना पश्चिमी दिल्ली नगर निगम के 25 वार्डों के लगभग 4.5 लाख परिवारों को कवर करेगी। इसकी शुरुआत पहले चरण में 6 वार्डों से हो गई है, जबकि शेष 19 वार्डों को इस वर्ष 31 अगस्त तक जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ, हरित और विकसित दिल्ली का निर्माण केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि जन भागीदारी से ही संभव है। उन्होंने नागरिकों से घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था का सहयोग करने, गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित करने तथा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने का आह्वान किया। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने नगर निगम को निर्देश दिया कि इसके लिए जो भी फंड चाहिए वह सरकार प्रदान करेगी।
3: दिल्ली सरकार ने भी नगर निगम को ये कहा कि जितना भी फंड लगेगा, परंतु दिल्ली सरकार की ये प्रायोरिटी है कि दिल्ली साफ होनी चाहिए, दिल्ली सुंदर होनी चाहिए। किसी भी शहर की सुंदरता जो सबसे पहले आकी जाती है वो वहाँ की सफाई व्यवस्था से आकी जाती है।
2: उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक तकनीक, मजबूत बुनियादी ढांचे और जन सहभागिता के समन्वय से दिल्ली देश की सबसे स्वच्छ और सुव्यवस्थित राजधानी के रूप में स्थापित होगी। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, महापौर परवेश वाही और नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार भी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कहा कि पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्णय हर परिश्रमी छात्र के साथ न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों के अधिकारों और उनके परिश्रम पर आघात करने वालों के विरुद्ध कानून पूरी कठोरता के साथ काम करेगा। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को लागू करना हो या प्रधानमंत्री द्वारा आज सुबह बताए गए फास्ट

0: कोड बनाना हो, सरकार कोई भी अस्थायी समाधान या जल्दबाजी में किए जाने वाले उपाय नहीं कर रही है। एक प्रेस वार्ता में श्री सूद ने कहा कि सरकार उन सभी कमियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कल नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि यह बैठक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में ब्रिक्स सहयोग के विकास में महत्वपूर्ण है। मंत्रालय के अनुसार बैठक इस बढ़ती वैश्विक समझ को दर्शाती है कि आपदाएं सतत विकास, जलवायु अनुकूलन, आर्थिक स्थिरता और मानव सुरक्षा के लिए व्यापक और गंभीर जोखिम उत्पन्न करती हैं। बैठक में ब्रिक्स के 10 सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज पीएचडी चैम्बर हाउस में सेफ स्कूल्स लीडरशिप 2026 पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम में स्कूल की सुरक्षा और मुश्किल हालात का सामना करने की क्षमता के लिए एक व्यापक और भविष्य के हिसाब से तैयार दृष्टिकोण की जरूरत पर जोर दिया गया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि अब स्कूल की सुरक्षा का दायरा केवल भौतिक बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, इसमें साइबर सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, आपदा की तैयारी और अप्रत्याशित स्थितियों में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने की क्षमता भी शामिल है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। हालांकि डीएमआरसी ने बताया कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा की समस्या को रोकने के लिए आज दिल्ली शाहदरा शामली रेलखंड के लोनी रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले कुल 71 मामले पकड़े गए और 37,210 रुपये का रेलवे राजस्व वसूला गया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को दी गई हिरासत में लेने की शक्तियां नई नहीं हैं, बल्कि ये शक्तियों का नियमित विस्तार या नवीनीकरण है। एक बयान में दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह आदेश हर 3 महीने में जारी किया जाता है और वर्तमान नवीनीकरण 7 जुलाई को इस वर्ष 19 जुलाई से 18 अक्टूबर की अवधि के लिए जारी किया गया था। पुलिस ने कहा कि ये नवीनीकरण छात्रों के विरोध प्रदर्शन शुरू होने से काफी पहले जारी किया गया था। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित जवाब में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आज कहा कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री लाना जारी रखेगा। प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के बारे में श्री द्विवेदी ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के पहले से ही लगभग 1.1 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये तेजी से बढ़ रहा है।
1: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक ऐसा माध्यम है जो देश को जानकारी देता है, प्रेरित करता है और एकजुटता करता है, साथ ही विकसित भारत की भावना को भी आगे बढ़ाता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस पर सभी श्रमिकों और समर्पित कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी।

एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दत्तोपंत ठेंगड़ी के मार्गदर्शन में स्थापित भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रहित, उद्योग हित और श्रमिक हित के आदर्शों को आधार बनाकर श्रमिकों के सम्मान, अधिकारों और कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें नमन किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वराज और स्वदेशी के प्रबल समर्थक लोकमान्य तिलक ने भारतीयों में आत्मगौरव और राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा दी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनके विचारों, साहस और नेतृत्व के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और स्वाभिमान का संदेश

से स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और स्वाभिमान का संदेश सदैव स्मरणीय रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वाधीनता के लिए चंद्रशेखर आजाद का अदम्य साहस, अटूट स्वाभिमान और सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक भारतीय के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। सरकार ने उन सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें

प्रत्येक भारतीय के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। सरकार ने उन सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि दिल्ली में नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान 21 वर्षीय महिला की मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने बताया कि विरोध प्रदर्शन से संबंधित एक घटना में गंभीर रूप से घायल हुई महिला जीवित है और इसका इलाज जारी है। तथ्य दिल्ली में यातायात भीड़ को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई परिश्रमी छात्र के साथ न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कल नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा और आज विश्व प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेपर लीक के मुद्दे पर आज भारी हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल भी सदन चलने देने के लिए विपक्षी सदस्यों से अपील की थी। कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों के नेताओं से उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर बातें की हैं कि आपका जो सुझाव है उस पर लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार चर्चा करना चाहती है, लेकिन इसमें सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की घोषणा पहले ही कर दी है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन में सहयोग करें और सदन को चलने दें। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। श्री रिजिजू ने विपक्षी दलों के नेताओं से पेपर लीक के मामले पर राजनीति न करने का आग्रह करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए चर्चा करनी चाहिए। इससे पहले सदन की कार्यवाही आज 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर हंगामा किया। शोरगुल और हंगामा देखकर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल को चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग उनके चैम्बर में आए और बातचीत से कोई समाधान निकाला जाए। नियमों के तहत हर विषय पर चर्चा कराई जाएगी। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कहा कि सदस्य सदन की कार्यवाही चलने देना नहीं चाहते। उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने स्थगन के बाद 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी सदस्यों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने हंगामे के बीच ही आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठकर सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और इसीलिए उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। पीठासीन श्री सैकिया ने सदस्यों से नियम 377 के तहत मामले को उठाने का आग्रह

सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की व्यापक समस्याएं दर्ज नहीं की गई हैं। मुख्य रूप से आम जनता की टिप्पणियों और सोशल मीडिया पर चर्चा के माध्यम से इंजन के कार्य निष्पादन, माइलेज और वाहन के घिसाव से संबंधित कुछ चिंताएं जरूर सामने आई हैं। देशभर में E15 मिश्रित पेट्रोल का 3.5 वर्ष से अधिक समय से और E19 E20 ईंधन का 2.5 वर्ष से अधिक समय से व्यापक उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हितधारकों के साथ परामर्श, क्षेत्र में परीक्षण और मिश्रण वृद्धि के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के माध्यम से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर E20 के प्रभावों के मूल्यांकन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से एक अध्ययन किया गया था। अध्ययनों से कार और दोपहिया वाहनों के इंजनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं पाई गई। इन अध्ययनों से पुष्टि हुई कि E20 ईंधन से चलाने पर पुराने वाहनों के कार्य निष्पादन में भी कोई अधिक बदलाव नहीं आया और न ही उनमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई। चालन क्षमता, स्टार्ट करने की क्षमता, धातु अनुकूलता और प्लास्टिक अनुकूलता जैसे मानदंडों में कोई भी समस्या नहीं पाई गई। E20 ईंधन के उपयोग के कारण वाहन के माइलेज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सरकार, वाहन विनिर्माताओं और इंजन परीक्षण एजेंसियों ने भी ये स्पष्ट किया है कि वाहन का माइलेज सिर्फ ईंधन के प्रकार से नहीं बल्कि कई अन्य कारकों से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को चरणबद्ध, सुनियोजित, वैज्ञानिक रूप से मान्य और परामर्श के माध्यम से लागू किया गया है। इसका उपयोग विश्व स्तर पर एक सदी से अधिक समय से हो रहा है और ब्राजील जैसे देश दशकों से उच्च एथेनॉल मिश्रण का प्रयोग कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि देश के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन संयुक्त रूप से केंद्रीय भूजल बोर्ड, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। भारत के गतिशील भूजल संसाधनों के राष्ट्रीय संकलन 2025 के अनुसार कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण का आकलन लगभग 448 बिलियन घन मीटर किया गया। वार्षिक निष्करण योग्य भूजल संसाधन लगभग 407 बिलियन घन मीटर और कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 247 बिलियन घन मीटर आंका गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 और वर्ष 2025 के आकलनों की तुलना से ये ज्ञात होता है कि भूजल संसाधन परिदृश्य में समग्र सुधार हुआ है। सरकार ने अस्थिर भूजल निष्कर्षण की समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा समय समय पर भूजल संसाधन का आकलन और भूजल स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है। जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और जल संचय जन भागीदारी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकायों का पुनरुद्धार, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, जल बजटिंग और सामुदायिक नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन जैसे उपायों को भी बढ़ावा दिया जाता है। चूंकि जल राज्य का विषय है इसलिए ये प्रयास स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। भारत सरकार द्वारा देश के हर जिले में कम से कम 75 जल निकायों के विकास और पुनरुद्धार के लिए मिशन अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का विकास और पुनरुद्धार किया गया जिससे जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण में सहयोग मिला है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल भृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के चिन्हित मानचित्रण योग्य क्षेत्र को कवर किया गया है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ जल भृत प्रबंधन योजनाएं
साझा की गई हैं।

इसके बाद जल की कमी वाले भूजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, तटीय और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च रिजोल्यूशन वाली जलभृत जानकारी प्राप्त करने और प्रबंधन कार्यनीतियां तैयार करने के लिए नेक्यूम 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लिखित जवाब में बताया कि मार्च 1994 में भारतीय घरेलू विमानन को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था। एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा निर्देशों के अनुपालन, हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा आवंटित स्लॉट और डीजीए से आगे की मंजूरी के साथ किसी भी प्रकार के विमान के साथ क्षमता बढ़ाने और सेवा प्रदान करने तथा प्रचालन हेतु किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए ये एयरलाइन प्रचालक पर निर्भर है कि वो अपनी परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश के किसी भी हवाई अड्डे से या हवाई अड्डे के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने पर विचार करें। उन्होंने बताया कि सरकार एक संतुलित, प्रतिस्पर्धी और लचीले नागर विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि किसी एक एयरलाइन में परिचालन संबंधी व्यवधानों से राष्ट्रीय संपर्क पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक प्राधिकरण है जिसका प्राथमिक लक्ष्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली परिपाटियों को समाप्त करना, प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बाजार में अन्य पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि हवाई किराया सरकार के विनियमन के अधीन नहीं है और प्रत्येक विमान परिवहन उपक्रम को वायुयान नियमों का अनुपालन करते हुए परिचालन की लागत, सेवा की विशेषताओं, युक्तिसंगत लाभ समेत सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ स्थापित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार सामान्यतः बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए हवाई किराए को विनियमित नहीं करती है, हालांकि ये सतर्क निगरानी की भूमिका को बनाए रखती है। सरकार केवल असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करती है, जैसे कोविड महामारी के दौरान, महाकुंभ जैसे त्योहारों या पहलगाम की घटना और इंडिगो की उड़ान में व्यवधान जैसी परिस्थितियों के दौरान। इसके अलावा नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइंस द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक हवाई किराए से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एयर सेवा प्लेटफॉर्म पर समर्पित एयर फेयर शिकायत मॉड्यूल को विकसित किया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में मॉनसून सत्र के लगातार चौथे दिन आज भी गतिरोध कायम रहा। कांग्रेस सहित विपक्ष के अन्य दलों द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहने के कारण सदन की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने आज फिर नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में चर्चा कराने पर अपनी सहमति जताई, जबकि विपक्ष ने कहा कि वो इस विषय पर तभी चर्चा में भाग लेगा जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। सदन में आज विपक्षी सदस्यों को आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करते देखा गया। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सदन में आज देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले दिनों बारिश सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वान्ह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि देश में जून और जुलाई के दौरान विशेष रूप से असम, अरुणाचल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़, वज्रपात तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई और अनेक लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सभापति ने कहा कि इससे संपत्ति, फसलों और सार्वजनिक ढांचागत सुविधाओं को भी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। इन क्षेत्रों की वनस्पति और जीव जंतु भी बुरी तरह से

0: प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि संबंधित सरकारें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कुशल सहयोग से बचाव और राहत के कामों में लगी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि बहुमूल्य जीवन की क्षति और लोगों का घायल होना निश्चित ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सदन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता है तथा घायलों और प्रभावित लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने और उनके पुनर्वास की प्रार्थना करता है। इसके बाद सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षणों का मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इतनी अच्छी पहल की गई है और इसे देखते हुए दोनों सदनों में चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन विपक्ष केवल विरोध प्रदर्शन ही करना चाहता है, ऐसा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: This is Akashvani. A review of today's parliament proceedings read by Abhineet Shukla. First from the Lok Sabha. Writer is Aseem Kamal of PTI. The Lok Sabha proceedings were disrupted for the fourth day today with protests by the opposition on the NEET paper leak controversy and the demand for the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan, forcing multiple adjournments. As the House met at 2 p.m. after two adjournments, opposition members started raising slogans. Mr. Dilip Saikia, who was in the chair, urged the protesting members to maintain the decorum and said that disrupting the proceedings was not correct. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju accused the opposition of attaching preconditions and trying to run away from a debate on the NEET paper leak issue. As the opposition insisted on the resignation of Mr. Pradhan, Mr. Rijiju told the Lok Sabha that during the discussion, the government would also like to put across its point of view on the matter. He said, opposition members can speak for as long as they want and the discussion can go on even for 2 days. Mr. Rijiju said, the date and duration of the discussion in both the houses can be decided by the opposition. According to him, the government has approached the Congress and other opposition parties on having the debate. Mr. Rijiju made these remarks after the House reconvened at noon following the first adjournment of the day. When the House reconvened, opposition members started shouting slogans and displayed placards. Many of the members went to the well of the house. Mr. Saikia, who was in the chair, urged the protesting members to go back to their seats and desist from disrupting the proceedings. With the protest continuing, the house was adjourned within 10 minutes after the laying of papers listed for the day. Earlier, during the question hour, Lok Sabha Speaker Om Birla urged the members to let the house function, saying it is an important part of the day's business. He said that after the question hour, House is ready to discuss every issue. Mr. Birla appealed

0: नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को बाय मिला, भारत के लिए पदक सुनिश्चित। भारत ने जिम्बाब्वे को हराकर पहला T20 मुकाबला अपने नाम किया। वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार अर्धशतकीय पारी खेली। आगामी टेस्ट क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड के ओवल में खेला जाएगा। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अलीरेजा फिरोजा ने चेन्नई शतरंज ग्रैंड मास्टर्स का खिताब जीता। और ISSF निशानेबाजी विश्व कप के पहले दिन चीन के ओलंपिक चैंपियन शेंग लियाओ ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों से। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना को बाय मिला, जिसके माध्यम से उन्होंने सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही भारत ने अपना पहला पदक सुनिश्चित कर लिया है। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को बाय मिला है। इस बाय के जरिए उन्होंने सीधे सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए अपना पदक सुनिश्चित कर लिया। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन बाय मिलने के बाद महिलाओं के 75 किलोग्राम कैटेगरी के सेमीफाइनल में सीधे पहुंची। ड्रॉ में सिर्फ 5 एथलीट थे, इसलिए लवलीना समेत 3 खिलाड़ी सीधे अंतिम 4 में पहुंच गए, जबकि बाकी 2 खिलाड़ियों को एकमात्र क्वार्टर फाइनल मैच खेलना था। कॉमनवेल्थ गेम्स के बॉक्सिंग नियमों के तहत सेमीफाइनल में हारने वाले सभी खिलाड़ियों को कांस्य पदक दिया जाता है। लवलीना 31 जुलाई को सेमीफाइनल में ताफाकी के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी, जहां स्वर्ण पदक मैच में जगह बनाने का मौका होगा। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और श्रोताओं, आपको बता दें कि लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और

0: 2023 के विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा उन्होंने चीन के हंगझोऊ में हुए 2023 एशियाई खेलों में भी रजत पदक जीता। वहीं ओपनिंग सेरेमनी के लिए जब आज भारतीय दल शानदार कपड़ों में मैदान पर उतरेगा तो लवलीना और टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली वेट लिफ्टर मीराबाई चानू फ्लैग और बैटन बेरर लेकर चलेंगी। मीराबाई चानू ने बेहतर प्रशिक्षण के लिए सरकार का धन्यवाद भी किया।
1: एक तरफ से तो इंडियन गवर्नमेंट ने हमको इतना सपोर्ट दिया है कि हम पहले ट्रेनिंग करना जो चाहते हैं, वैसे हम पहले से ही 25 डे हम बर्मिंगम में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वो जो क्लाइमेट एडजस्ट करना ये बहुत डिफिकल्ट होता है प्लेयर्स के लिए कि हमारे इंडिया में बहुत गर्म है, इधर आके हम ठंडा है, तो एक वीक या दो वीक लग जाते हैं इसको एडजस्ट करने में। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी हमारे गवर्नमेंट को कि उन्होंने ही पहले हमको ट्रेनिंग के लिए भेजा है।
0: मीराबाई ने कहा कि ये प्रतियोगिता एशियन गेम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: मेरे लिए तो काफी डिफिकल्ट हो रही है कि अभी मैं 48 में खेलूंगी, फिर 49 में खेलना है, और फिलहाल अभी 48 के लिए मैं बॉडी वेट कंट्रोल करके रखना है और एशियन गेम्स के लिए भी मुझे प्रिपरेशन करना है, तो थोड़ा सा दिक्कत है, पर मैं पूरा कोशिश करूंगी मेरे तरफ से जो भी है, पर बहुत पास में है तो मैं अभी भी जो ट्रेनिंग चल रही है मैं एशियन गेम्स की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ।
0: उन्होंने कहा कि खिलाड़ी प्रेशर से पार पाकर पदक जीतना चाहते हैं।
1: प्रेशर है पर हमको पूरा कोशिश करूंगी प्रेशर को साइड में रख के जो हमारी परफॉर्मेंस हमने करके आई है इसको हमारी जो बेस है उसको स्टेज में लेके करने के लिए हम पूरा कोशिश करूंगी, तो ऐसा ही अच्छा परफॉर्मेंस देगी तो जरूर वेटलिफ्टिंग में सबका मतलब मेडल आ सकते हैं।
0: उधर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज ग्लासगो में भारतीय सदस्यों के साथ साइकिलिंग रैली की अगुवाई की और भारतीयों से राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान चेयर फॉर इंडिया मुहिम में शामिल होने का अनुरोध किया। खेल मंत्री ने साइकिलिंग के महत्व के बारे में भी बताया।
2: भारतीय डायस्पोरा के द्वारा चेयर फॉर भारत करके हमारे एथलीट का हौसला बढ़ाया, साइकिलिंग से दुनिया को ग्लासगो से संदेश दिया कि फिटनेस दुनिया के हर नागरिक के लिए जरूरी है।
0: अब सीधे चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी भारतीय टीम, लेकिन आज जिस प्रकार से नए खिलाड़ी टीम में शामिल हुए और गेंदबाजों ने कैसा किया प्रदर्शन आज?
3: जी प्रशांत, आज गेंदबाजों का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा। आज अशोक शर्मा ने भारत के लिए डेब्यू किया है, हालांकि उनका आईपीएल प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था और भारत के लिए उन्होंने आज डेब्यू किया, तो उसके पीछे मुख्य वजह यह थी कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेले गए 10 मुकाबलों में उन्होंने 22 विकेट चटकाए थे और सबसे ज़्यादा उन्होंने अपनी पेस से प्रभावित किया था। इस आईपीएल में उन्होंने 154.2 की रफ्तार से गेंदबाजी करी थी। आज भी वो विकेटलेस रहे हैं, पर वी होप फॉर द बेस्ट कि हम देखेंगे अशोक शर्मा को कुछ अच्छा करते हुए। वहीं मयंक यादव ने 4 ओवर में आज 18 रन देकर 2 विकेट लिए और उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया।
0: वहीं बल्लेबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। वैभव सूर्यवंशी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, उनके दम पर उनको टीम में जगह मिली और आज धमाकेदार पारी भी खेला वैभव ने। कैसा रहा भारत का बल्लेबाजों का प्रदर्शन?
3: देखिए बल्लेबाजी क्रम की अगर बात करें तो अभिषेक शर्मा आज जल्दी ही आउट हो गए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने शानदार पारी खेली, 19 गेंदों पर 50 रन बनाए जिस पारी में उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए। वैभव को ये मैदान बहुत ही ज़्यादा रास आता है क्योंकि अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने यहाँ पर 175 रन की पारी खेली थी जो सबको याद होगी। और उसके बाद ईशान किशन ने 24 गेंदों पर 35 रन और वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर ने 24 गेंदों पर 28 रन। तो इंग्लैंड और आयरलैंड से हारने के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ ये जीत भारतीय टीम को बहुत ही मनोबल प्रदान करेगी और आगे भी हम उनसे बेहतर प्रदर्शन की आशा रख सकते हैं।
0: बिल्कुल, और कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में भारत ने पहला मुकाबला जीता है और उम्मीद करें कि 25 और 26 जुलाई को जो इस श्रृंखला का दूसरा और तीसरा मुकाबला खेला जाएगा इसमें भी भारत जीत दर्ज करे और इस श्रृंखला को अपने नाम करे। उधर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप WTC 2027 का फाइनल इंग्लैंड के ओवल में 9 से 13 जून के बीच खेला जाएगा। ऐसा दूसरी बार होगा जब ये मैदान चैंपियनशिप का फाइनल होस्ट करेगा।

0: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले की मेजबानी ओवल दूसरी बार करेगा। इससे पहले इसी मैदान पर वर्ष 2023 में यहां खिताबी मुकाबला खेला जा चुका है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त दी थी। पिछले वर्ष आईसीसी कॉन्फ्रेंस के दौरान ईसीबी को अगले तीन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2027, 2029 और 2031 की मेजबानी के अधिकार मिले थे। डब्ल्यूटीसी फाइनल के शुरुआती तीन संस्करण इंग्लैंड के अलग अलग वेन्यू पर आयोजित किए गए थे। लॉर्ड्स ने वर्ष 2025 का फाइनल होस्ट किया था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से मात दी थी। न्यूजीलैंड ने साल 2021 में साउथहैम्पटन में भारत को 8 विकेट से हराकर पहला टाइटल जीता था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में ओवल के मैदान पर 209 रन से जीत हासिल करते हुए ट्रॉफी जीती थी। टेस्ट क्रिकेट के 150 वर्ष पूरे होने के कारण 2027 का संस्करण ऐतिहासिक होगा। ऑस्ट्रेलिया अभी डब्ल्यूटीसी रैंकिंग में शीर्ष पर है, जबकि मौजूदा चैंपियन दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और भारत तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात कर लेते हैं स्क्वैश पर। अनहा सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में अनहा ने डॉयस ये सैन को शिकस्त दी। सुनते हैं सरफिरोजी की एक रिपोर्ट।
2: अनाहत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड स्क्वॉश जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। टूर्नामेंट की शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मलेशिया की डाइस ये सैन ली को सीधे गेम में हराया। पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली अनाहत ने अपनी प्रतिद्वंदी को 11-4, 11-8 और 11-3 से मात दी। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना मिस्र की 5-8 सीड खिलाड़ी हबीबा रिजक से होगा। महिला वर्ग के कई अन्य मुकाबले भी रोमांचक रहे। मिस्र की हबीबा रिजक ने अमेरिका की शार्लेट जे को 4 गेम के मुकाबले हराकर अगले दौर में जगह बनाई। वहीं बेल्जियम की सवाना मोक्सहैम ने पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए हांगकांग की एना क्वांग को 3-1 से हराया। मिस्र की मलिका एलकाराक्सी ने अमेरिका की दिया यादव को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं पुरुष वर्ग में भी कई अहम मुकाबले खेले गए। टॉप सीड मोहम्मद जकारिया ने पाकिस्तान के नौमान खान को हराकर

0: दो जीत हासिल की और 5 मैच ड्रॉ खेले। अंतिम दौर में अलीरेजा फिरोजा के पास भारत के अर्जुन एरिगेसी और उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुल सत्तरोव पर आधे अंक की बढ़त थी। खिताबी दौड़ निर्णायक रूप से फिरोजा के पक्ष में तब झुक गई जब अब्दुल सत्तरोव रूस के दिमित्री आंद्रकिन के खिलाफ 47 चालों में हार गए। अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी के दौड़ से बाहर होने के बाद फिरोजा को एरिगेसी के खिलाफ सिर्फ ड्रॉ की जरूरत थी। उन्होंने सुरक्षित रूप से खेल को रुक एंड पॉन एंड गेम तक पहुंचाया और फिर पॉइंट बांटकर खिताब अपने नाम कर लिया। आंद्रकिन ने इस टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं गवाया। वहीं अर्जुन एरिगेसी के साथ 4 पॉइंट्स पर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। अब्दुल सत्तरोव ने भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन और एम प्रणेश के साथ चौथा स्थान साझा किया। तीनों ने 3.5 पॉइंट्स हासिल किए। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: अश्रोता, आपको बता दें कि मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश के लिए यह टूर्नामेंट निराशाजनक रहा। 7 में से 3 गेम हारने के बाद वे 2 पॉइंट के साथ स्टैंडिंग में सबसे नीचे रहे। और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी की हार के साथ भारतीय खिलाड़ियों का सफर आज समाप्त हो गया। पीवी सिंधु शुरुआती बढ़त का फायदा उठाने में नाकाम रही और चीन की खिलाड़ी चेन यूफेई से 3 गेम के कड़े मुकाबले में 21-16, 20-22 और 18-21 से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी को भी हार का सामना करना पड़ा। लक्ष्य कनाडा के विक्टर लाई के खिलाफ 21-19, 21-11 से, जबकि आयुष शेट्टी आयरलैंड के नेट ग्वेन से 15-21, 21-13 और 22-20 से हार गए। और अब बात निशानेबाजी पर। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप के पहले दिन कल

हार का सामना करना पड़ा। लक्ष्य कनाडा के विक्टर लाई के खिलाफ 21-19, 21-11 से, जबकि आयुष शेट्टी आयरलैंड के नैट ग्वेन से 15-21, 21-13 और 22-20 से हार गए। और अब बात निशानेबाजी पर। ISSF निशानेबाजी विश्व कप के पहले दिन कल पुरुष 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में चीन के ओलंपिक चैंपियन शेंग लिहाऊ ने स्वर्ण पदक जीता। चीन के ही झांग चांगहोंग ने रजत पदक पर

0: की बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
3: At the level of the Prime Minister,
4: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों को सजा दिलाने की घोषणा से बहुत पहले ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
1: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से

0: नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र, बुखारेस्ट रोमानिया से।
3: भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। मनीला में 21वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती

0: उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
1: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेरगाम में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचा रहे हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल बादल छाए रह सकते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज रात ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में, रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government invites students protesting over NEET paper leak issue for talks. Prime Minister Narendra Modi announces fast-track courts for paper leak cases. Deadlock continues in Parliament over NEET paper leak issue. President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with her Romanian counterpart Nicușor Dan in Bucharest tonight. Normal life disrupted as heavy rainfall lashes several parts of Gujarat. Prime Minister Modi assures all possible help. 23rd Commonwealth Games set to begin at Glasgow tonight. And Vaibhav Suryavanshi steers India to 7-wicket victory in first T20 cricket match against Zimbabwe. Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to media, the minister said,

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए सौर ऊर्जा से हरित हाइड्रोजन तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर मोहम्मद रिहान, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: रिहान जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हरित चीजों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है और हरित हाइड्रोजन की काफी बात हो रही है, तो एक आम आदमी के नजरिए से देखें तो सबसे पहले ये समझना जरूरी हो जाता है कि हरित हाइड्रोजन क्या है और इसमें हरित क्या है।
2: देखिए, हरित जो है ना, ये जितने भी आजकल डेवलपमेंट है और जो भी हमारी चिंता है वो पर्यावरण को लेकर, और पर्यावरण को लेकर सबसे बड़ी चिंता है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। तो अभी जो आप हरित सुन रहे हैं, हरित का कनेक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के होने और ना होने से, जैसे कि किसी एनर्जी को हम या किसी ऊर्जा को हम हरित ऊर्जा कह रहे हैं, वो उसका मतलब ये है कि जिस ऊर्जा को बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा वो हरित ऊर्जा है। इसी तरह से हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन एक बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होने वाली गैस है इंडस्ट्री में। जो इसको बनाने का तरीका अभी तक चल रहा था उसमें CO2 एमिशन था, जो कि पर्यावरण, जैसे कि मैंने बताया ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण का जो चैलेंज है। तो हरित हाइड्रोजन का मतलब ये है हाइड्रोजन ऐसे तरीके से बनाई जाए जिससे कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ना हो, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। कार्बन डाइऑक्साइड का ना होना, ऐसी हाइड्रोजन जिसे बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकले हैं, वो हरित हाइड्रोजन कहलाएगी।
1: अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने की बात कही है, और देखा जाए तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन एक बड़ा कदम भी सरकार की तरफ से लिया गया है। तो इन सारी चीजों को अगर एक साथ रख कर देखें तो देश में इसकी जो अब तक की प्रगति हुई है, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो लक्ष्य हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, इसमें क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का चैलेंज है यानी ग्लोबल वार्मिंग का चैलेंज है, उसको रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो बिजली सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, जब हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, बिजली जो बनती थी वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्रोत थी, तो हम बिजली सेक्टर को ग्रीन कर रहे हैं, हरित कर रहे हैं, यानी सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं, विंड इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये है कि बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे कि आप अगर उनको इलेक्ट्रीफाई कर दो,

0: जो इस्तेमाल होती है वो ग्रे हाइड्रोजन कहलाती है, क्योंकि उसको बनाने में फॉसिल फ्यूल जिन्हें हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन, उनका इस्तेमाल होता है। तो अगर हम उस हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे तो उन सेक्टर के कार्बन एमिशन भी कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। अब हरित हाइड्रोजन कैसे बनती है? हरित हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें बिजली का इस्तेमाल करना होगा। आप पानी लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है, अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उसमें, तो उससे हाइड्रोजन बनती है और निकलती सिर्फ ऑक्सीजन है, तो कोई पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं। तो हमारा जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, नेशनल हरित हाइड्रोजन मिशन जो
1: जी
0: आपने कहा, ये असल में हमारे राष्ट्रीय हरित ऊर्जा मिशन का एक्सटेंशन है एक तरह से। हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए कि हम अपने इलेक्ट्रिसिटी को भी हरित कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रांसपोर्ट को भी हरित कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इंडस्ट्री जहां हाइड्रोजन इस्तेमाल होती थी उसको भी हरित हाइड्रोजन से हम रिप्लेस करना चाहते
1: रेहन
0: हैं।
1: जी, जिस तरह से आपने तमाम चीजों को जोड़ा है, तो थोड़ा सा अगर पीछे अगर के बात करते हैं, तो सरकार का सोलर एनर्जी पर भी काफी फोकस रहा है कि सौर ऊर्जा को अधिकतम देश में बढ़ावा दिया जाए, और कई सारी योजनाएं भी सरकार ने लागू की हैं। तो आपको लगता है कि ये दोनों ही पैरेलल चलने वाली चीजें हैं, कि सौर ऊर्जा में भी देश काफी प्रगति कर रहा है और आगे भी करेगा, और हरित ऊर्जा का एक मिशन तो हम अब लेकर के चल ही रहे हैं?
0: नहीं, ये दोनों एक दूसरे को एक तरह से पूरक हैं, एक दूसरे को समर्थन करने वाली, एक दूसरे की सहायता करने वाली
1: जी
0: स्कीम। कैसे होंगी मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए, हमने पिछले 10-12 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी से हम कहते हैं, जिसमें कि हम सोलर विंड इनको मानते हैं, उसके अंदर बहुत काम किया है और बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन है हमारे ऊर्जा सिस्टम में। जो सोलर हमारे पास 10-12 साल पहले 1000 मेगावाट भी नहीं था, आज हम 180 गीगावाट, 180,000 मेगावाट से ऊपर चले गए हैं, और हमारे सामने एक बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड लक्ष्य है, 2030 तक हम कितना करेंगे, 35 तक, 2047 तक और 2070 तक। तो हमारी इसमें बड़ी स्ट्रांग और कंसिस्टेंट पॉलिसी थी, और हमारे देश के जो इसमें लक्ष्य भी थे ना, वो बड़े एम्बिशियस रखे गए कि 175 2022 तक करना था, फिर 500 गीगावाट 2030 तक करना है, फिर 2047 का भी है। 2070 में आप जानते हो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत प्रॉमिस कहे हैं, उसमें से एक ये है कि 2070 तक हमें नेट जीरो।
1: जी
0: नेट जीरो का मतलब है कि हम एमिशन कम करेंगे अपने, और अगर कुछ होंगे

0: बहुत सारी ऊर्जा होगी जो हम सोलर यानी सौर ऊर्जा से बिजली में बनाएंगे। तो अगर हम उसको, जो ऊर्जा हम उससे पैदा कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए, तो हम जो हमारा सिस्टम बढ़ा रहे हैं, हम और सौर ऊर्जा भी बनाते जाएंगे, उसके साथ लगाते जाएंगे, उसी को इस्तेमाल करके अगर और हम ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करेंगे तो ये हमें डबल बेनिफिट हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं। ये तो सिर्फ पर्यावरण की बात हुई, लेकिन हमें एक अपनी ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के मामले में हम मोस्टली डिपेंडेंट थे यानी आयात के ऊपर, अब सौर ऊर्जा को कहीं से आयात नहीं करना है आपको, पवन ऊर्जा को कहीं से आयात नहीं करना, लेकिन उसके जो कंपोनेंट है, पैनल जो इस्तेमाल होते हैं, वो आपको बनाने, तो वो उसके ऊपर बड़ा काम हुआ है और पैनल में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं उस सेल में और दूसरे कंपोनेंट में। इसी तरह से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी पार्ट है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइजर यूज होता है, जो मैंने बताया, जो पानी को कन्वर्ट करेगा, उसको लेके के यही देश में बने, उसके ऊपर ये मिशन का कंपोनेंट है, उस पर भी मिशन काम कर रहा है, और दोनों ही सेक्टर जो है ये रोजगार देने वाले भी हैं, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इनसे हो रहा है।
1: रेहन जी, अभी भारत में रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन एक ऐसे समय पर हो रहा है जब देश स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और माननीय

0: ये बदलाव किया है, ये बहुत सारे देशों के लिए इससे क्या प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, सीखने का स्रोत हो सकता है, या वो इसको अपने यहाँ पे भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि क्योंकि इसमें बहुत काम हो चुका है, लेकिन आगे सालों, जैसे मैंने बताया, इसमें हमारे आगे के सारे टारगेट सेट हैं, जिसे कहना चाहिए हमारा जो विजन और पाथ है वो क्लियर है, तो ये उसके लिए भी मौका है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, किन चीजों को हम और मजबूती देंगे। और तीसरी बात यह कि ये कोई भी जो क्षेत्र है, वैसे भी ऊर्जा,
1: जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो श्रोताओं को हम ये जरूर बता देंगे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के एक सदस्य देशों के रूप में काम करता है और दुनिया के अग्रणी सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में भी हमारा नाम शामिल है। तो ऐसे में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका क्या निभाई जा सकती भारत के द्वारा, खासतौर पर जैसा कि आपने जिक्र किया कि भारत लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और सरकार ऐसे नीतिगत फैसले भी ले रही है कि हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़े।
0: भारत ऑलरेडी इसमें कई सेक्टर में नेतृत्व की तरफ है, और जो आपने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसमें नेतृत्व भारत का ही है और ये भारत की ही पहल पर बना और बहुत अच्छी पहल है। उसमें अब तो 120 से ज्यादा देश उसमें जुड़े हुए हैं और जो हमारी लर्निंग्स हैं, जो हमने किया वो हम साझा करते हैं उनसे। उसके अलावा एक और भारत का इनिशिएटिव है, इसी से रिलेटेड, उसे कहते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वो भी भारतीय पहल है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उसमें क्या है कि आइडिया ये है कि सूरज तो कभी नहीं ढलता है, आज यहाँ नहीं है तो दूसरे देश में चमक रहा है, नहीं तो तीसरे देश में चमक रहा है, तो कैसे हम एक दूसरे की मदद से उसका और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अब मैंने बताया, जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग में भी, वो सोलर की मैन्युफैक्चरिंग हो या इलेक्ट्रोलाइजर्स की हो, ग्रीन हाइड्रोजन की, उसमें भी तेजी से बड़ा काम हो रहा है, तो इसमें भी हमारे सामने मौका है कि हम इसमें भी नेतृत्व प्रोवाइड कर सकते हैं।
1: रेहन जी, वापस अगर हरित हाइड्रोजन की हम बात करें तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि स्टील की बात है, फर्टिलाइजर की बात है, रिफाइनरी है, शिपिंग है, भारी परिवहन, जैसे कि ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते, इन क्षेत्रों के लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य देखा जा रहा है इस ईंधन का, कि ये ईंधन हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, लागत कम आएगी, रिस्पॉन्स ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा और आगे चल करके जैसा आपने बताया था कि डिपेंडेंसी वाली बात जो है वो उसमें काफी कमी आएगी। आज जो आप देख रहे हैं तमाम चीजें, तो आपको क्या लगता है कि हमारा आत्मनिर्भर होना कितना आवश्यक है और साथ ही हम कितना आगे तक जा सकते हैं?
0: देखिए, आवश्यकता की तो आप देख ही रहे हैं, जिस तरह के हालात बने या बनते रहते हैं जियोपॉलिटिकल, उसमें ऊर्जा सुरक्षा तो सर्वोपरि है और ऊर्जा सुरक्षा पे जो काम हो रहा है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में, और हमें जरूर इस पे आगे बढ़ना होगा।

0: माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया।
1: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोटरोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत अब से कुछ ही देर में ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाई के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 से हरा दिया है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to media, the minister said that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protests for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present during the dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind at the residence of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found.
3: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं।
4: वी आर ऑलवेज रेडी फॉर डायलॉग। द डोर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑलवेज ओपन एंड यू आर वेलकम टू एंगेज इन डिस्कशंस एट एनी टाइम एज पर योर कन्वीनियंस। वी आर प्रिपेयर्ड टू डिस्कस एवरी इशू इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू द मूवमेंट एज वेल एज एनी अदर मैटर्स ऑफ कंसर्न। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड सीनियर लीडर श्री जे पी नड्डा विल होल्ड डिस्कशंस एंड आई विल ऑल्सो बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीटिंग।
3: इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं।
2: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड दैट द सेंटर विल सेट अप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू इंश्योर स्विफ्ट एंड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर दोज इन्वॉल्वड इन नीट पेपर लीक्स एंड असर्टिंग दैट प्रोटेक्टिंग स्टूडेंट्स फ्यूचर रिमेन्स द गवर्नमेंट्स टॉप प्रायोरिटी। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री। His statement comes amid ongoing students' protest at Delhi's Jantar Mantar over NEET paper leak case. The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. Both the Houses of Parliament have been adjourned for the day following the opposition.

0: protest over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to the opposition parties, particularly the Congress, to cooperate in holding a discussion on the NEET paper leak issue. He added that the government has already conveyed its willingness to hold a discussion on the issue in both houses, as per the date and duration desired by the opposition. Mr. Rijiju appealed to the Congress party not to impose conditions, stating that such conditions may be seen as an attempt to avoid discussion. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that the government is highly sensitive to the concerns of students, particularly over competitive examination paper leaks. Talking to media, Ms. Sitharaman said that the government has acted swiftly by arresting those involved in the NEET paper leak issue. She added that Prime Minister Narendra Modi's announcement of fast-track courts is intended to reassure students and their families that those responsible for undermining the sanctity of the examinations will be punished swiftly. In Gujarat, heavy rainfall continues to lash several parts of the state, especially in South Gujarat region, disrupting normal life, inundating towns and villages, and affecting rail and road transport. Relief and rescue operations are in mission mode in rain-affected districts including Valsad, Surat and Navsari. Prime Minister Narendra Modi today spoke to Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel over the phone and took stock of the situation arising due to heavy rainfall in the state. President Draupadi Murmu arrived in Bucharest, Romania today on the final leg of a three-nation visit. After arrival at the Cotroceni Palace, President Murmu was accorded a guard of honour. During her visit, she held delegation-level talks with her Romanian counterpart, Nicosur Dan. Several MOUs were signed after the talks. India-Romania exchange agreements to strengthen cooperation in science and technology and sports, further deepening the bilateral partnership. The President of Romania and the First Lady will host a state dinner in honor of President Murmu tonight. The 23rd Commonwealth Games CWG will begin today in Glasgow, Scotland. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. Olympic medalists Neeraj Chopra, Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain are set to represent India at the CWG 2026. In men's cricket, India defeated Zimbabwe with 7 wickets in the first T20 international of the 3-match series in Harare this evening. Riding on Vaibhav Suryavanshi's impressive 50 of 19 balls, the visitors comfortably achieved the target of 126 runs in just 13.2 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar. Akashvani se Vishwa Darpan ke saath main Vaishnavi. मुख्य समाचार। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को सुरक्षित और निर्बाध बनाए रखने पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। भारत ने आसियान मंच पर सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया। कहा, सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक जल संधि स्थगित रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। 23वीं राष्ट्रमंडल खेल अब से थोड़ी देर में ग्लासगो में शुरू होंगे। और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। भारत ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। मनीला में 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र की प्राप्ति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। भारत ने 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री द्वारा की गई टिप्पणियों को निराधार और अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये आश्चर्य की बात नहीं है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर बहुपक्षीय मंच का दुरुपयोग, झूठ फैलाने, राज्य प्रायोजित दुष्प्रचार करने और सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के अपने इतिहास से ध्यान भटकाने के

0: ये किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग रहे हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख अटल है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले सहित सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा लगातार प्रायोजित किए जाने के जवाब में जल संधि को फिलहाल स्थगित रखा गया है। जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता तब तक जल संधि स्थगित रहेगी। भारत ने पाकिस्तान द्वारा आधिकारिक रूप से प्रायोजित दुष्प्रचार के निरंतर प्रसार की निंदा की है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ने पश्चिम एशिया संघर्ष के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान तक पहुंचने के लिए संवाद और कूटनीति के माध्यम से बातचीत जारी रखने पर बल दिया है। राज्यसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने आज कहा कि भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास निर्बाध नौवहन तथा ऊर्जा और वाणिज्य के लिए सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ईरान सहित संघर्ष में शामिल पक्षों तथा अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकारों के साथ लगातार संपर्क में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान समर्थित और यमन स्थित सशस्त्र समूह हूती समुद्री जहाजों पर और हमले करता है तो अमरीका ईरान को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि एक साल पहले होती समूह द्वारा समुद्री मार्गों को निशाना बनाकर वैश्विक व्यापार को बाधित करने के बाद अमेरिका ने उसके खिलाफ बड़ा सैन्य हमला किया था। उन्होंने कहा कि समूह ने अपना आक्रामक रुख फिर से अपना लिया है और कल शाम दो सऊदी अरब के जहाजों पर गोलीबारी की। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने आज रिकॉर्ड 1.15 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के रक्षा नीति विधेयक को पारित कर दिया जिसमें अमेरिका और इसराइल के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करने की योजना शामिल है। वित्त वर्ष 2027 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम के पक्ष में 216 और विरोध में 212 मत पड़े। इस तरह मामूली अंतर से ये विधेयक पारित किया गया। 6 डेमोक्रेट सदस्यों ने पक्ष में और 7 रिपब्लिकन सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। अब ये विधेयक आगे की मंजूरी के लिए सीनेट में भेजा जाएगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कैटरोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ कम हो गया है, वहीं भारत दीर्घकालिक विकास के अवसर प्रदान करता है। रिपोर्ट में भारत की विशाल उपभोक्ता आधार, कुशल कार्यबल, बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, बेहतर अवसंरचना और व्यापार अनुकूल सुधारों को निवेश को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारकों के रूप में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि यूरोपीय कंपनियां विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में रुचि दिखा रही हैं। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि भारत यूरोप के मजबूत आर्थिक संबंध, व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी को और बढ़ावा दे सकते हैं। विश्व दर्पण के लिए मैं सरफिरोजी।
1: घाना स्थित भारतीय उच्चायोग ने मालवाहक जहाज MV रफान मून के साथ के 9 भारतीय चालक दल के सदस्यों की सफलतापूर्वक स्वदेश वापसी सुनिश्चित की है जो कुछ समय से घाना में फंसे हुए थे। उच्चायोग ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि घाना समुद्री प्राधिकरण, घाना बंदरगाह प्राधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन श्रमिक संघ के सहयोग से ये स्वदेश वापसी हुई। उच्चायोग ने कहा कि ये सफल वापसी विदेशी धरती और खुले समुद्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कल नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में ब्रिक्स सहयोग के विकास में महत्वपूर्ण है। मंत्रालय के अनुसार बैठक इस बढ़ती वैश्विक समझ को दर्शाती है कि आपदाएं सतत विकास, जलवायु अनुकूलन, आर्थिक स्थिरता और मानव सुरक्षा के लिए व्यापक और गंभीर जोखिम उत्पन्न करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान मालदीव और युगांडा के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मांडविया ने कहा कि चर्चा का मुख्य उद्देश्य खेलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना था। उन्होंने भारत के विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना, खेल विज्ञान में बढ़ती विशेषज्ञता, एथलीट विकास और उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण प्रणाली का उल्लेख किया। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत अब से थोड़ी देर में ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहली 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को सुरक्षित और निर्बाध बनाए रखने पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। भारत ने आसियान मंच पर सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया। कहा, सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक जल संधि स्थगित रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। 23वें राष्ट्रमंडल खेल अब से थोड़ी देर में ग्लासगो में शुरू होंगे। और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अभिनीत शुक्ला विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. India stresses international waterways must remain safe and unblocked, calls for dialogue and diplomacy to end West Asia conflict. New Delhi rejects Islamabad's remarks on Indus Waters Treaty at ASEAN Forum, says treaty to stay in abeyance until cross-border terrorism ends. President Draupadi Murmu holds delegation-level talks with her Romanian counterpart Nicoso Dan in Bucharest. 23rd Commonwealth Games set to begin at Glasgow tonight. And Vaibhav Suryavanshi steers India to 7-wicket victory in first T20 cricket match against Zimbabwe in Harare. Now the news in detail. India today stressed that international waterways must remain safe and unblocked and called for dialogue and diplomacy to end the West Asia conflict. Addressing the 21st East Asia Summit, EAS in Manila, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that attacks on seafarers, civilian shipping or infrastructure cannot be condoned under any circumstance. The minister said that the global order is uncertain and volatile, where interdependence and common interests coexist with competitiveness and rivalries.
4: In this era of volatility and disruption, the most visible stress is on supply chains. Energy, food and health security can no longer be taken for granted. Because we are all so dependent on maritime trade, that too could become a source of anxiety. Observing international law in that regard is therefore vital. India and ASEAN have traditionally worked for the welfare of the larger region. For India, ASEAN centrality is a key principle. This is a world in transition, and India and ASEAN, who account for 2 billion, must navigate it together if it is to remain safe and steady.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां कभी किसी की मुस्कान मिलती है तो कभी किसी की याद। इश्क, मिलना और बिछड़ना शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे गहरी कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं इस एहसास भरे सफर को इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे आवाज दी है सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि एहसासों से बनते हैं, और जब एहसास सच्चे हों तो खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। आइए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हाजिर होता हूँ एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
5: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

दोस्तों, मोहब्बत जब दिल में उतरती है तो दुनिया पहले जैसी नहीं रहती। रास्ते वही होते हैं लेकिन मंजिल का नाम बदल जाता है। सुनिए एक और खूबसूरत संगीत।

दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये गीत पसंद आया होगा। किसी का इंतजार दुनिया की सबसे मीठी बेचैनी होती है। हर आहट में वही चेहरा नजर आता है और हवा में चारों तरफ सिर्फ नहीं वही नाम गूंजने लगता है। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी
1: जी विषय पर अपनी बात।
2: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
3: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। संसद परिसर में श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया।
4: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
2: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा स्थापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। किटोरोसिनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहली 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न है तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं स्टूडियो में। आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सिद्धार्थ सिंह। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार निखिल।
1: और सबसे पहले आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: थैंक यू निखिल। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज डिक्लाइन फॉर फोर्थ स्ट्रेट सेशन। सेंसेक्स फॉल्स ओवर 350 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स एट 23,870। Most Asian stock market indices close in positive zone and global crude oil prices rise around 5%.
1: घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 350 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 23,870 अंक पर बंद हुआ। अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में आज सकारात्मक रुख देखा गया और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 5% तक ऊपर चढ़े।

0: And before we take the top story, important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 364 अंक लुढ़ककर 76,391 पर आ गया। वहीं निफ्टी 127 अंक गिरकर 30,870 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में आज मिड कैप और स्मॉल कैप में लगभग 1% की गिरावट देखी गई। इससे पहले भू राजनीतिक अनिश्चितताओं

0: कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच बाजार की शुरुआत लाल निशान के साथ हुई। सत्र के दूसरे हिस्से में गिरावट का रुख और तेज हो गया, जिससे सूचकांक लगातार चौथे दिन नीचे आकर बंद हुए।
1: Benchmark domestic equity indices ended around 0.5% lower today. The Sensex shed 364 points to close at 76,391. The Nifty lost 127 points to settle at 23,870. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index and the Small-Cap 100 Index fell around 1%. Earlier, the markets opened on a negative note amid geopolitical uncertainties and rising crude oil prices. The bearish sentiment intensified further during the second half of the session, dragging the indices lower for the fourth consecutive day.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 कंपनियों में आज गिरावट दर्ज हुई। सबसे ज्यादा नुकसान वाली कंपनियों को देखा जाए तो अडानी पोर्ट्स में लगभग 2.3%, बजाज फाइनेंस में लगभग 2% और इंडिको में 1.6% की सुस्ती आई। इसके विपरीत महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.7%, टीसीएस में 1.5% और एटर्नल में 1.1% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई।
1: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बीएसई 24 आउट ऑफ 26 सेक्टर्स एंडेड इन द नेगेटिव जोन। अमंग द टॉप लैगर्ड्स रियलिटी ड्रॉप्ड 1.8%, services slipped over 1.6% and telecommunication fell over 1.3%. In contrast, auto advanced over 0.5% and insurance rose 0.7%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,585 companies declined, shares of 1,637 companies advanced and shares of 169 companies remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में लगभग सपाट कारोबार करते हुए 96.57 पर बंद हुआ। सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज सेंसेक्स और निफ्टी लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए हैं, तो इसे केवल अल्पकालिक करेक्शन हम मान सकते हैं या फिर बाजार किसी एक नए ट्रेंड की ओर बढ़ रहा, खासतौर पर ऐसे समय में जब तमाम भू राजनीतिक अनिश्चितताएं बनी हुई है और तेल की कीमतों में जो उछाल है वो भी देखा जा रहा है?
2: नहीं निखिल जी, मुझे लगता है जो इस हफ्ते हम जो देख रहे हैं कि बाजार में लगातार गिरावट बनी हुई है, आज चौथा दिन है जब हम जो गिरावट के साथ बाजार बंद हुए हैं भारतीय बाजार, तो मुझे लगता है जो एक कारण, जो सबसे बड़ा कारण जो इसमें जो दिखाई दे रहा है, वो सीधे सीधे जो अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध है वो दोबारा से जो है काफी तेज हो गया है और उस किसी भी तरह की कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है कि कोई किसी तरह की कोई पीस का जो या तो बातचीत हो रही हो, बैक चैनल बातचीत हो रही है, लेकिन वो कितनी सार्थक होगी या कितनी सार्थक है वो अभी भी बिल्कुल अनिश्चितता है। और जैसा आपने कहा कि इस समय जो ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी है, मतलब वो लगातार बनी हुई है। बीच में हमने देखा युद्ध विराम हुआ लेकिन वो टिका नहीं उसके बाद, और साथ साथ जो सप्लाई बॉटलनेक्स हैं, तो साथ जो इस बार फिर हम देख रहे हैं जैसे पहले हुआ था, कच्चे तेल की कीमतों में दोबारा उबाल, $90 के आसपास उसके ऊपर भी कीमतें चली गई थी, अभी आज इस समय भी मुझे लगता है 90 के आसपास है, 90, तो वो हमारे लिए तो कम से कम बहुत खराब खबर है। और चूंकि हम तकरीबन 90% अपनी जो एनर्जी नीड्स हैं, जो हमारी तेल या गैस की जो जरूरतें हैं उनको हम आयात करते हैं, तो इस मुझे लगता है मोटे तौर पर बाजार में जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स हम देख रहे हैं वो इसी की वजह से।
1: Siddharth, you know, we are talking about, of course, the negatives in the market. What are the factors that have dragged down the markets for the fourth straight session? But between all this, you know, I see a ray of hope. If you look at the auto sector, the auto stocks, actually, today is the second day that the auto stocks and auto shares have risen. So what are the reasons that even amongst this doom and gloom, auto sector is doing so well?
2: Anubhav, I would say auto obviously is still in the positive territory, and the most important reason, if you look at the auto sales, the numbers that we got, the last numbers, and if you look across across segments, whether it was four wheelers, two wheelers, three wheelers, or sales of EV, which is really picking up now, and plus also the commercial vehicles, plus also if you look at the rural side, the sales of tractors, so we have seen a very positive growth in auto sales across segments, and I think that is the reason which is keeping the auto stocks in green. Plus also if you look at the results, the Q1 results, we've got a couple of auto companies have posted very very good

0: results, very, very healthy results. So I think that is primarily the reason. And on a large scale also, I would also say that India's growth story, India's the demand side, whether it is rural or urban, I think on both sides it is intact. So I think it is primarily because of that. And larger market obviously is under pressure because of the rise in oil prices again.
1: So in a way you can say that investors actually, even when the other sectors are not doing so well, the investors actually believe, you know, they go also with the future performance. They are, you know, they also assess the future performance of certain sectors, which help, you know, in those sectors to do well.
0: See, Anubhav, if you look in last year and a half, one of the features which has become, which is something which Indian also kind of reflects on the maturity of Indian markets, that all along, since if you look post Trump, Donald Trump's assumption in as a US president, that the tariff that he unleashed across the globe, not only India, it's a lot of other nations have been victim of Trump's tariffs. So you've seen the domestic institutional investors, though we've seen the exit of foreign institutional investors in a big way in last year and a half, 2 years, we've seen them exiting. So, but the domestic institutional investors and also the retail investors, so they showed maturity and they showed their faith in the Indian economy and they continued to invest. And now, since you say that investors always look at the, you know, at a future and make their investments looking at the future prospects. So if you see the last 1 month from 15 June to 15 July, the positive side is that now the foreign institutional investors are also returning to the Indian markets. So, and they've almost bought to the tune of about $6 billion. So, and if you look at the net data in terms of their selling and buying, I think that also is around $3 billion. The data that we have till from 15 June to 15 July.
1: Yeah.
0: So I think as far as Indian economy goes, I think there is nothing negative for us, except yes, we had slight questions on our monsoon. So I think, and but despite sluggish monsoons, the sowing has been good for the Kharif season. So I think, except that, I don't see any challenges in terms of for our domestic one. But yes, there are external factors which are having impact on our Indian economy.
2: और सिद्धार्थ, अभी large cap की हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा ध्यान आपका small cap और mid cap की तरफ ले जाऊँ, तो 1% की गिरावट हमें देखने को मिली है. तो क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि निवेशक अब इस तरफ पैसा लगाने से बच रहे, जोखिम उठाने से बच रहे, या दूसरे जो कारण है वो इसमें ज्यादा अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहे, जैसे बिकवाली की जब हम बात करते हैं?
0: नहीं निखिल, मुझे ऐसा नहीं लगता है. ऐसे दिनों पे जब भी बाजार गिरती है तो ये जिसको हम कहते हैं, ये हमेशा एक ये ट्रेंड भी है. आप देखेंगे कि स्मॉल कैप और मिड कैप्स में जो गिरावट, वो कहीं ना कहीं हमेशा ज्यादा होती है लार्ज कैप्स के बनस्पत. दूसरी बात, पिछले एक डेढ़ साल की जो अनिश्चितता बनी हुई है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं थोड़ा लोगों ने जो है लार्ज कैप्स की तरफ, या जो उनको लगता है थोड़ा ज्यादा डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, तो थोड़ा शायद निवेशक उस तरफ ज्यादा गया है. हालांकि मैं उसको कहीं से भी इस तरह से नहीं मानता हूं कि बाजार में निवेशकों का जो है उनका भरोसा कम हुआ हो या टूटा हो. मुझे लगता है वो कम्प्लीटली इंटैक्ट है. हाँ, ये इस तरह के जो इवेंट्स हो रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी पे एक डायरेक्ट कह लें या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, चाहे महंगाई पे हो, चाहे हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी उसकी रफ्तार है, गति है, ग्रोथ, तो उस पे इम्पैक्ट होगा. तो शायद कहीं ना कहीं वही बाजार में हमको इस हफ्ते दिख रही है.
2: लेकिन इसमें एक दूसरी बात ये भी कि पिछले सप्ताह बाजार ने काफी मजबूती दिखाई, तो इस हफ्ते वो मजबूती हमें दिखाई नहीं दे रही. जबकि अगर एक हम रेंज लेकर के चलते हैं तो वैश्विक घटनाओं की रेंज लगभग उसी प्रकार से, लेकिन निवेशकों का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं कम होता दिखाई दे रहा है.
0: नहीं निखिल, आपका बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन उसके पीछे आप ये देखेंगे कि शायद जो आपने देखा कि लास्ट वीक फिर भी मार्केट सस्टेन कर रहे थे स्थिति, तो शायद कहीं ना कहीं एक बाजार को भरोसा था कि शायद ये जो अमेरिका और ईरान के बीच जो दोबारा जो ये लड़ाई शुरू हो गई है, शायद कहीं ना कहीं वो ज़्यादा दिन ना चले और दोबारा दोनों बातचीत शुरू हो और किसी तरह का कोई पीस टॉक्स हो और उस कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई ट्रूस हो जाए. और तो शायद चूंकि इस समय आप देखेंगे पिछले 4-5 दिन से लगातार अमेरिका के जो हमले हैं, 8-9 दिन हो गए हैं वो बने हुए हैं, और अभी जो अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने बल्कि ये वार्निंग दी है कि अब वो जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो जो बिजली संयंत्र हो या चाहे उनके

0: ब्रिजेज हों या पुल हों, तो उन पे भी अटैक करेंगे अगर ईरान अब जो है अटैक करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो जहाज हैं जो तेल लेके वहां से निकल रहे हैं। उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आपने, जो ईरान सपोर्टेड हूती रिबल्स हैं उन्होंने जो रेड सी का रूट है जो कि अभी तक हमारे लिए सबके लिए एक जो
1: ऑल्टरनेट
0: सप्लाईज का एक रूट बना हुआ था, उसको अब उन्होंने, उस पे भी उन्होंने जो है रोक लगाई, बल्कि दो जहाजों पे अटैक भी किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाजार में इन जो नए ये इवेंट्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं दबाव दिख रहा है।
1: बट सिद्धार्थ, एज यू वेरी राइटली सेड दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स द इंडियन स्टोरी, द ग्रोथ स्टोरी इज स्टिल इंटैक्ट, एंड यू नो इन फैक्ट दैट इज व्हाट इज बीइंग हैज बीन मेंशनड इन द आरबीआईज स्टेट ऑफ द इकॉनमी बुलेटिन, दैट जुलाई बुलेटिन, एंड एज यू वर सेइंग दैट यू नो द एफआईआईज आर मेकिंग अ कमबैक, हैव मेड अ कमबैक इनटू द इंडियन इकॉनमी, सो that overall if you know you look at it it's a very good news because as the RBI bulletin says that the healthy domestic demand and resilient industrial and services sectors have helped sustain economic momentum despite challenges arising from fragile geopolitics and supply chain pressures. And as you were mentioning, foreign portfolio investors infused $3.1 billion into equity and debt markets in July up to the 20th of this month, while foreign direct investment remained higher during April and May this year. So overall, like we are discussing, that it's you know, the trust of not just FIIs, the domestic investors as well as FIIs is still intact, and you know, in the Indian story.
0: As Anubha, as you rightly said, it is not only the FIIs, as you also mentioned that figure in April, May, the FDI inflows have also, it's almost at a record level of about a little over $6 billion,
1: yeah.
0: And we are expecting a net FDI in the current financial year of upwards of around $15 billion, which is, I think after 4 years we are seeing that kind of number or FDI inflow into the country, and especially at a time when things are so uncertain, and
1: yeah.
0: As the RBI report also mentions about the heightened global economic uncertainty,
1: yes.
0: Also supply bottlenecks, but despite all that, if you look at they have mentioned in the report the demand as which whether it is in the urban areas or in the rural areas, and if you look at the GST data, the digital payments data, so everything is positive. The India's industrial sector or the services sector continue to be to record a robust growth, and the only concern is on the food side. The
1: kharif
0: sowing has been a little delayed because of the monsoon, onset of monsoon was a little delayed, but there also a big for us a big I would say a caveat for us is that we have huge stocks of food grains,
1: right.
0: So there is nothing to worry, especially the rice, wheat, the essential items, plus government has also been kind of procuring the essential vegetables also to, you know, ward off any such eventuality. So I do not see in terms of our own domestic parameters, macroeconomic, everything is positive. And if you look at the worst of projections for our current financial year GDP,
1: yeah.
0: India would definitely be the fastest growing economy,
1: yes.
0: And all the projections are upwards of 6.5%. So, and if you look at the first 3 months of export data, so even there we are seeing a 16% growth. So I do not see anything to worry in terms of our own domestic challenges.
1: Right.
0: Yes, inflation could be a concern in terms of obviously oil,
1: yes.
0: High oil prices feeding in. So, but that also till now, the last data we have seen 4.4%. I think that also is within the band.
1: Yes.
0: So,
2: सिद्धार्थ, इसी रिपोर्ट से जुड़ा एक छोटा सा मेरा सवाल ये है कि हम ये देख रहे हैं कि लगातार विदेशी निवेश को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इस दिशा में देश को सफलता भी मिल रही है, तो क्या ये बड़ा कारण है कि बैलेंस बनाने में हम कामयाब हो पा रहे हैं, खासतौर पर अपनी इकोनॉमी को एक स्टेबल प्लेस देने के मामले में?
0: नहीं, देखिए निखिल, जब आपने देखा होगा जब वेस्ट एशिया क्राइसिस हुई तो कहीं ना कहीं हमारे, चूंकि हम बड़े पैमाने पे ऑयल और गैस इंपोर्ट करते हैं और हमारा ऑयल गैस का बिल बहुत बड़ा और इसका पेमेंट चूंकि हम डॉलर में करते हैं, तो जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व तकरीबन $700 बिलियन, तो वही एक बड़ा कारण था कि जिससे किसी तरह का जो हमारे रुपये पे प्रेशर जरूर आया करेंसी पे, चूंकि हम डॉलर में पेमेंट करते हैं। लेकिन जो आपने सवाल पूछा उसके लिए सरकार ने इमीडिएटली स्टेप्स लिए, एक तो ये इंश्योर किया कि कहीं भी देश में जो पेट्रोल पदार्थ हैं, चाहे वो ऑयल हो या पेट्रोल हो, डीजल हो या गैस की जो सप्लाई है, उन पे इम्पैक्ट ना हो, तुरंत सरकार ने तत्काल कदम उठाए और उस पूरी

0: रेजिडेंट्स के लिए जो डिपॉजिट की स्कीम सरकार ने अनाउंस की थी, क्योंकि हमारे ऊपर कहीं ना कहीं जो फॉरेन एक्सचेंज पे जो प्रेशर था उसको भी उसका भी तकरीबन अभी तक $20 बिलियन कल जो डेटा आया उसमें हमें आ चुका है।
1: आगे बढ़ते हैं। इंफोसिस लिमिटेड ने आज इस वित्त वर्ष में अपनी पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम जारी किए हैं। कंपनी के राजस्व में वार्षिक आधार पर अपनी परिचालन गतिविधियों में 14% की बढ़त के साथ 48,211 करोड़ रुपए की बढ़त दर्ज हुई है। इस कंपनी का कुल लाभ 12.2% बढ़कर 7,769 करोड़ रुपए हो गया है।
2: Interglobe Aviation Limited today reported its financial results for the first quarter of the current financial year. The company's standalone revenue from operations rose nearly 20% year-on-year to 24,584 crore rupees. The company reported a standalone net loss of 381.5 crore rupees as compared with net profit of 2,161 crore rupees in the corresponding quarter of the previous financial year.
1: भारत की स्थिर आर्थिक वृद्धि, बाजार के बढ़ते अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य राष्ट्र के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी स्पर्धा के कारण लाभ कम हुआ है, वहीं भारत दीर्घकालिक विकास के अवसर प्रदान करता है। रिपोर्ट में भारत के विशाल उपभोक्ता आधार, कुशल कार्यबल, बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, बेहतर अवसंरचना और व्यापार अनुकूल सुधारों को निवेश को बढ़ावा देने के प्रमुख कारकों के रूप में बताया गया है। तो सिद्धार्थ, जैसा कि हम बात कर रहे थे निवेश को आकर्षित करने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, यूरोप की बात करें तो सरकार का काफी फोकस है उधर।
0: ना केवल यूरोप, जैसे आपने देखा होगा जब से पिछले एक साल में आप देखेंगे तो कई सारे हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर डाले हैं। हमने अपने एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ावा दें या दूसरे कंट्री से कैसे हमारे यहाँ जो है निवेश आए, मैन्युफैक्चरिंग में आए, तो हमने उसके लिए PLI स्कीम जैसे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव दिए। तो आप देख भी रहे होंगे कि खासकर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में या सेमी कंडक्टर्स के क्षेत्र में, मोबाइल में आज हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की जो लगातार जो कोशिश है कैसे हिंदुस्तान में किसी भी बिजनेस करने वाले को निवेश करने से लेके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे उसको हैंड होल्ड किया जाए, कैसे कि किसी भी तरह से उसको किसी भी स्टेज पे कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए। और उस यही वजह है कि आप देख रहे हैं जो आप जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया कि आज हम एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नॉट ओनली एज फॉर कैपिटल बट ऑल्सो फॉर मैन्युफैक्चरिंग।
1: एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज सकारात्मक रुख देखा गया। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4.4% चढ़ा, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.3% ऊपर आ गया, जापान के निक्केई में लगभग 0.5% की तेजी आई, चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.2% से ज्यादा का उछाल आया और ताइवान के ताइएक्स में मामूली बढ़त देखी गई। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% से अधिक नीचे आ गया।
2: Let's move on to the commodities. Global crude oil prices surged today. Brent crude was trading almost 4.9% up at $98.67 per barrel in intraday trade. West Texas intermediate crude was trading over 4.4% up at $90.70 per barrel when reports last came in. Let's also have a look at the gold and silver prices in the Indian bullion market. 24 carat gold was trading 1.2% down at 1,44,610 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.1% down at 2,22,790 rupees per kilogram a short while ago.
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 1.2% गिरकर 1,43,951 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी करीब 2% नीचे आकर 2,22,570 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। सिद्धार्थ, कारोबारी सप्ताह की बात करें तो कल अंतिम दिन होगा और आज चौथा दिन था जब लगातार हमने गिरावट का रुख देखा है, पिछले सप्ताह के मुकाबले भी सुस्ती देखी गई। अब क्या लगता है कि आने वाले सप्ताह के लिए निवेशकों को किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए, किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए, खासतौर पर ऑयल्स के दाम पर या फिर जो दुनिया भर में तमाम अनिश्चित राजनीतिक की अनिश्चित घटनाएं हो रही हैं उन पर, या फिर और भी कोई भू राजनीतिक कारण हो सकते हैं?
0: नहीं, मुझे लगता है निखिल सीधी सी बात है, एक जो अमेरिका और ईरान का के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका क्या होता है, क्योंकि उसी का सीधा इम्पैक्ट है जो आपने बोला क्रूड

0: ऑयल प्राइसेस पे, तो मुझे लगता है जो एक बड़ा चीज जो निवेशकों को की नजर होगी या मार्केट की चाल वही डिसाइड करेगा, वो होगा कि यूएस और ईरान के बीच जो लड़ाई चल रही है और उसका क्या होता है आने वाले दिनों में।
1: सिद्धार्थ, आई विल कम बैक टू द प्राइसेस ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस, यू नो स्पेशली गोल्ड प्राइसेस, वी सी दैट फॉलन लिटिल बिट, यू नो इन।
0: एंड अनुभव, आई वुड आल्सो ऐड वन मोर थिंग हियर टू निखिल के जो सवाल था, Q1 रिजल्ट्स हमारे अच्छे आए हैं, अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, उसके बावजूद हम बाजार में गिरावट देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो जो सबसे बड़ा निवेशकों के मन में या बाजार में जो इम्पैक्ट है वो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है और वो उसका भविष्य में क्या होगा।
1: जी, अ वेरी शॉर्ट ब्रीफ कॉमेंट फ्रॉम यू ऑन द गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस, बिकॉज आर वी सीइंग द फॉलिंग इन प्राइस बिकॉज ऑफ द हाई यूएस बॉन्ड ट्रेजरी यील्ड्स एंड बिकॉज ऑफ अ फर्मर डॉलर?
0: Very actually you've answered your question also has the answer. It's basically because we are seeing the earlier the conventional rule has been broken this time.
1: Yeah.
0: Each time there is uncertainty, gold prices used to go up, but this time because it is the US dollar and the US treasury yields and the fear of inflation,
1: yeah,
0: so that is driving people away from gold.
2: सिद्धार्थ, जिस कार्यक्रम में शामिल होने और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप दोनों को भी धन्यवाद।
1: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन फॉर फोर्थ स्ट्रेट सेशन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 350 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 23,870। मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस क्लोज इन पॉजिटिव जोन एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज अराउंड 5%। एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा फॉर नाउ। गुड बाय, नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से गीत के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने बताया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंची। कोटरोसिनी पैलेस में उनका स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया की राष्ट्रपति निकोस डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जिनेवा में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा के अंतिम सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। समीक्षा बैठक में WTO के 68 सदस्य देशों ने भारत की व्यापार नीतियों पर अपने विचार रखे। श्री अग्रवाल ने सभी सदस्य देशों का सक्रिय भागीदारी और भारत की व्यापार नीतियों में रुचि दिखाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी जानकारी पर विश्वास करने या उसे साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर। आवाज है अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कहते हैं कि दिल की कुछ बातें किसी दिन यूं ही नहीं कही जा सकती। वे समय की लंबी धूप में अपना अर्थ कमाती हैं और कई बार होठों तक आकर लौट भी जाती हैं, क्योंकि उनका ठिकाना किसी के सुनने वाले कान नहीं थे। मैंने उन्हें अपने दिनों के बीच इस तरह संभाला था जैसे कोई दुर्लभ पांडुलिपि वर्षों तक सुरक्षित रखी जाती है। तुमसे मिलूंगी तो शायद शुरुआत किसी साधारण मुस्कुराहट से होगी, लेकिन उसके पीछे अनगिनत अनकहे मौसम खड़े होंगे। तब समझ पाओगे कि चुप रहना हमेशा खाली रह जाना नहीं होता। कभी कभी वही जीवन का सबसे सच्चा संवाद होता है जो सही व्यक्ति के लिए हम बचाकर संजो कर रखते हैं। और आज मेरे पास ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जो केवल तुमसे मिलकर ही अपने पूरे अर्थ में

जन्म लेना चाहते हैं। आप सुन रहे हैं निशिगंधा। और अगला गीत, फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, आवाज है लता मंगेशकर की।

से छोटी पड़ जाती हैं, इसलिए भीतर ही भीतर उन्हें पकने दिया। अब जब कभी सामने बैठेंगे तब शायद एक साधारण सा प्रश्न पूछूंगे, कैसे हो, और उसी प्रश्न की तह में छिपे होंगे वे सारे उत्तर जिन्हें बरसों से केवल तुम तक पहुंचना था। और अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म अभिमान से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आराधना, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है भाभी, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

रजनी ने आज क्षितिज से क्षितिज तक नील पट बिछा दिया था। उस पर बादलों ने रूप बदलते हुए अनगिन आख्यान रचे और सितारों ने बिना किसी शोर के उन आख्यानों में अर्थ भर दिए। एक बादल दूर समुद्र की यात्रा से लौटा था। उसकी देह में लहरों का नमक था, नदियों की स्मृतियां थीं, पहाड़ों की थकन थी, धान की बालियों की प्रतीक्षा थी। एक सितारा करोड़ों वर्षों से उसी दिशा में टंगा था, किंतु उसका प्रकाश हर रात नया प्रतीत होता था। वो जानता था स्थिर रहकर भी नवीन बना जा सकता है। रात ने दोनों को एक ही आकाश में स्थान दिया। तभी संसार ने समझा, परिवर्तन और स्थिरता प्रतिद्वंदी नहीं, एक दूसरे की पूरक धाराएं हैं। धरती के वृक्ष ऊपर देख मुस्कुराए, मानो कह रहे हों, जो ऊपर इतना विशाल होकर भी एक दूसरे को जगह दे सकते हैं, उन्हीं से संतुलन का पाठ सीखना चाहिए। जब प्रातः की आभा निकली, ना कोई विजेता था ना कोई पराजित, केवल आकाश था जो सबको समेट लेने के कारण और भी विराट हो गया था।

और ये वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। नीट पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना था कि छात्रों का साल बर्बाद ना हो और परीक्षाएं जल्द आयोजित की जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है, जिससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को परेशानी हुई है। उन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और उन कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद के अगले सप्ताह के सत्र में सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास करेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट प्रश्न पत्र लीक मामले, छात्र विरोध प्रदर्शनों और अन्य विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव किटकिथिला श्रीनिवास को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। केशव चंद्र को खान मंत्रालय का सचिव बनाया गया है, जबकि चंद्रभूषण कुमार श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव होंगे। सुशील कुमार लोहानी को पशुपालन और डेयरी विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। सत्येंद्र सिंह को शहरी विकास विभाग का सचिव और डी थारा को राजधानी विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया है। इन सभी नियुक्तियों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस में उनका स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जिनेवा में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा के अंतिम सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। समीक्षा बैठक में WTO के 68 सदस्य देशों ने भारत की व्यापार नीतियों पर अपने विचार रखे। श्री अग्रवाल ने सभी सदस्य देशों का सक्रिय भागीदारी और भारत की व्यापार नीतियों में रुचि दिखाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालन, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर चेंज की सुविधा जारी रहेगी। अभी जानकारी मिली है कि सामाजिक कार्यकर्ता

सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में श्री वांगचुक से मुलाकात कर अनशन तोड़वाया। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न है तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने में पहला गीत मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें।

रात उतर आई थी धीरे धीरे, मानो आकाश ने अपने प्राचीन इतिहास का एक और पृष्ठ खोल दिया हो। चांद आज किसी विजेता की भांति नहीं, एक विनम्र साधक की तरह

नभ के मध्य विराजमान था। उसके उजले मुख पर युगों की यात्राओं का धैर्य था और अनगिन ऋतुओं की स्मृति। मैंने अपने मन से पूछा, तुझे इस चांद में ऐसा क्या दिखाई देता है? मन ने कहा, मुझे इसका प्रकाश नहीं, इसका संयम आकर्षित करता है। यह कभी सूर्य बनने का आग्रह नहीं करता, फिर भी असंख्य पथों का सहचर बन जाता है। रात मुस्कुराई, उसने चांद के चारों ओर नील विस्तार का ऐसा मंडल रचा जिसमें किसी को छोटा सिद्ध करने की कोई चेष्टा नहीं थी। वहां केवल संतुलन था और उसी संतुलन में सृष्टि का सौंदर्य निहित था। मन फिर भटकने लगा, कभी बीते वर्षों की ओर और कभी आने वाले दिनों की ओर। चांद उसे देखता रहा, जैसे कोई अनुभवी ऋषि अधीर शिष्य की गति समझ रहा हो। तभी एक शीतल किरण धरती तक उतरी। उसने कोई उपदेश नहीं दिया, केवल इतना बताया, जिसे स्वयं से मिलने का साहस मिल जाए, उसे संसार से शिकायत कम रह जाती है। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है नाइट इन लंदन, आवाज है महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की।

हर दिन की साधारण सी धूप में कुछ ऐसा घुलता गया कि मैं वही नहीं रही जो कभी अपने ही प्रश्नों के बीच अलग थलग खड़ी रहा करती थी। तुम्हारा नाम किसी पुकार की तरह नहीं आया, न किसी दावे की तरह, बस जैसे सूखी धरती पर हरियाली का पहला संकेत उतरता है, वैसे ही मेरे भीतर एक नया अर्थ आकार लेने लगा। मैंने देखा गुलमोहर पहले भी खिलते थे, पगडंडियां पहले भी थीं, आकाश पर बादल भी पहले जैसे ही आते जाते थे, पर न जाने क्यों उन सब के चेहरे बदल गए। लगता था जैसे दुनिया ने कोई नया वस्त्र नहीं पहना, पर मेरी दृष्टि ने पुराने दृश्यों में नया संगीत खोज लिया हो। अब जब मैं किसी पुस्तक का पन्ना पलटती हूँ, अक्षरों के बीच एक महीन सी गर्माहट उतर आती है। जब किसी नदी का उल्लेख पढ़ती हूँ, तो उसके जल में तुम्हारी सहजता की झलक मिलती है। जब किसी वृक्ष के नीचे बिखरे पत्तों को देखती हूँ, तो लगता है बिछड़ना भी कितना सुंदर हो सकता है। जब किसी वृक्ष के नीचे बिखरे पत्तों को देखती हूँ, तो लगता है बिछड़ना भी कितना सुंदर हो सकता है। हर दिन की साधारण सी धूप में कुछ ऐसा घुलता गया कि मैं वही नहीं रही जो कभी अपने ही प्रश्नों के बीच अलग थलग खड़ी रहा करती थी। और अब अगला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी। आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और गीत सुहाने में अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है अभिमान।

सुहाने। और गीत सुहाने में अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। अभी छोड़े जाते हैं आपके एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है सावन को आने दो। आवाज है यसुदास की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। मिलते हैं 2:10 पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले ढाई महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मामले में गुनहगारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना था कि सरकार की छात्रों का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद ना हो और परीक्षाएं जल्द आयोजित की जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है, जिससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को परेशानी हुई है। उन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होने पर सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का पूरा प्रयास करेगी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख एपिक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में उपस्थित थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। श्री वांगचुक ने कहा कि कई मुद्दों पर लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने सभी से किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए सतर्क रहने की अपील की। श्री वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर पिछले महीने की 28 तारीख से अनशन शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने सोनम वांगचुक से डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या का पालन करने और जल्द से जल्द सामान्य वजन वापस प्राप्त करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव किटकिथिला श्रीनिवास को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। केशव चंद्र को खान मंत्रालय का सचिव बनाया गया है, जबकि चंद्रभूषण कुमार श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव होंगे। सुशील कुमार लोहानी को पशुपालन और डेयरी विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। सत्येंद्र सिंह को शहरी विकास विभाग का सचिव और डी थारा को राजधानी विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया है। इन सभी नियुक्तियों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से अधिक पुरानी मित्रता आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और रोमानिया ने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। दोनों देश विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटल क्षेत्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। इसका उद्देश्य परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक से जुड़े मामलों का जल्द निपटान करना है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न है तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। इसमें

लोग रिश्तों की हिफाजत में बहुत कुछ लिखते रहे। लोग रिश्तों की हिफाजत में बहुत कुछ लिखते रहे, मैंने उसका नाम भी लिखना मुनासिब न समझा। मैंने उसका नाम लिखना भी मुनासिब न समझा। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे, आवाज है मुकेश की और फिल्म का नाम है पत्थर के सनम। तो आइए सुनते हैं ये गीत, फिर करते हैं आगे की बातें।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई। मैंने तुम्हें कभी पुकारा नहीं ऊंचे स्वर में, ना किसी दहलीज पर तुम्हारा नाम लिखकर रखा। फिर भी जाने कैसे मेरे भीतर का एक प्रदेश तुम्हारे लिए आरक्षित रहा, जैसे किसी वन के मध्य एक पगडंडी रहती है जिसे हर यात्री नहीं जानता, पर वही पहुंचाती है सबसे निर्मल जल तक। तुम वहां बसे रहे, न पत्रों में, न परिचयों में, न उन कथनों में जिन्हें लोग प्रेम समझ लेते हैं। तुम बसे रहे उस जगह जहां एक स्त्री अपने सारे मुखौटे उतार कर स्वयं से मिलती है। मैंने जब जब दुनिया की भीड़ में लौट कर अपने अंतर का द्वार खोला, तुम वहां मिले, किसी प्रतीक्षा की मुद्रा में नहीं, बल्कि ऐसे मानो कभी गए ही न थे। ये कैसा संबंध है जिसमें दूरी मीलों से नहीं नापी जाती और न निकटता स्पर्श की शर्त पर नहीं टिकी रहती, जहां कोई दावा, कोई अधिकार नहीं, फिर भी एक अदृश्य धागा हर बिखराव को जोड़ता है। मैंने देखा है बहुत से लोग बड़े सुंदर वाक्य रच लेते हैं, पर उनके साथ चलते हुए बार बार मन को अपना परिचय देना पड़ता है, और कुछ लोग जिनके पास पहुंचकर अंतर का सारा बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। तुम उन्हीं में से एक रहे।

सुनो एक बात कहूं, तुम्हारे लिए मुझे कभी कोई भूमिका नहीं लिखनी पड़ी। मेरी चुप आंखें, मेरे अधूरे प्रश्न, मेरे भीतर की अनगिन परतें, सब तुम्हें पहले से ज्ञात थे। शायद इसलिए तुम्हें याद करना भी याद करना नहीं लगता। वह तो वैसा है जैसे नदी को अपने स्रोत का स्मरण हो, जैसे आकाश को अपने विस्तार का। मैं जब भी अपने भीतर उतरती हूं, एक शांत उजली रेखा दूर तक जाती दिखाई देती है और उसके अंतिम छोर पर कोई खड़ा नहीं होता, क्योंकि वहां खड़े होने की आवश्यकता ही नहीं। वहां तो बस एक गहन आत्मीयता रहती है, जो शब्दों से बड़ी है, व्याख्याओं से बड़ी है और उन सभी प्रमाणों से बड़ी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है हीरो नंबर वन, और इस गीत को आवाज दी है साधना सरगम और उदित नारायण ने। आइए सुनते हैं ये गीत, और इस गीत के बाद हम और भी बातें करेंगे।

और अगला गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है वो सात दिन।

और अब वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो चलते चलते आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। उसके बाद मीना होंगी आपके साथ। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है दिल ही तो है, आवाज है मन्ना डे साहब की। आप

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले ढाई महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होने पर सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का पूरा प्रयास करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। उच्च न्यायालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि राउस एवेन्यू कोर्ट में न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बालिगा की अदालत अब विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में कार्य करेगी। उन्हें इस उद्देश्य के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के बाद उठाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में उपस्थित थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। श्री वांगचुक ने कहा कि कई मुद्दों पर लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने सभी किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए सतर्क रहने की अपील की। श्री वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर पिछले महीने की 28 तारीख से अनशन शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने सोनम वांगचुक से डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या का पालन करने और जल्द से जल्द सामान्य वजन प्राप्त करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया की राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से अधिक पुरानी मित्रता, आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और रोमानिया ने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। दोनों देश विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटल क्षेत्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया। 74 देशों के खिलाड़ी इस 10 दिवसीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। भारत ने अपना पदक खाता भी खोल दिया है। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने को महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में बाई मिलने से सीधे सेमीफाइनल में जगह मिली है। लॉन बॉल्स में भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन अपने दोनों मुकाबले जीत लिए। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year and it was essential to conduct the examinations immediately. He said he knows that paper leak is not a minor issue and it is extremely painful for lakhs of students and their parents. The Prime Minister said he has directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts. He said the departments worked continuously and submitted the draft to him late last night. Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the Cabinet today. Meanwhile, the Delhi High Court has constituted a new fast-track court with immediate effect to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. In a notification, the High Court said the Court of Officer Anu Grover Baliga at the Rouse Avenue Court will function as a specially designated fast-track court. Ms. Baliga, who was serving as a judge in charge of the mediation centre at Tisazari Courts, has been transferred to the Rouse Avenue Courts, a special judge for the purpose. Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram a short while ago in the presence of UN ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. Wangchuk's wife Gitanjali Yangmu and senior leaders of APEC's body of Leh Ladakh were also present at the hospital. Prime Minister Narendra Modi has urged social activist Sonam Wangchuk to follow his daily routine as advised by the doctors and regain his previous weight as soon as possible. In a social media post, Mr. Modi prayed to the Almighty that Mr. Wangchuk remains healthy. Mr. Wangchuk went on a hunger strike on the 28th of last month demanding reforms in the education system and accountability over paper leaks. Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to media, the minister said that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present during the dialogue. He also informed that talks can be held with an open mind at the residence of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found. India and Romania today signed 3 agreements for cooperation in the fields of science and technology, education and sports. The agreements were signed after delegation-level talks between President Draupadi Murmu and her Romanian counterpart Nicușan Dan in Bucharest. In a press statement, President Murmu said India and Romania have shared a close and enduring friendship for over 7 decades, based on mutual trust, respect and strong people-to-people ties. Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has informed that 17 metro stations will be closed from 7:30 a.m. today till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Lok Kalyan Mark, Raji Chowk, Patel Chowk, Ramakrishna Ashram Mark, Barakamba Road, Supreme Court, Seva Teerth, Janpath, Jhandewala, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprastha, Khan Market, Jorbagh and Shivaji Stadium. However, DMRC noted that the interchange facility will remain available at Raji Chowk, Mandi House and Central Secretariat. The Delhi police has informed that 480 Pakistan-based social media handles involved in coordinated misinformation campaigns have been identified and blocked. The police said that these social media handles were involved in spreading rumours and false claims to mislead the students and the youth. They urge the people always to verify information before trusting and sharing them. Defence Research and Development Organisation DRDO today successfully conducted the maiden flight test of long-range surface-to-air missile Kusha from the APJ Abdul Kalam Island off the coast of Odisha. The Ministry of Defence said that this maiden test was conducted against an electronic target simulating high-speed and high-altitude aerial threat, which was successfully intercepted by the missile system. It said that Kusha missile system is capable of neutralising a wide variety of aerial threats, including fighter jets, missiles, unmanned aerial vehicles and large enemy aircraft within a wide range and altitude envelope. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है रात के 3:11:06। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जानते हैं, वादे तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वादों से नहीं बल्कि निभाने से पहचाना जाता है। कुछ रिश्ते वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं, जैसा कि ये गीत।

दोस्तों, जिंदगी का हर मोड़ अपने साथ एक नई कहानी लेकर आता है। कुछ रास्ते हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं तो कुछ रास्ते हमें खुद से मिलवा देते हैं। कभी किसी मोड़ पर कोई अपना साथ चलने लगता है तो कभी कोई याद बनकर पीछे छोड़ जाता है, लेकिन सफर रुकता नहीं है बल्कि कदम आगे बढ़ते रहते हैं।

जानते हैं, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि एहसासों से जीते जाते हैं। ऐसी ही मीठी भावनाओं को सुरों में पिरोया है संगीतकार सलील चौधरी ने गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों में। मोहम्मद

और लता मंगेशकर की सुमधुर आवाजों से सजा ये सदाबहार नगमा आज भी प्रेम की मासूमियत को उतनी ही खूबसूरती से बयां करता है। आइए सुनते हैं फिल्म माया का ये अमर गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर

श्रोताओं, अब पेश है एक ऐसा ही सदाबहार नगमा जिसमें प्रेम की गहराई, समर्पण की मिठास और जीवन भर साथ निभाने का अटूट विश्वास झलकता है। राजेंद्र कुमार और वैजंती माला पर फिल्माया गया ये गीत आज भी हर प्रेम करने वाले दिल की धड़कन बनकर गूंजता है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 3:34 और 58 सेकेंड। कार्यक्रम चल रहा है हमराही, और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत हमने लिया है फिल्म सूरज से, जिसे गाए हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। क्षमा कीजिए, फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही मीना चौहान को हमराही कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। 4:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम अरुणिमा में। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 2.5 महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीर कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होने पर सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का पूरा प्रयास करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। उच्च न्यायालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि राउज एवेन्यू कोर्ट में न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बालिगा की अदालत अब विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में कार्य करेगी। उन्हें इस उद्देश्य के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों में आरोपियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के बाद उठाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में उपस्थित थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। श्री वांगचुक ने कहा कि कई मुद्दों पर लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने सभी से किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए सतर्क रहने की अपील की। श्री वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर पिछले महीने की 28 तारीख से अनशन शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने श्री वांगचुक से डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या का पालन करने और जल्द से जल्द सामान्य वजन वापस प्राप्त करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टी के अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डेन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से अधिक पुरानी मित्रता, आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और रोमानिया ने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया। 74 देशों के खिलाड़ी इस 10 दिवसीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। भारत ने अपना पदक खाता भी खोल दिया है। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में बाई मिलने से सीधे सेमीफाइनल में जगह मिली है। लॉन बॉल्स में भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन अपने दोनों मुकाबले जीत लिए। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है सुबह के 4:11:17 अरुणिमा कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, इसमें कभी संघर्ष आते हैं तो कभी रास्ता सीधा नजर आता है। कहते भी है ना कि जब तक पत्थर पर भी हथौड़ा नहीं पड़ता ना तो भगवान की मूर्ति नहीं बन पाता, जब उस पर चोट लगती है तभी वो भगवान की मूर्ति बन पाता है। इसी तरह इंसान भी जब संघर्ष करता है ना तो उसके अच्छे दिन जरूर आते हैं, लेकिन अगर अपने का साथ हो तो और भी सफर आसान हो जाता है।

जानते हैं दोस्तों, हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं रहती? क्योंकि दोस्तों, हम ना दूसरों की शिकायतें करते हैं और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करें। लेकिन जिस दिन हम अपनी ये सोच बदल देंगे ना, उन्हें सुधारने के बजाय अगर हम खुद को सुधारेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा।

जानते हैं दोस्तों, सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, खुशनसीब वो इंसान नहीं होता जिसे सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि खुशनसीब वो इंसान होता है जो हर चीज को अपनी मेहनत और लगन से अच्छा बनाता है।

जानते हैं दोस्तों, अगर जिंदगी में खुद पर भरोसा हो ना, तो हर मुश्किल छोटी लगती है। अगर भरोसा ना हो तो आसान चीज भी नामुमकिन सी लगती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखिए और खुद पर भरोसा रखिए।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम से मुझे यानी मीना चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार और 5:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम भोर सुहानी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले ढाई महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होने पर सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के

0: मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। उच्च न्यायालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि राउज एवेन्यू कोर्ट में न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बालिका की अदालत अब विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में कार्य करेगी। उन्हें इस उद्देश्य के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में उपस्थित थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। श्री वांगचुक ने शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर पिछले महीने की 28 तारीख से अनशन शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने सोनम वांगचुक से डॉक्टर की सलाह के अनुसार दिनचर्या का पालन करने और जल्द से जल्द सामान्य वजन वापस प्राप्त करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो जैन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से अधिक पुरानी मित्रता आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। राज्यसभा में लिखित उत्तर में डॉ सिंह ने बताया कि रोड मैप के अनुसार मौजूदा 8.78 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता को विभिन्न चरणों में चल रही परियोजनाओं के पूरा होने पर लगभग 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने उन सोशल मीडिया पोस्टों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि दिल्ली में नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान 21 वर्षीय महिला की मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने बताया कि विरोध प्रदर्शन संबंधित घटना में गंभीर रूप से घायल हुई महिला जीवित है और उसका इलाज जारी है। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और सोशल मीडिया पर अपशिष्ट दावों को साझा न करने का आग्रह किया है। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्यायसंगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। 74 देशों के खिलाड़ी इस 10 दिवसीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said, "Government's foremost responsibility was to ensure that students should not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately." He said he knows that paper leak is not a minor issue and it is extremely painful for lakhs of students and their parents.
2: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
1: Delhi High Court has constituted a new fast-track court with immediate effect to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. In a notification, the High Court said the Court of Officer Anu Grover Baliga at the Rao's Venue Court will function as a specially designated fast-track court to hear cases under the Public Examinations Act along with connected offences. Ms. Baliga, who was serving as a judge in charge of the mediation centre at Tees Hazari Courts, has been transferred to the Rao's Avenue Courts, a special judge for the purpose. The move is aimed at ensuring the expeditious adjudication of cases related to the unfair practices in public examinations. The notification came hours after Prime Minister Narendra Modi announced that the centre had decided to establish fast-track court to ensure swift and stringent punishment for those involved in examination paper leaks. Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike of the 26 days at a private hospital in Gurugram tonight in the presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. Wangchuk's wife Gitanjali Angmu and senior leaders of Apex Body of Leh Ladakh were also present at the hospital. Earlier, 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging him to break the fast. Mr. Wangchuk said this was done after long negotiations and various conditions. He urged everyone to stay very vigilant about not allowing violence of any kind anywhere. Mr. Wangchuk went on hunger strike from 28th of last month, demanding reforms in the education system and accountability over paper leaks. Prime Minister Narendra Modi has urged social activist Sonam Wangchuk to follow his daily routine as advised by the doctors and regain his previous weight as soon as possible. In a social media post, Mr. Modi prayed to the Almighty that Mr. Wangchuk remains healthy. The centre has appointed secretaries in different ministries and departments. Vinnie Joshi, who is presently Secretary Higher Education and Ministry of Education, has been appointed as Secretary Ministry of Panchayati Raj. Naresh Pal Gangwar will be the new Secretary Higher Education. T.K. Anil Kumar will be Secretary School Education and Literacy. Housing and Urban Affairs Secretary Kartik Kithala Srinivas has been appointed as Secretary Ministry of Development of Northeastern Region. Kesha Chandra will be Secretary Ministry of Mines and Chandrabhushan Kumar will be Secretary Ministry of Labour and Employment. Sushil Kumar Lohani will be Secretary Animal Husbandry and Dairy. Satendra Singh has been appointed as Secretary Department of Urban Development and D. Tara as Secretary Department of Capital Development. Piyush Goyal will be Secretary General National Human Rights Commission. The Appointment Committee of the Cabinet approved these appointments. Delhi Metro Rail Corporation DMRC has informed that 17 metro stations will be closed from 7:30 a.m. today till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Lokalyan Mark, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Ramakrishna Ashram Mark, Barakamba Road, Supreme Court, Seva Teerth, Janpath, Chandewala, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprastha Khan Market, Chorbagh and Shivaji Stadium. The 23rd Commonwealth Games began yesterday in Glasgow, Scotland with a spectacular and colourful opening ceremony. The Indian contingent led by flag bearer Neerabai Chanu and ceremonial baton bearer Lovlina Borgohain marched into the OVO Hydro Arena with athletes waving the nature tricolours. And that is the end of this news bulletin.

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है 5:11 और 5 सेकंड भोर सुहाने कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गीत के साथ।
1: हसो मत।

दोस्तों, पेड़ कभी भी फूलों के गिरने से परेशान नहीं होता, बल्कि वो सदैव नए फूलों के खिलने का निर्माण करता रहता है। दोस्तों, इसी तरह हम

हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में कभी मुश्किलें आती हैं, कभी दुख आते हैं और कभी सुख आते हैं। हमें भी नई चीज़ों की ओर बढ़ना चाहिए और पिछली चीज़ें जो हैं उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।

सिर्फ जरूरत पूरी करना ही जिंदगी नहीं है, कुछ ख्वाहिशों के साथ जीना भी जिंदगी है। यूं तो हम सभी जीते हैं अपनों के लिए, मगर कुछ खुशियां औरों के नाम करना भी जिंदगी है। सबसे लड़कर जमाने से आगे बढ़े तो क्या बढ़े, कभी कदम से कदम मिलाकर चलना भी जिंदगी है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन